0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए

0: तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। हर बार ये जब हम शब्द सुनते हैं तो एहसास हो जाता है कि मेरी सच्चाई क्या है। मैं वो प्यार से भरी हुई पीसफुल आत्मा हूँ जिसके साथ एक गहरा रिश्ता है मेरा उस परमात्मा उस शिव बाबा के साथ, और फिर समय चक्र की सच्चाई को भी जाना, आगे बढ़े इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, उस शिव बाबा ने किस तरह से अवतरित होके अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, बहुत सी बातें जानी। अब थोड़ा कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी मान्यताओं को लेते हैं जो कि आपके दिलों में है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं, तो हर बार की तरह हमारे सभी सवालों का जवाब हमें देने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने आपसे लिया है, बहुत कुछ हमने जाना है जो कि आपका ज्ञान नहीं होके हम समझते हैं अब ये बात कि शिव बाबा का सीधा ज्ञान हम तक पहुंचा है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी लोगों को कौंधते हैं मन में और ऐसा लगता है कि ये इसमें कुछ मिस्ट्री है। सो एक्चुअली थ्रू दिस प्रोग्राम वी वुड लाइक टू यू नो ओपन अप एंड सॉर्ट आउट ऑल द मिस्ट्रीज विच आर देयर। सबसे पहले तो एक सवाल, सफेद लिबास। खैर अब ये बहुत अच्छा हो गया है, व्हाइट इज इन, और जहां लोगों को सफेद दिखता है लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी। लेकिन व्हाई व्हाइट एंड इज इट मैंडेटरी?
1: दिस व्हाइट साड़ी इज द यूनिफॉर्म ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज। ये एक यूनिफॉर्म की तरह है, जैसे एक लॉयर की यूनिफॉर्म होती है, एक नर्स की यूनिफॉर्म होती है, एक आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म है। उनको कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, यू नो एक नर्स भी

0: वाइट ड्रेस पहनती है, हम कभी नहीं कहते वाई वाइट, है ना। तो ये भी एक यूनिफॉर्म है और जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल कलर है जो हमें बहुत अच्छा लगता। वाइट सिंबलाइजेस प्योरिटी, वाइट सिंबलाइजेस पीस, तो शांति और पवित्रता का प्रतीक सफेद रंग है। जैसे व्हाइट कोई अपने आप में कलर ही नहीं है, सारे कलर्स मिला के हम यू नो स्कूल में वो करते थे एक्सपेरिमेंट कि जब सारे कलर्स एक डिस्क पे होते थे, विबग्योर जो हम कहते थे रेनबो के कलर्स, और उस डिस्क को जो बहुत फास्ट घुमाते थे तो वो व्हाइट कलर लगता था। तो सारे रंग मिलाकर वो सफेद रंग बन जाता है, इट इज लाइट बेसिकली। तो और फिर भी जैसे आपने कहा कि ये मैंडेटरी है, तो बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने जैसे एक एक श्रीमत हमारे लिए रखी, तो उसी तरह जो भाई बहने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित करते हैं, सी टुडे वी आर लैक्स ऑफ फैमिलीज जो इस विद्यालय की टीचिंग्स को रेगुलरली अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, जिन सबको हम ब्रह्मा कुमार्स ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, लेकिन वो सभी अपने घरों में रहते हैं, घर में रहते हैं, अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। उसमें से एक बहुत छोटा सा नंबर, अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 15,000, वो भाई बहने हैं जो अपने जीवन को इस सेवा में, परमात्मा की सेवा में सरेंडर करते हैं। दैट इज दे डू नॉट लीड अ नॉर्मल फैमिली लाइफ, दे लीड अ सरेंडर्ड लाइफ, जहां वो अपने घर से अलग होकर आकर सेंटर पर रहते हैं। कोई दुनिया से दूर नहीं चले जाते क्योंकि सेंटर भी तो इसी दुनिया में ही बने हुए हैं, लेकिन सेंटर की सेवाओं को और सेंटर की एक्टिविटीज को संभालते हैं ताकि जब सभी घरों से लोग वहां पर आते हैं तो उनके साथ ज्ञान की चर्चा, मुरली की क्लास, योग का अभ्यास, 7 डेज फाउंडेशन कोर्स कराना, हर आत्मा तक परमात्मा का परिचय पहुंचाना, तो वो उनका अपना पूरा जीवन इस सेवा में समर्पित है। आज इतने हजारों भाई बहने इस सेवा में जुटे हैं, तो उनकी एक ड्रेस कोड है, उनकी एक यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि एक डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी फिर एक ये यूनिफॉर्म है कि वी रिप्रेजेंट द ब्रह्मा कुमारीज इन दिस यूनिफॉर्म, लेकिन और उनके लिए ये व्हाइट यूनिफॉर्म कंपल्सरी है। एज लॉन्ग एज आई एम अ सरेंडर brother or sister of the organization, I wear only white.
1: Because I stay there. They stay in the center.
0: तो आप सोचो कि जहाँ हजारों लोग इकट्ठे रहेंगे तो एक सिस्टम भी तो सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेम तरह की हर चीज सभी को देनी है। तो आप एक ड्रेस कोड रखते हैं और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से चलते हैं।
1: अच्छा, लेकिन बाकी लोग जो रह रहे हैं, हाँ, वो जब सेंटर पे आते हैं तब व्हाइट पहनेंगे, उस यूनिफॉर्म में आएंगे?
0: नॉट नेसेसरी एट ऑल। जब हम सभी जो घरों में रहते हैं, हम थोड़े समय के लिए सेंटर पे जाते हैं, जैसे मॉर्निंग क्लास के लिए या इवनिंग क्लास या कोर्स करने या कभी भी, लेकिन उस समय हमें व्हाइट पहनना है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यू वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, यू आर वेरी नीटली ड्रेस्ड ऑफकोर्स, क्योंकि आजकल ड्रेसिंग के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो यू आर वेरी डिसेंटली एंड नीटली ड्रेस्ड, बट यू हैव टू वेयर व्हाइट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने नॉर्मल रंगीन कपड़े जो पहनते हैं वो पहनकर ही सेवा केंद्र जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि घरों से जब हम सेंटर पर आते हैं, हमें वो व्हाइट कलर अच्छा लगने लगता है।
1: एक्चुअली यू नो, इवन आई वॉन्टेड टू वेयर इट,
0: रिमेम्बर यू हैव सेड सो मेनी टाइम्स दैट आई वॉन्ट टू वेयर व्हाइट। We never asked you that you need to wear white. So similarly, a lot of the students, when they come to the center, they feel like wearing white. They are not asked to wear white. There's a lot of difference. So, कईयों को जो अच्छा लगता है कि मुझे भी व्हाइट पहनना, तो फिर वो व्हाइट पहनते हैं, वो उनकी अपनी स्व इच्छा होती है। कोई कभी कभी पहनते हैं, कोई किसी फेस्टिवल के दिन पहनते हैं, कोई रोज पहनते हैं आउट ऑफ चॉइस, लेकिन वहां सेंटर पर आने के लिए व्हाइट पहनना है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
1: आई थिंक इट्स मे बी बिकॉज यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट पीस सो मच, आई एम अ पीसफुल सोल, द नेचुरल इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स व्हाइट।
0: या लेकिन वो भी एक You know, it's just a state of mind. Otherwise, peace is here internally. It actually has nothing to do with what colored clothes.

0: आई एम वेयरिंग इट डज फील गुड, बट ये नहीं होगा कि आज अगर हम व्हाइट की जगह कोई और कलर की साड़ी पहन ले तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा असर होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। इसलिए सभी को ये बहुत क्लैरिटी चाहिए कि सेंटर पर आने के लिए सफेद कपड़े पहनने हैं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप जिन कपड़ों में चाहे जो रंग पहनना चाहे, काला रंग भी पहन सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू। इनफैक्ट सी मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम टू द सेंटर एंड फ्रॉम द सेंटर दे गो फॉर देयर जॉब्स, दे गो टू स्कूल, दे गो टू कॉलेज, तो वो अपने नॉर्मल ड्रेसेस में आते हैं, मॉर्निंग क्लास के लिए आते हैं और वहां से अपने जॉब्स पर जाते हैं। तो यू विल हैव पीपल कमिंग इन ऑल कलर्स।
1: ओके, सो व्हाइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद व्हाइट, लेकिन जो मिथ जुड़ा है व्हाइट से उसे हमने डिस्पेल किया। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ, क्या मेंबरशिप है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप मिल सकती है, क्या कोई गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, क्या मैं मेंबर बन के इस ऑर्गेनाइजेशन का या ब्रह्मा कुमारी अगर मैं बनना चाहूं उसका क्या प्रोसेस है। ये तीन क्वेश्चन मैंने साथ साथ पूछे हैं।
0: ये एक परिवार है जिसको हम भले बार बार ऑर्गेनाइजेशन वर्ड रेफर करते हैं, बट वंस यू कम हियर यू विल रियलाइज दैट देयर इज इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ फैमिली। तो फैमिली का हिस्सा बनने के लिए कोई मेंबरशिप नहीं होती है, कोई नाम भी नहीं लेना होता है। हम इस परिवार का हिस्सा कैसे बन जाते हैं, हम सेंटर पर आते हैं, हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं, हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं, हमें शिव बाबा का परिचय मिलता और जैसे ही आत्मा को उस पिता की पहचान मिलती वो कनेक्शन जुड़ जाता और हम उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम इस राज्यों को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं देन वी आर अ पार्ट ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज फैमिली, दैट्स ऑल। देयर इज नो कि नाउ आई एम अ मेंबर, नो,
1: मुझे कोई फॉर्म नहीं भरना,
0: कुछ भी नहीं, देयर इज नो सच थिंग। कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई गुरु दीक्षा जो आपने कही, कोई नाम लेना, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमने दूसरी कहीं जगह नाम लिया हुआ है तो क्या हम यहाँ आ सकते हैं, या अगर हम यहाँ आए तो क्या उसके बाद हम कहीं और नहीं जा सकते हैं,
1: क्या अपने धार्मिक स्थलों पर हम जा सकते हैं, ये भी एक सवाल है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है,
0: बिल्कुल
1: वो कंटिन्यू किया जा सकता है।
0: एब्सोल्युटली, आपके जीवन जैसे चल रही थी पहले, आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च जहां जा रहे थे आप बिल्कुल वहां जाते रहेंगे, लेकिन अब आप सब कुछ जो करेंगे इट विल बी विद अ लिटिल मोर क्लैरिटी, विद अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग एंड विद अ लिटिल मोर प्रैक्टिकलिटी, कि आप जो कुछ आज दिन तक सुनते आए लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुनने तक ही रख दिया था, उसको हर पहलू पे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाया था, ज्ञान समझने के कारण और सबसे इम्पोर्टेंट परमात्मा से संबंध जुटने के कारण वो पावर मिल जाती है कि आप जो कुछ करते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जहां जा रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, आप बिल्कुल वैसे ही करते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
1: आज का दिन हमने रखा है कि सारे वो डिस्पेल कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सवाल थे, सफेद कपड़ों से जुड़ा हुआ, मेंबरशिप से जुड़ा हुआ। एक और बात जो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से मेरे पास भी लोगों के कॉल आए हैं कि हम जा नहीं सकते क्योंकि मम्मी पापा नहीं जाने देते, ये कहते हैं कि आपको भाई बहन बना देंगे, आप मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो परिवार के परिवार जुड़े हैं। सो व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट, व्हाट एक्चुअली रियली हैपेंस?
0: या लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, वही जब तक हम अंदर आकर नहीं देखते तो बाहर सुनी सुनाई बातों पर चलने के कारण हमारे माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि भाई बहन बना देंगे, ये एक बहुत बड़ा टैग ऑर्गेनाइजेशन पर लगा हुआ है कि वहां नहीं जाना, वहां जाने से भाई बहन बना देंगे। वी नीड टू क्वेश्चन अवर सेल्फ दैट व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, यू नो, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से व्हेन वी से दैट द रिलेशनशिप विल चेंज, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी न रहकर अब भाई बहन बन जाएंगे, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू फील इट मीन्स?
1: वट एवर कम्स टू माई माइंड, आई एम सेइंग वट एवर, बिकॉज ऑल द थॉट्स इफ यू लुक एट, ऑल द फियर इफ यू लुक एट इज रिलेटेड टू समवेयर सेलिबेसी,
0: राइट,
1: यू नो, एब्सेंटिंग फ्रॉम दैट प्रोसेस। बट इज इट बींग, यू नो, वट रियली हैपन्स, यू आर बींग टॉट, आर पीपल बींग टॉट देयर, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अटैच टू इट।
0: तो जब हम आत्मा का परिचय हमें मिलता है तो सबसे पहले हमें समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, और उसमें हमने ये समझा कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, बॉडी इज जस्ट माई कॉस्ट्यूम, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, प्योरिटी

0: मेरा धर्म है, प्योरिटी मेरा ओरिजिनल संस्कार है. बट आई फॉरगॉट दिस एंड बिकॉज आई फॉरगॉट दिस आई लॉस्ट कंट्रोल ओवर माई सेंस ऑर्गन्स. नाउ आई एम टेकिंग कंट्रोल बैक. तो राजयोग इज अ जर्नी फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, कि हम देह के अभिमान में इतना टूटे हुए थे और अब हम आत्म अभिमानी बनने की यात्रा पर जा रहे हैं. और ये जो प्योरिटी की धारणा है या कहें सेलिबेसी को प्रैक्टिस करना, ये इस प्रोसेस को बहुत इजी बना देती है. ये धारणा भी किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा नहीं बताई गई थी, ये बात भी निराकार परमात्मा शिव द्वारा ही बताई गई है कि पवित्रता को अपने जीवन में धारण करने से आप वो शुद्ध पवित्र आत्मा फिर बन सकते हैं. तो लेकिन फिर अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट दैट आपको ये करना ही होगा, नहीं. इट्स लाइक हम एक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई भी देते हैं, इंजेक्शन भी लगा देता है और साथ साथ कह देता है कि आप इन एक दो चीजों की परहेज करो, प्रिकॉशन. अब कुछ पेशेंट प्रिकॉशन करते हैं, कुछ पेशेंट उस प्रिकॉशन को नहीं फॉलो करते, लेकिन वो दवाई तो फिर भी लेते हैं, उस ट्रीटमेंट को तो फिर भी लेते हैं, लेकिन शायद उनमें वो विल पावर नहीं है या वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है जो उस प्रिकॉशन के ऊपर वो ध्यान रख ले. वो फिर भी तेल वाली चीज खा लेंगे, फिर भी मीठी वाली चीज खा लेंगे जो उनको डॉक्टर ने मना की है. इसी तरह ये भी एक ट्रीटमेंट है. आत्मा बहुत इम्प्योर हो चुकी है, वो सारे ओरिजिनल संस्कार्स मर्ज हो गए हैं. अब ये हीलिंग प्रोसेस ना, वी सेड मेडिटेशन इज हीलिंग, तो सारे पुराने संस्कारों की हीलिंग जो हो रही है, तो उसमें सेलिबेसी या प्योरिटी ये भी एक प्रिकॉशन है कि अगर आप राजयोग सीखे, राजयोग का प्रयोग भी करें, दैट इज द ट्रीटमेंट. जो हम ज्ञान की मुरली रोज सुनते हैं, दैट इज द मेडिकेशन. रोज हमें वो मेडिसिन मिलती है. अब इसका असर जल्दी से आपके ऊपर हो और आप उस स्टेज को अचीव कर सके, तो प्योरिटी की अगर आप अपने जीवन में धारणा करते हैं, दिस प्रोसेस बिकम्स ईजियर. बट ऐसा नहीं है कि वहां जाना मतलब आपको ये करना ही होगा एंड बिकॉज ऑफ विच आप जाते ही नहीं.
1: Yeah, that's what it is. इनफैक्ट अगर हम सारे धर्मों में देखें तो हर धर्म में प्योरिटी का यही एग्जाम्पल सामने आता है.
0: हर धर्म में हर महान आत्मा ने, हर संत आत्मा ने, हर हर रिलीजन में भी प्योरिटी का एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है. सेलिबेसी इज अ पावर, इट इज एनर्जी. तो प्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं है,
1: थॉट्स.
0: We are talking of purity at the level of thought, जहां हर एक विकार का. और देखो आज दिन तक हम सुनते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो फिर उसको भूल क्यों जाते हैं कि it started with काम विकार. जब तक उस विकार के ऊपर विजय नहीं पाई, तब तक आगे के बाकी विकारों पर विजय नहीं पा रहे. इट इज सेड फर्स्ट इन द लिस्ट, तो फर्स्ट इन द लिस्ट ऑर्डर में ही तो जाना पड़ेगा ना, तब तो आगे का खत्म होगा. और इसीलिए उसको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल मेरा जो व्यवहार है, नेचुरल जो मेरी कॉन्शियसनेस है, वो सोल कॉन्शियसनेस है. और indulging in something like this is the lowest form of body consciousness.
1: Because I think it's always
0: बिल्कुल आप बॉडी के बिल्कुल ही जैसे शरीर के वशीभूत हो जाते हैं उस आकर्षण की तरफ. तो आप उससे ऊपर जब तक नहीं उठेंगे, तो आत्म अभिमानी तो बहुत ऊंची जो कहे स्थिति हो जाएगी. और जब तक इसके ऊपर हम ओवरकम नहीं करते हैं, तब तक आगे की क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष ये सारे जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट को नहीं पकड़ा.
1: लेकिन जहां आपने थॉट की बात की सबसे शिवानी, आज के इस वक्त में अगर हम देखें तो थॉट, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बात कही थी कि थॉट, क्योंकि हमें लगता है कि कोई तो देख नहीं रहा, तो हमारे अपने हैं और वो किसी को नहीं पता चलेंगे. लेकिन आज इस पर बच्चा बच्चा थॉट में आ चुका है, चाहे एक्शन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे. ये भी एक बहुत गलत, जो मुझे लगता है कि पूरा एक सिनारियो क्रिएट हुआ है.
0: एंड आज जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं है, उसका फंडामेंटल रीजन यही है, इम्प्योरिटी इन थॉट. क्योंकि इम्प्योरिटी हमारी कॉन्सेंट्रेशन को टोटली ब्रेक डाउन कर देगी. और यही जब हम प्योरिटी को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो एकाग्रता शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है.

0: society hai. Celibacy, I don't think we need to argue about it. It is something which needs to be experienced. Try it out. If you feel it's difficult, please remember it's only one thought away. कोई भी परिवर्तन, और हम शुरू से ये देखते आए, कोई भी परिवर्तन करने में सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर हम हैं. हस्बैंड वाइफ सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, हमारे कितने सारे रिलेशनशिप्स हैं. मदर एंड चाइल्ड, ब्रदर एंड सिस्टर, फ्रेंड्स, सिर्फ दोस्त, टीचर एंड स्टूडेंट. आई मीन देर आर सो मेनी रिलेशनशिप्स. तो वाई ओनली द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को हम कहते हैं अब ये भाई बहन का रिश्ता बन गया है. वाई प्योरिटी इज देयर इन सो मेनी रिलेशनशिप्स. तो क्या एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इतना एक प्योर रिलेशनशिप नहीं हो सकता? राजयोग से क्या होगा, हम अपनी एनर्जी को प्योरिफिकेशन के प्रोसेस पे लेके जा रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरिफिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन एज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइफ राइट नाउ वेयर आई हैव सेल्फ कंट्रोल. सेलिबेसी प्रैक्टिस करने से जो अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, उसके बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी विल पावर, क्योंकि इसको एक चीज ऐसा माना गया जो इम्पॉसिबल है. यू नो, दुनिया में लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि आप पवित्रता की धारणा करना इकट्ठे रहते हुए. इसीलिए तो आज दिन तक संन्यास किया. संन्यास क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्योरिटी की धारणा करना चाहते थे, लेकिन कहा कि इकट्ठे रहकर नहीं कर सकते, तो अलग हो गए. लेकिन जहां परमात्मा की शक्ति मिल जाती है, तब ये इतना ईजी हो जाता है. इट्स जस्ट वन thought, and when it's with understanding कि मैं कौन हूँ, एक पवित्र आत्मा, ये कौन है, वो भी एक pure soul, शक्ति किसकी मिल रही है, तो impossible तो बहुत दूर की बात है. In fact, I would say it's very, very, very simple. It's just very simple. It is has to be tried out. उसको try करके उसका हम benefit देख सकते हैं. सबसे practical benefit जो हरेक को अनुभव होगा वो है energy. ब्रह्मकुमारीज में आने से क्यों ये प्रिवेंटिव मेजर बताया जाता है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन. आत्मा की एनर्जी डिस्चार्ज हो चुकी थी, हम एनर्जी की कंजर्वेशन की बात जहां कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी लीकेज है, तो इसको हमें रोकना पड़ता है. तो इसलिए ये बात सबसे पहले बताई जाती है. और जो आत्माएं या कहे जो भाई बहने इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, वो एक नई ही शक्ति को जैसे अपने जीवन में देखते हैं, कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि उनको पता नहीं कहां से मिल गया है. द बॉडी इज वेरी एनर्जेटिक, वेरी फ्रेश, एंड बीमारियां भी कम होती हैं. इससे, इन विकारों में जाने से शरीर के ऊपर एक असर पड़ता ही जाता है. एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली वी फाइंड पीपल हु से ओके द सिस्टर्स हियर लुक मच यंगर देन व्हाट दे आर. वेल, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस प्योरिटी. It's because of this practice, the body would not degenerate as much it would if you indulge in something like that. So purity retains the, you know, the body ki jo energy hai, usko bhi retain karta hai. Mind. Mind bhi bahut energetic ho jata hai, bahut fresh, chidchidapan, gussa, ye kam hone lagi hai.
1: Wonderful. Celibacy, clear. It actually makes sense. We come to the next question. Sister Shivani, I can really, you know, understand in puri baatcheet mein ki how we can actually conserve the energy by following celibacy. Lekin ye baat bhi samne aa rahi hai ki it's not compulsory. You know, if somebody comes to the center, it's not compulsory that they have to follow celibacy.
0: It's not compulsory at all. See, aap dekho, normally bhi jeevan mein, saare varsh ke andar kuch aise din hote hain jab hum iski dharna karte hain. You know, jab hum koi teerth par bhi jaate hain, to bhi hum pavitrata ki dharna karte hain. Koi na koi reason hoga, kyunki kahin na kahin atma ko pata hai ki jab aap parmatma se sambandh jodne ki koshish kar rahe ho, ya ek pavitra karya kar rahe ho, ya ek pavitra din hai, us din aap pavitrata ki dharna karte hain. देखो, तो अब जो संगम युग है वो एक दिन नहीं है, लेकिन ये पूरी पीरियड जो अभी चल रहा है, ये एक पवित्र समय चल रहा है. जब आप परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहे हो, तो आपका पवित्र दिन सिर्फ एक दिन नहीं, एक जीवन बन जाता है. बट ओनली इफ यू फील लाइक डूइंग इट. इट्स नॉट दैट इट इज कंपल्सरी, बट जैसे एक प्रिवेंशन बताई जाती है, और कुछ लोग उसको करके देखते हैं, और करके अगर उनको बेनिफिट लगता है उससे, और करना मतलब कुछ बहुत ऐसा फोर्सफुल नहीं होता, इट्स वेरी नेचुरल.
1: बिल्कुल. सुश्री शिवानी, एक आखिरी सवाल अभी भी है जो कि मिथ्स में आ रहा है या कुछ ऐसा

0: सवाल है, फाइनेंसेस।
1: अच्छा
0: ब्रह्माकुमारी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सुंदर माउंट आबू का, कई लोग मुझे बताते हैं कि इतना खूबसूरत है, इतने अच्छे रिट्रीट सेंटर्स हैं, एंड दैट नीड्स लॉट ऑफ मनी टू एक्चुअली यू नो। सो बहुत सवाल है ये कि बहुत पैसा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, सो इज देयर सम एक्सप्लेनेशन फॉर दैट?
1: जिस परिवार में लाखों सदस्य हो तो वहां पैसा कहां से आएगा?
0: सदस्य
1: परिवार के सदस्यों से आएगा। इनफैक्ट ये शायद एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां हर कोर्स, हर ट्रेनिंग, हर प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। नहीं तो हर जगह पर कोई ना कोई एक वैल्यू तो जुड़ती ही है, लेकिन परमात्मा का बच्चों को दिया जा रहा ज्ञान है। तो शिव बाबा का ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था कि इस पर कोई कॉस्ट नहीं लगाया जाएगा, 1 रूपी भी नहीं, क्योंकि अगर 1 रूपी भी कॉस्ट लगा तो मेरा कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो 1 रूपी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये ज्ञान हर आत्मा का हक है इस ज्ञान पर, तो इसलिए कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस नहीं ली जाती। फिर भी पूरा सिस्टम चलता है कैसे कि जो आत्माएं इस परिवार का हिस्सा बन जाती है, जिनके जीवन में इतना श्रेष्ठ परिवर्तन आता है और जो चाहते हैं कि ये परिवर्तन और आत्माओं तक भी पहुंचे, तो वो हर तरह से उस कार्य में सहयोग देना चाहते हैं। कोई अपना तन, कोई मन से और कोई धन से। यू कैन गिव मनी, स्किल्स, टाइम, एनर्जी और जस्ट माइंड थॉट पावर, दैट्स ऑल। इट्स बेसिकली एवरीबडी इज गेटिंग टूगेदर, कोऑपरेटिंग इन दिस टास्क ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसमें कोई भी फंडिंग बाहर से या कोई भी डोनेशंस बाहर से आए ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज दैट इज आउट दैट ब्रह्माकुमारीज मीन्स लॉट ऑफ मनी।
0: लॉट ऑफ मनी एंड इट कम्स फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इंडिया।
1: एक्चुअली नॉट, यू मस्ट सी, इट्स वेरी ब्यूटिफुल कि एक एक रिट्रीट सेंटर या एक एक सेंटर कैसे बनता है। जैसे अभी गुड़गांव में एक रिट्रीट सेंटर जो बना कुछ वर्ष पहले, तो दादी जी ने क्या किया कि हर सेंटर पर ये मैसेज भेज दिया कि ये सेंटर बनना है फॉर सर्विस। तो हर आत्मा या हर भाई बहन जो आते हैं वो हर रोज 1 रूपी उस सेंटर के कंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करे, अगर वो कर सकते हैं तो, नॉट अदरवाइज, नो कंपल्शन। अब लाखों लोग जुड़े हुए हैं एंड 1 रूपी इज अ कॉस्ट विच एवरीबडी कैन अफोर्ड। तो अगर लाखों लोग सिर्फ रोज 1 रूपये कंट्रीब्यूट करें तो कितना हुआ? रोज का उतना जेनरेट हुआ, जिससे धीरे धीरे वो रिट्रीट सेंटर बन गया। यू नो, इट वॉज नॉट दैट किसी एक ने आकर लाखों दे दिया और उससे वो बना। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल द वे वी सी इट गेटिंग डन, कि हर आत्मा का कण कण कण कण जुटकर वो एक परमात्मा का कार्य बनता है। तो हरेक के सहयोग से ये कार्य चल रहा है, किसी को कंपल्सरी नहीं देना पड़ता। गुप्त रूप से जो हरेक आत्मा अपना सहयोग दे, और वो भी वो आत्माएं जो ऑलरेडी परमात्मा से जुड़ चुकी है और जो अपने जीवन में वो परिवर्तन अनुभव कर रही है, जो वो औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उनके सहयोग से कार्य चलता है।
0: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। और इससे एक सबसे बड़ी बात ये कि मैं एक इंडिविजुअल, एक आत्मा भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मे बी नॉट फाइनेंशियली, बट यू नो, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं क्या हूँ इतनी बड़ी सृष्टि में, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रियली मैटर।
1: इट्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो आकर हॉस्पिटल का ध्यान रखते हैं माउंट आबू में, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, वो कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं। तो ऐसे परिवार का एक एक सदस्य, जैसे एक नॉर्मल परिवार होता है घर में, कि हरेक का रोल अलग अलग होता है, तो हरेक इस तरह से अपना रोल कॉन्ट्रीब्यूट करके एक सुंदर कार्य को कर रहे हैं पूरे विश्व में।
0: बहुत सुंदर। तो आज ऐसा लगता है कि कई सारे जो क्वेश्चन बौछार थी वो पहुंचे आप तक, और एक एक सवाल का एक एक बहुत आसान और बहुत सिंपल सहज हमें जवाब भी मिला, और सारी वो मिस्ट्री ऐसा लगता है कि अब छट गई है। सुश्री शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। जब भी हम किसी ज्ञान की बात करते हैं, जब भी ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है, ही सवाल उठने नेचुरल होते हैं। और इतना पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा जो ज्ञान का एक कहा जाए घर है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें सचमुच हम तक पहुंच रही थी। आज हमने उन रहस्यों को जानने की कोशिश की है, और कितना आसान था सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मिस्ट्री थी या नहीं दिखाई दे रहा था। अभी भी कोई सवाल आपके पास है अपने जीवन से?

पैदा हुआ या फिर सृष्टि में क्या हो रहा है, परमात्मा से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो आपको अभी भी परेशान कर रही है, स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3 4 4 5 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 5 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अब वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन अभी हमने जो बात की, हमने जब मन के लेवल पर, जबकि थॉट के लेवल पर हमने जाना कि किस तरह से हम कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, उसी तरह से जो हमारा पूरा व्यवहार में आता है, स्पेशली खाना पीना, क्या उसका भी हमारे सोल कॉन्शियसनेस के इस एफर्ट में असर पड़ सकता है, जानने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कड़ी में। दीजिए इजाजत, ओम शांति।

हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरण की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर यह है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ट्रुथ मेरी क्रिएशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ. फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब कभी ऐसी थोड़ी सी भी हार खा लें, रिएक्ट कर जाएं, एटलीस्ट देन स्टॉप एंड लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ. नहीं तो अगर एक बार, दो बार, चार बार ऐसे हार खाते गए तो लगेंगे नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम ही राइट था कि ये सब कुछ तो बाहर से ही आता. लेकिन अगर सपोज मैंने एक बार रिएक्ट किया, गुस्सा किया, नाउ लेट मी सिट बैक एंड यू नो रिकवर. जैसे कि एक इलनेस तो आ गई, लेकिन इलनेस का अब इलाज कर लें, उससे रिकवर हो जाए. क्योंकि हम उससे रिकवर नहीं होते तो एक के बाद एक बीमारी
1: उसके साथ जुड़ती जाती है.
0: तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार अगर बीमारी आपको कोई हो जाती है तो आपका अपना इलाज आपको पूरी तरह से करना चाहिए. ना शारीरिक बीमारी भी होती है, कहते हैं रेस्ट कर लो, अच्छी तरह से रेस्ट कर लो ताकि आप उस बीमारी से रिकवर हो जाओ. अगर आप बिना रिकवर हुए ही एक्टिविटी में आ गए तो वो बीमारी हो सकता है आपको फिर से दोबारा आ जाए. तो इसी तरह एक बार गुस्सा किया, उसमें से रिकवर नहीं किया तो 10 मिनट बाद फिर कुछ और हो जाएगा. और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे एंगर इज नेचुरल.
1: और इनफैक्ट नहीं, एक बार जब एंगर कर जब हो जाता है ना, जब अपने आप को रिस्ट्रेन किया उसके बावजूद भी हो गया, उसके ऊपर हमने काम नहीं किया उसी वक्त, तो उसके रिपरकशन, क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद ये देखा जैसे शिवानी कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं.
0: बिकॉज वी सॉ कि फीलिंग क्या होती है, फिर मेरी गलती तो थी ना, फिर जस्टिफाई मतलब आपकी गलती थी, देन अगेन दैट यू नो, क्योंकि वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि अगर एक वो थॉट आ गई कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरी थॉट आएगी आपकी गलती थी, तीसरी थॉट आएगी फिर चेंज किसको होना चाहिए, आपको. यू सी ना, अगेन वी फॉल बैक इन टू दैट ओल्ड थिंकिंग पैटर्न. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर रिएक्ट कर भी दिया, किसी भी फॉर्म का रिएक्शन बाहर या अंदर, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स एंड सिट बैक विद योरसेल्फ. अगर आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत बिजी हैं, फिर भी आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके कोई फ्रेंड्स, अगर उनका मूड खराब हो गया, यू नो दे आर अपसेट एंड यू सी देम लाइक दैट कि दे आर अपसेट, दे आर इन पेन, तो आप क्या करते हो?
1: हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम उनके साथ बातें करने लगते.
0: नाउ सी इज इन दैट नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, 2-3 मिनट भी हम टाइम निकालकर उनसे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हाउ आर यू, इट्स ओके, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओ, कोई बात नहीं. तो जबकि हम औरों के लिए ये टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि वो दर्द में है एंड उनका दर्द मुझे मैटर करता है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ बैठूंगी, तो मैं अपना काम छोड़ के अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? अगर मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में ही काम करती जाती हूँ, करती जाती हूँ, अपने साथ क्यों नहीं 2 मिनट निकाल कर बैठ सकते?
1: That's right, true actually.
0: So the minute we go into pain, let's stop. अपने आप से बात करें, फिर उस सिचुएशन को पर्सपेक्टिव में देखें और रिकवर करें विद द पॉजिटिव थॉट, व्हाटएवर हैपेंड फाइन, आई एम अ पावरफुल सोल. अगेन यू नो वो एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ है थॉट्स का, कोई बात नहीं, उसको स्टॉप करके, कट करके, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करना है. अगर मैंने अपने आप को नहीं स्टेबल किया तो फिर मैं हर सिचुएशन में फेल होती जाऊंगी सारा दिन. आप देखो, अगर एक बार आपका मूड खराब हो गया आज सुबह सुबह, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, फिर हर सिचुएशन में, यही अगर आपने 2 मिनट निकाल लिया, दिस इज ऑल मेडिटेशन. यू नो मेडिटेशन, क्योंकि फर्स्ट चीज है अपने आप से रिश्ता, फिर परमात्मा से रिश्ता, अपनी हीलिंग, दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन यू नो एवरी टाइम वी थिंक इट्स सपोज टू बी वेरी टेक्निकल, नो, मेडिटेशन इज जस्ट ब्यूटिफुल, टेकिंग आउट टाइम, अपने आप से बात की, परमात्मा से बात की, अपना ध्यान रखा, उससे शक्ति ली. और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट, ताकि वो ऑटोमेटिक अगर हमारी रूटीन में फिक्स हो जाए कि हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उस 1 घंटे के अंदर थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ था तो उस 1 मिनट के अंदर.
1: बिल्कुल, जैसे आप ये कह रहे हो, हम हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद घर फोन करते हैं, बच्चा ठीक है कि नहीं. सो अगेन यू नो, अपने हस्बैंड को फोन करते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, कि कितने सारे लोग ऐसे करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बोलें, अपने आप के साथ करें कि मैं ठीक हूं कि नहीं.
0: इट्स ओनली दैट, वो 1 मिनट सिर्फ उसी के लिए है. और बजाय कि अब कई बार क्या होता है कि अगर हम वो 1 मिनट निकालते हैं तो कई बार हम एक सीरीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स में फिर चले जाते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मुझे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, उसने ऐसा किया, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. हमें वो 1 मिनट इसलिए नहीं निकाला कि हम वो परिस्थिति का चिंतन करने वाले हैं उसमें बैठकर.

0: मिनट इसलिए निकलता है ताकि उस एक घंटे के अंदर जो ऑर्डिनरी वेस्ट, कभी थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स जो आ गई होंगी, तो ये वन मिनट में हम कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो जितना भी थोड़ा सा वो एक घंटे के अंदर ऊपर नीचे हुआ होता है वो खत्म हो जाता है। भले हम अपने सभी भाई बहनों को ये बार बार कह रहे हैं, बट आई स्टिल फील नॉट मेनी आर ट्राइंग। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बात बहुत सिंपल लगती है कि एक घंटे में एक मिनट, ये कौन सी बड़ी बात है, बट ये एक घंटे में एक मिनट बहुत पावरफुल टूल है। अगर समवन जस्ट टेक्स इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट और इसको एक हफ्ते के लिए सिर्फ करे, एक हफ्ते के लिए आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा दो जो हर एक घंटे के बाद बजेगा ही बजेगा, और वो तो बजेगा लेकिन आप स्टॉप करेंगे, आप वो स्टॉप करेंगे और आप पॉज करके वो क्रिएट करेंगे, लाइफ विल चेंज, दैट इज डेफिनेट,
1: वेरी ट्रू। और वो उस एक घंटे के बाद जो एक मिनट है उसमें ये नहीं, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये नहीं सोचना कि क्या हुआ था।
0: वो कई बार क्योंकि दर्द इतनी डीप रूटेड है ना, और वो वैसे ही चल ही रहा था उस एक घंटे में, तो कई बार वो एक मिनट भी उस सिचुएशन के बारे में या उस व्यक्ति के चिंतन के बारे में ही एक, बिकॉज वन मिनट इज वेरी शॉर्ट, और आप एक घंटे के बाद हर टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते। आप ऑफिस में हैं, आप बार बार ये नहीं कर सकते आप पांच मिनट निकाल लो, दस मिनट, सो इसलिए इट्स वन मिनट। लेकिन अगर वो वन मिनट एक्यूरेटली आप करो, अब होता क्या है, सपोज 9 to 10 इन द मॉर्निंग मेरा कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 o'clock अगर मैंने अपने आप को स्टेबल कर लिया तो मेरा 10 to 11 ऑटोमेटिकली ठीक बीतेगा। लेकिन अगर मैंने वो 1 मिनट 10 o'clock पे नहीं निकाला है तो मेरा 9 to 10 जैसा बीता होगा तो वो 10 to 11 पर इन्फ्लुएंस करेगा, फिर 10 to 11 भी थोड़ा अच्छा नहीं बीतेगा तो वो 11, तो somehow
1: 5 बजे तक तो स्टेट जो कुछ नहीं हो पाएगा।
0: फिर जबकि हम शाम को घर पहुंचते हैं तब तक तो हमारी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसे बड़े लोग हैं ना डायरी रखते हैं कि 9 to 10 ये करना है, 10 to 11 ये करना है, तो जैसे आप ऐसी डायरी बनाते हो तो एक कॉलम और भी साथ में ऐड करो, 9 to 10 क्या फील करना है, वॉट टू डू इज वन कॉलम, 9 to 10 वॉट टू डू एंड वॉट टू फील, 10 to 11 कैसा फील करना है,
1: पावरफुल, लवफुल,
0: या एंड बेसिकली एवरीवन वांट्स टू फील हैप्पी। अगर आप किसी से भी पूछो क्या चाहिए तो वन यूनानिमस वर्ड इज खुशी चाहिए। तो हम और आप, इट्स अमेजिंग, आप यू आस्क एनीवन टुडे कितने दिन खुश रहना चाहेंगे, कहते 365 days। अच्छा, पूरे दिन में कितनी बार, कहेंगे हर मिनट। तो प्योर डिजायर है कि मैं जीवन का पल पल खुशी में बिताऊं, कर रहे हैं ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि अटेंशन नहीं है उस तरफ। तो जैसे आप अपनी डायरी को टिक करते जाते हैं कि 9 to 10 ये काम हो गया, 10 to 11 ये काम हो गया, तो सेकंड कॉलम को भी चेक करें कि वो 9 to 10 आप जो अनुभव करना चाहते थे, खुशी का, स्टेबिलिटी का, वो किया या सिर्फ काम किया। और काम के साथ इधर फीलिंग दर्द वाली तो नहीं क्रिएट हो गई थी। लेट्स से आपका कल बच्चों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या बच्चों की स्टडी आपके लिए कंसर्न बनी हुई है एंड इट्स देयर ऑन योर माइंड, या आपके घर में फैमिली में कोई किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इट्स ऑन योर माइंड। अब आप काम तो कर रहे हैं, आप ठीक करते जाएंगे, ये काम हुआ, ये काम हुआ, मन की स्थिति क्या थी पूरा दिन, हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सिर्फ काम किया काम किया काम किया लेकिन सारा दिन दर्द में बीता, हाउ फेयर इज इट। क्योंकि डे बाय डे फिर जीवन ऐसे तो बीत ही रहे हैं, फिर पूछो कैसे चल रहा है, कहेंगे चल रहा है, चल रहा है। एंड देन समवेयर जो एक बहुत डीप रूटेड सभी के अंदर आज सेट होता जा रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट वेरी इंजॉयबल, इट इज मोर लाइक चल रहा है, इट्स मोर लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सिर्फ पूरा करते जा रहे हैं। और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इट्स नॉट दैट खुशी इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी मच पॉसिबल, और इसीलिए हर एक के अंदर ये डिजायर है कि मैं खुश रहूं। लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो अपने आप नहीं कल्टिवेट हो जाएगी। आपने पूरी जो अपॉइंटमेंट डायरी बनाई, आप उस पर काम करते हैं तब तो वो आप एक एक टास्क अचीव कर पाते हैं। सिर्फ डायरी बना दे और किया नहीं तो हो जाएगा क्या? सिर्फ सोचने से कि मुझे ये करना तो वो अपने आप हो जाएगा,
1: करना तो पड़ेगा,
0: करना तो पड़ेगा ना। तो नाउ एवरीवन, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, करेंगे क्या उसके लिए? एक मिनट निकालेंगे उसके लिए? हाँ करेंगे, फिर करते नहीं। तो अनलेस वी डू इट, वो अपने आप तो नहीं आने वाला। तो इसलिए मॉर्निंग में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, 10

0: मिनट्स भी अगर अपने से निकालते तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं आपसे मेडिटेशन आगे हो रहा, परमात्मा से भी अभी तक कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, अपना दिन तो प्लान कर सकते हैं ना, दिन की प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ आज मुझे कैसा फील करना है पूरा दिन। तो वो थॉट हम सुबह सुबह क्रिएट करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, चाहे आज कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ गई, आई विल क्रॉस इट विद स्टेबिलिटी, आई एम पावरफुल, यू नो दिस इज अ थॉट आई हैव टू कीप गिविंग माई सेल्फ। फिर सुबह सिर्फ दिया लेकिन फिर सारा दिन फिर सिचुएशन के प्रभाव में आ गए, इसलिए वो एक घंटे के बाद एक मिनट, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। सो वो एक मिनट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके नेक्स्ट आवर पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये एक एक मिनट निकालें हर घंटे के बाद तो हम सारा दिन हमारी स्थिति कैसे रहेगी, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट शाम को घर पहुंचेंगे तो कैसी स्थिति
1: हम उस हालत में नहीं होंगे जिसमें हम थके हुए होते। इनफैक्ट फिजिकली हम जितना भी थके हुए हों हम इमोशनली और मेंटली इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं।
0: एक्चुअली फिजिकली हम बहुत ज्यादा नहीं थक रहे, आज क्या हमारा वायुमंडल है, अच्छे अच्छे हमारे ऑफिस है, एसी गाड़ी में हम ऑफिस जाते हैं, एसी ऑफिस में हम बैठे हैं, कम्फर्टेबली बैठे, कोई फिजिकल तो बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। ये जो थकावट की फीलिंग है इट्स मोर हियर, क्योंकि इमोशनली और मेंटली हम थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की वेस्टेज बहुत हो रही है, क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ वो एनर्जी डिप्लीट होते जा रही
1: है। शिवानी वी शुड ट्राई टू टेल एवरीवन, हम सब आज संकल्प करें, मैं तो आज अभी इस एपिसोड के बाद एक घंटे के बाद का अलार्म लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्राई करके देखे कि एक हफ्ता कम से कम हर एक घंटे बाद हम ये एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक मिनट में हमने परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है, हमने उसे एक घंटे को भी नहीं देखना है,
0: अपने दर्द का भी चिंतन नहीं करना।
1: वही तो कर रहे होते हैं, तो ना परिस्थिति का चिंतन, ना अपने दर्द का चिंतन, और ना ही एक घंटे को भी देखें, सिर्फ अपने आप को ये कहें वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं कि मैं कौन हूं, और अपनी वो स्ट्रेंथ जो है वो अगले घंटे के लिए भी अपने आप को।
0: इट्स बेसिकली लाइक अ चार्जिंग, जैसे आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो पहले मोबाइल सुबह चार्ज कर लेते हैं लेकिन वो सारा दिन में तो डिस्चार्ज हो जाता है।
1: हमें हाँ,
0: तो अब हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, चार्जर अपने साथ रखना शुरू किया ना, अब आप कहीं भी जाओ हर जगह चार्जर लगे हुए हैं, विच इज वेरी गुड। ऑफिस में भी आप जाओ चार्जर भी लगा है, फोन उसी के साथ लगा हुआ है, तो शाम को जब आप घर पहुंच रहे हैं, आप घर ड्राइव करके जा रहे हैं, आपका फोन फुल्ली चार्ज है। पहले क्या होता था, घर पहुंचने के टाइम वापसी पे वो फोन कई बार डिस्चार्ज हो जाता था, तो जब आपको चाहिए था वो, आप कहीं रास्ते में अटक गए, यू डिडंट हैव इट। सिमिलरली हियर, अगर आप सारा दिन में बहुत डिस्चार्ज हो गए, शाम को जब आपको वो एनर्जी चाहिए, आप घर पहुंचे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, सिर्फ वही टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, उसमें हम हमेशा हर रोज कैसे होते हैं, दैट इज द ओनली रीजन जो हमारे आज घर पे रिलेशनशिप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी जब घर पहुंचते हैं सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वो शाम तक डिस्चार्ज की स्थिति में होता है,
1: और इनफैक्ट जो घर पे हैं
0: वो भी
1: डिस्चार्ज हो चुके होते हैं। एंड देन जैसे कि मैं सारा दिन का थका हारा और आया हूँ, वो कहते हैं कि मैं सारा दिन वेट करती रही, मैं सारा दिन घर पे बैठी रही, तो वो वहां टकराव जो है वो
0: अब तो पूरी इवनिंग जो है ना आपकी 7 to 10 या जितना भी टाइम आप घर पे हैं वो डिस्चार्ज स्थिति में है, फिर आप रात को सोए चार्ज हुए, सुबह आप फ्रेश है, आप ऑफिस चले गए, फिर घर पे आए, फिर डिस्चार्ज है। तो बेसिकली मेजोरिटी लोगों के लिए आज जितना टाइम परिवार वालों के साथ है उस समय हमारी स्थिति कैसी है,
1: बहुत थकी हुई होती है, वेरी ट्रू।
0: सो द एनर्जी विच वी हैव टू एक्सचेंज विद फैमिली वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रहे हैं, और फिर अगर मेरी आज इवनिंग अच्छी नहीं बीती या कुछ ना कुछ हर टाइम एक कॉन्फ्लिक्ट सा बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे ऑफिस पे पड़ेगा कि नहीं कल सुबह।
1: मैं ऑलरेडी थकी हुई होंगी, ऑलरेडी मेरा लड़ाई हो चुकी होगी क्योंकि मैं थकी हुई थी, और थकी हुई होती है अगले दिन मॉर्निंग फिर मेरा ये।
0: आप किसी से भी आज पूछो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है तो ऑर्डर पता है क्या देंगे, वर्क, फैमिली एंड सेल्फ। पहले मेरा काम, फिर परिवार, फिर मैं खुद। अब काम इतना ज्यादा टाइम ले रहा है आज, कहेंगे 10 घंटे 12 घंटे काम में चले गए, फैमिली को ही हम 2-3 घंटा दे पाते हैं तो वो थर्ड स्टेप तक हम पहुंचते नहीं,
1: तब तक हम सो जाते हैं,
0: इसलिए कहेंगे सेल्फ के लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले रहे हैं। व्हाट इज द ऑर्डर, वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या ये राइट ऑर्डर है हमारा? तो अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो

0: order should be self, family, work. Self healthy hoga, to family mein relationships achhe honge. Family healthy ko chhodkar aap office jayenge, tab jaakar aapka wahan kuch man lagega, aap theek se kaam karenge. Self dard mein hai, to relationships ghar pe thode se upar niche hue. Ab is dard mein, is parivar ko chhodke office pahunchte hain. To office pahunch ke man kahan hota hai? Ye hua, ye hua, ye conflict hai, pata nahi kya. To are you doing justice to work also? तो अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है आप परिवार के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते और काम के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकते. हाँ बहुत सारे घंटे स्पेंड कर सकते हैं वहाँ
1: लेकिन आप तो बिल्कुल निकलेगा नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा.
0: एक्चुअली पहले वर्क को कर दिया, सेल्फ के ऊपर टाइम नहीं दिया, तो उस वर्क में ज्यादा घंटे स्पेंड करने पड़ रहे हैं. क्योंकि दर्द में आप काम करो और हेल्दी स्थिति में काम करो, फर्क.
1: ऑफकोर्स आप इतने बोझिल, इतने हैवी, इतने थकान से भरे हुए होते हो. इनफैक्ट यहाँ से शिवानी एक और बात कि बार बार हम ये कहते हैं कि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ,
0: काम परिवार के लिए
1: प्ली ये होता है. जब भी आपने ये कहा तो मेरे को बिल्कुल सामने ये याद आएगा कि वर्क को हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है, लेकिन हमारी प्ली ये होती है
0: कि फैमिली के
1: लिए, हमारे लिए तो काम.
0: एब्सोल्युटली. लेकिन फैमिली को क्या चाहिए आपसे? फैमिली को सिर्फ धन नहीं चाहिए आपसे, चाहिए क्या आपसे? खुशी चाहिए, घर में प्यार चाहिए. आज मेहनत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन खुशी का पैरामीटर, घर में आपस में विश्वास का पैरामीटर, प्यार का पैरामीटर, वो तो कहीं ना कहीं उल्टा और ही घटता जा रहा है. जस्ट बिकॉज द प्रायोरिटी वॉज नॉट राइट. एंड जब हम ये प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ घंटे कि भाई वर्क को 14 घंटे दिए तो सेल्फ को 2 घंटे देना. नहीं, इट्स जस्ट दैट प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए कि जब तक मैं हेल्दी नहीं हूं मेरी फैमिली हेल्दी नहीं हो सकती, और जब तक मैं और फैमिली हेल्दी नहीं है मैं काम के क्षेत्र में भी जस्टिस नहीं कर सकता. तो मुझे पहले अपने को हील करना पड़ेगा. मैं ठीक हो गया, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक होकर मैं ऑफिस गया. नाउ आई विल बी डूइंग जस्टिस टू वर्क, एंड जितना काम मुझे करना है 100% गारंटी इट विल गेट डन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. हम काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेपर पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, मन कहाँ पर है?
1: वहाँ क्या चल रहा होगा?
0: अगर घर पे नहीं भी है, ऑफिस में कोई ना कोई बात हो जाती है सारा दिन, और मेरे अंदर ताकत तो है नहीं क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो काम भी कर रहे हैं, मन ऐसा क्यों, ये क्यों, आगे कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं. सो एम आई डूइंग फुल जस्टिस टू वर्क? इवन काम के क्षेत्र में फुल कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी तब होगी जब सेल्फ पे काम किया होगा. लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हमारा सारा टाइम काम पे है. तो कहीं ना कहीं अपने जीवन की जो प्रायोरिटीज होती हैं, वो राइट सेट करनी है. पहले मैं ठीक तो परिवार ठीक, परिवार ठीक है फिर अब मैं काम पे जाता हूँ. देन एवरीथिंग विल बी मोर यू नो फ्लोइंग एंड वेरी स्मूथ एंड आई विल एंजॉय एवरीथिंग आई एम डूइंग. नहीं तो मैं तीनों को एंजॉय नहीं कर रहा, तीनों जगह कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे.
1: और मजे की बात तो ये दिख रही है कि सेल्फ पे काम करने के लिए आपको उतने 14 घंटे नहीं चाहिए.
0: एक मिनट, एक घंटे के बाद एक मिनट. इट्स जस्ट दैट इट लुक्स टू सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल है, करके देखना पड़ेगा. वो सुनने में इतना इजी लगता है कि
1: समझे कर लिया.
0: हाँ, एंड मेजोरिटी बोलते हाँ हम तो जरूर कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन वो करना पड़ता है, विधि पूर्वक करना पड़ता है. कई कॉरपोरेट हाउसेस में जब उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऑफिस में जैसे स्पीकर्स लगे हुए हैं एंड लिटिल लाइट म्यूजिक, नो मेडिटेशन म्यूजिक हर घंटे के बाद बजता है एक मिनट के लिए. रिमार्केबल रिजल्ट, पूरा एनवायरमेंट ऑफिस का ठीक हो जाता है. एंड क्योंकि लोगों को एक रेस्ट मिलता है, यू नो इवन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको वो एक मिनट में क्या क्रिएट करना है, पॉज, उनको वो भी नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ वो म्यूजिक बजता है एंड दे जस्ट स्टॉप एंड रेस्ट. वो रेस्ट भी बहुत काम करता है.
1: आई नो, जिस भी चीज में है आप. इनफैक्ट अगर हम देखें
0: क्योंकि वो वन मिनट वो डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है
1: कि सब चीजों से एक मिनट का.
0: जैसे स्कूल में बच्चे हैं, आपका एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर होता है, टेक दैट वन मिनट. नहीं तो वो एक मिनट जो एक टीचर क्लास से बाहर जाएगी और दूसरी टीचर आएगी, अगर वो एक मिनट आप स्टेबल हो जाएंगे, आप पिछले सेशन को भी ठीक से अब्सॉर्ब कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी होंगे. नहीं तो एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो एक एक टीचर आकर समवेयर हियर इट हैज नॉट गॉट अब्सॉर्ब प्रॉपरली, और फिर घर जाके बहुत स्टडी करना पड़ता है फिर से. सो दैट वन मिनट जो बीच में मिलता है, इट्स वेरी वैल्यूएबल.

0: चेकअप करके देख सकते हैं।
1: तो सिस्टर शिवानी, आज जो हमारे सामने बात आई कि एक मिनट का रेलिवेंस को हमने सोचा, और अभी तक हम ये कहते थे कि एक मिनट क्या है, आपको हम दूसरों के साथ कितना वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वो एक मिनट जो मुझे एम्पावर करेगा, और उसमें भी बहुत जो सही बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या सोचना है, इट्स ओनली कि हमें वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके अपने आप को एम्पावर करना है, और वो ट्राई करके देखें। बार बार हमारी कोशिश रहती है, हम कहें कि अनुभव से बड़ा जो है वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, मतलब जब तक हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे उससे गुजरते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। तो चलिए, एक बार फिर बॉल हमारे कोर्ट में है, हमें तय करना है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे लेकर जाना चाहते हैं। एंड लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने तो अब तय कर लिया है कि मैं इस एपिसोड को खत्म करते ही जरूर अलार्म लगाऊंगी, एक घंटे बाद, सिर्फ एक मिनट। एक मिनट, आप किसी भी जगह पे हो, आप अपने घर पे हो, हाउसवाइफ हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, और इनफैक्ट जहां हमें परिवर्तन आने लगेगा, आसपास का माहौल अपने आप परिवर्तित होगा, और उसमें भी हमें ये याद रखना है कि हमने थॉट क्या क्रिएट करना है। लेट्स ट्राई इट आउट, और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज आपसे हम यही विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि आप हमसे फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अब एक निगर ड्रामा कुमारी समय आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट पर बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं, और आज हमने एक मिनट के रेलिवेंस को समझा है। प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, सेल्फ सबसे पहले, फैमिली उसके बाद, और उसके बाद वर्क, तो डेफिनेटली काम तो हमारा होगा ही। तो आज आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया ही इतना, मैं कैसे क्षमा करूँ? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी

0: कि मेरे कंट्रोल में होती तो, और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट। अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आला आला आला
3: अहो काय आला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। आपको बता दें, एक बार फिर याद दिला दें कि लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन के जो शायद हम उन टेक्निक्स को नहीं सीख पाए और इसीलिए आज हम दुख, दर्द, भय, इन सारे सर्कमस्टांसेस में इन सारे अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो भी हम लोगों के बारे में सोचते हैं वो उन तक हमारे बोलने से पहले ही पहुंच रहा होता है। एक और बात जो हमने जानी थी कि जब भी हम किसी की कमजोरी देखते हैं धीरे धीरे वो कमजोरी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, उसकी टेक्निक को समझा था। इसीलिए अगर हम पॉजिटिविटीज देखें, हर एक की विशेषता देखें तो वो मुझ में आनी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह के विचार होते हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और फिर उनका हम पर क्या असर होता है। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक बात तो हम फटाफट रिवाइंड जो हमने अभी शुरू में भी कही है कि किसी की विशेषता देखते हैं या नेगेटिविटी देखते हैं वो धीरे धीरे हम पर आ रही है। अब हमने ये भी आपकी बात मान ली कि हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं और फिर फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है। अब कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो ज्यादा हावी होते हैं, कितनी तरह के हम, क्योंकि आई थिंक थॉट्स तो
1: मतलब थॉट्स हावी होते हैं। अगेन हावी मेरे पे कौन सी चीज होगी जो ऐसे से चेंज ट्राई एंड बी अवेयर हावी नहीं होते हैं। कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम ज्यादा क्रिएट करते हैं,
0: ज्यादा उनका जो फीलिंग्स है,
1: हाँ,
0: जो ज्यादा स्ट्रांग
1: जो हम क्रिएट करते हैं।
0: तो कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मैं ज्यादा क्रिएट करता हूँ और फिर उनका मुझ पर क्या असर होता है।
2: आपने जो पहले पूछा कि भी कितने प्रकार के थॉट्स होते हैं, इस पर मैंने थोड़ा चिंतन किया है और इसलिए गहराई से सोचा कि जब ज्यादा प्रकार के थॉट्स के बारे में हमें पता चलेगा तो हम जागृत होंगे, कॉन्शियस होंगे। कई लोग ये भी कहते हैं चार प्रकार के थॉट्स होते हैं, मैंने थोड़ा गहराई से सोचा और कुल प्रकार से क्लासिफाई किया कि सात प्रकार के विचार है।
0: सेवन
2: टाइप्स ऑफ थॉट्स। एक तो है टॉक्सिक थॉट्स,
0: टॉक्सिक,
2: हाँ, जो कहेंगे जहरीले विचार,
0: हाँ,
2: जैसे ना टॉक्सिन्स जो क्रिएट करते हैं,
0: तो बॉडी में इतने टॉक्सिन्स की बात होती है,
2: वैसे थॉट्स भी टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं।
0: ओके,
2: जैसे क्रोध के विचार, फिर भय के विचार, बदला लेने के विचार, ये जो सब है, जेलसी,
0: मतलब जो ज्यादा एनर्जी से भी भरे होते हैं, मतलब इफ यू रियली लुक एट
2: एनर्जी
0: उनमें, हाँ, वो काफी मात्रा जो है कंटेंट ज्यादा होता है,
2: इमोशंस है और वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं ना वो भी टॉक्सिक केमिकल्स
0: है,
2: एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और भी ऐसे कोर्टिसोल रिलीज करते हैं, तो सब सच में टॉक्सिक केमिकल्स है। दूसरे है नेगेटिव थॉट्स, वो उससे भले कम उसकी मात्रा है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव थॉट्स है कि असफलता के विचार, बीमारी के विचार, या जो सब है किसके अवगुण देखना, यह सब नेगेटिव विचार है। तीसरे है वेस्ट थॉट्स, वो भले नेगेटिव भी नहीं है लेकिन फिर भी वो वेस्ट है,
0: अननेसेसरी है,
2: हाँ, कि उस समय जरूरी नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय उनको विचार आ रहा है कि खेलने जाना है, भी खेलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पढ़ते समय वो वेस्ट थॉट है, ऐसे उसको कहेंगे वेस्ट थॉट। चौथे हैं नेसेसरी थॉट्स, कि कहीं काम के विचार भी करने पड़ते हैं, आपको भोजन बनाना है तो कार्य करना है, उसके जो विचार है वह काम के विचार है। पांचवे कहेंगे राइट थॉट्स, कहीं पॉजिटिव थिंकिंग को मुश्किल समझते हैं परंतु कम से कम राइट थॉट्स तो होने ही चाहिए, कि जो परिस्थिति जैसी है वैसी देखो,
0: अच्छा उसको बड़ा चढ़ा के
2: नहीं देखो, हाँ,
0: मतलब जो सही सिचुएशन है, स्थिति का आंकलन हो गया,
2: हाँ, वो जैसी है वैसी देखो, है ना। वास्तव में हम अलग अलग मिरर यूज करते, परिस्थिति को हम विकृत रूप दे देते उन मिरर्स के द्वारा। छठे है पॉजिटिव थॉट्स, कि भाई वो सकारात्मक सोच। और सातवा है एलिवेटेड थॉट्स,
0: ओके,
2: वो पॉजिटिव से भी हायर है क्योंकि उसके अंदर एक सचमुच पॉजिटिव एनर्जी है, ज्ञान के विचार, आध्यात्मिकता के विचार, वह है एलिवेटेड थॉट्स। तो ये सात प्रकार के विचारों को अगर अच्छे से हम समझे और फिर ये डिसाइड करें कि मेरे कौन से विचार चल रहे हैं, तो हम विचारों पर कंट्रोल प्राप्त कर सकेंगे।
0: पहले अवेयरनेस और उसके बाद इट्स क्वाइट अ स्टडी, काफी पढ़ना है, लेकिन हमने कहा है कि हम शायद लाइफ स्किल्स को नहीं जानते, तो पहला ये है, आपने कहा कि टॉक्सिक से लेकर एलिवेटेड
2: थॉट्स तक
0: ये पूरी जर्नी है, तो मेरे को यही पूछना है, सिचुएशन डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी तक हमारे विचारों का जो सृजन, चाहे मैं ही कर रही थी, वो सिचुएशन डिपेंडेंट था?
1: नहीं, अभी तक भी हम ही क्रिएट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि वो सिचुएशन डिपेंडेंट है. सी, अभी इवन टिल डेट इट वॉज जस्ट दैट आई वॉज डूइंग इट अनअवेयर, नाउ आई एम गोइंग टू बी अवेयर कि आई एम क्रिएटिंग द थॉट्स. क्रिएट तो पहले भी हम ही कर रहे थे, लेकिन पहले हम रिस्पॉन्सिबल परिस्थिति को ठहरा रहे थे, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेंगे कि आई हैव अ चॉइस कि मुझे कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं.
0: डॉक्टर पटेल, ये सात तरह के जो थॉट्स, हमने कहा कि हर थॉट की पावर होती है. पिछली बार भी मुझे याद है हमने बात की थी कि फैमिली ऑफ थॉट्स, यू नो, एक तरह के थॉट्स, दूसरी तरफ एक तरह के थॉट्स. अब ये सातों तरह के थॉट्स उतने ही पावरफुल है?
2: नहीं, इसे देखेंगे तो टॉक्सिक थॉट सबसे पावरफुल है, नेगेटिव एस्पेक्ट में देखिए, और एलिवेटेड थॉट सबसे पावरफुल है पॉजिटिव इफेक्ट में.
0: एलिवेटेड मतलब हर थॉट का एक एक एग्जाम्पल हम
2: देते हैं,
0: तो हम शुरू करते हैं टॉक्सिक थॉट्स.
2: बड़ा सिंपल है कि भाई क्रोध के विचार है ना, भय के विचार, कोई व्यक्ति डर जाए, यहाँ तक कि अगर किसी को चूहे का डर लगता है, देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी चूहा देखा तो जंप लगाएगा और सारे बॉडी के अंदर वो केमिकल्स रिलीज होते
0: हैं, डर लग जाता है.
2: ब्रेन
0: अच्छा, जो आपके फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट डालेंगे
2: वो नेगेटिव इम्पैक्ट, और सचमुच पॉइजन्स है, जैसे कॉर्टिसोल एक पॉइजन है सचमुच, जो ब्रेन को भी डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, और ये टॉक्सिक थॉट से वो कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है.
0: डॉक्टर साहब, अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं क्रिएट कर रही हूँ ये थॉट कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो एंग्जाइटी एंगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो स्ट्रेट अवे टॉक्सिक बनता है या कुछ कुछ उनसे गुजरता हुआ जाता है?
2: एक तो ये ठीक है कि वो स्लोली बनेगा, कि धीरे धीरे आपको भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अंदर में थोड़ा इरिटेशन आया, पहले तो अच्छा नहीं लगा, अपने फोर्स किया कि पढ़ ठीक से, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है तो और उसकी मात्रा बढ़ी, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन भी बढ़ सकता है. एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक माँ बच्चे को पढ़ा रही थी और बाजू में सब्जी काट रही थी और बच्चा नहीं पढ़ रहा था, वो मिस्टेक एक ही जगह पर अटक के मिस्टेक कर रहा था, तो माँ ने कहा पढ़ ठीक से, फिर से नहीं कहा, फिर से गुस्सा की ठीक से पढ़ नहीं पढ़ रहा है, फिर से वही मिस्टेक की, तो उसे चाकू उसको पेट में डाला. रियल एग्जाम्पल, दिस इज एन टॉक्सिक आउटवर्ड इफेक्ट, पर सदैव नहीं होता है, परंतु अंदर में केमिकल्स तो रिलीज होते ही है टॉक्सिक थॉट्स के कारण.
0: पर ये एक्शन इट्स सच अ हार्मफुल, हर थॉट

0: बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, हर थॉट हमारा बिहेवियर वाइज एनर्जी एक्शन में आ रही है। अब किसी चीज में जैसे इस पर्टिकुलर केस में वो इतनी पावरफुल थॉट यू नो गुस्से की क्रिएट हुई, क्यों कई बार आप हाथ नहीं उठा दोगे बच्चे पर, हाथ उठा सकते हो ना, चलो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कि इसको चाकू ही मार दिया, पर वो तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हाथ में उस टाइम चाकू था, लेकिन थप्पड़ तो हम मार देते हैं ऐसे, वो कहना नहीं मान रहा, भाई तुमको एक बार समझाया, दो बार, तीन बार, चार बार, हाथ उठ जाता है, बस इस बार बाई चांस हाथ में चाकू था, बट इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ कि माई थॉट्स वर सो पावरफुल, नेगेटिव एनर्जी इतनी क्रिएट हो गई कि मेरा अपने हाथ पर, मेरा अपने वर्ड्स पर, मेरा अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि लॉजिक वर्क करना बंद कर देगी ना, वो नेगेटिव एनर्जी इतनी मैंने क्रिएट कर दी।
1: वेनम था एक्चुअली, इतना आपने कहा कि
2: पॉइजन है,
1: पॉइजन है और वो पॉइजन ही फिर निकलना चाहिए।
0: एंड वो कई बार ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना हुआ हो, इट हैज बीन हैपनिंग यू नो बहुत पेंट अप, वो ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की वजह से ना हो,
1: किसी और का गुस्सा,
0: किसी और बात से आप बहुत परेशान है, हो सकता है कोई और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत परेशान है, एंड योर कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑन इट, ये सिर्फ एक स्टिम्यूलस बन रहा है आपके गुस्से को बाहर निकालने के लिए, बट आप वैसे ही बहुत परेशान हैं और ये फिर आपको आपको लगता है ये आपको और इरिटेट कर रहा है, यू नो व्हाट वी थिंक कि वो मुझे इरिटेट कर रहा है, एंड तब आपका हाथ उठ गया, अब आपके हाथ में चाकू था। दीज आर सिचुएशन जब हम देखते हैं कि चाकू लग गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, डेफिनेटली, लेकिन अंदर भी बहुत सारी गलतियां हो रही है, नॉट नेसेसरी दे आर ऑल कमिंग आउट लाइक दिस, बाहर आ गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो गया, लेकिन अंदर भी बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट हो रहा है, दैट वी हैव टू सी कि हर सिचुएशन में कौन सी मेरी थॉट्स क्रिएट हो रही हैं, एंड इसीलिए जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, इश्यूज को रिजोल्व करते जाएं, कब कौन सा इशू आपके नेक्स्ट इशू पर
1: हावी हो जाए,
0: दैट इज वेयर बहुत बार आप देखो अगर ऑफिस में मेरा आज दिन अच्छा नहीं बीता, मैं घर पर आकर बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए डांटूंगी, अगर आज दिन बहुत अच्छा था ऑफिस में, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी पीसफुल, घर पे बच्चा कोई बड़ी भी गलती कर देगा, आई विल से इट्स ओके ना, बच्चे ही हैं, करते हैं, इट लॉट डिपेंड्स ऑन माई प्रीवियस इशूज एंड माई प्रीवियस थॉट्स दैट आई वॉज कैरिंग विद मी, इट जस्ट कम्स आउट इन दिस। सपोज बॉस मेरे को डांटता रहता है, कोलीग्स मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं कह पा रही, तो वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा भरता गया, फाइनली किस पे निकलेगा? उन पर निकलेगा जिनके ऊपर मेरे पास पावर है, क्योंकि उस इशू को वहां नहीं रिजोल्व किया, उसका इफेक्ट फिर यहां आया। बहुत सारी मदर्स आज कहती है हस्बैंड इतना चिल्लाता है, मदर इन लॉ इतना चिल्लाती है, फाइनली वो किस पर निकलता है? छोटे छोटे बच्चों पर, वर्बल अब्यूज नहीं, फिजिकल अब्यूज, वो हाथ उठा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों पर, क्यों? मदर इन लॉ को कुछ नहीं कह पाए, हस्बैंड को कुछ नहीं कह पाए, उस पर निकाल दिया, दिस इज वेयर दैट चेन ऑफ थॉट्स आपके फिर एक्शंस में आने लग जाती है। तो टॉक्सिक थॉट्स तो बहुत डैमेजिंग है, इट कुड बी जैसे फियर बता, एंग्जाइटी, रिजेंटमेंट, इट कुड ऑल्सो बी रिजेक्शन, यू नो कई बार मुझे आपसे रिजेंटमेंट नहीं लेकिन मैं रिजेक्टेड फील कर रही हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये भी मेरे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, इट विल नेवर लेट मी कम फॉरवर्ड, एंड मैं अंदर ही अंदर आजकल रिलेशनशिप्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, और फिर अगर एक जना डिसाइड करता है कि नहीं दिस रिलेशनशिप डजंट वर्क फॉर मी, वी हैव सीन चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स हु से आई डोंट वांट टू लिव, तो किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे होंगे वो, जो वो इस बात पर पहुंचते हैं, मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं उसका एक फोन सुनने के लिए बस कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, कौन सी थॉट्स क्रिएट हो रहे होंगे सारा दिन, एंड फिर कई बार वो सुसाइड के लेवल पर भी ये बातें जाती हैं। तो बहुत एस्पेक्ट्स में हम ये चेक कर सकते हैं कि टॉक्सिक मतलब जो मेरा बहुत नुकसान कर रहे हैं, और जो मेंटल टॉक्सिन्स हैं फिर वो फिजिकल में भी, जैसे गिरीश भाई ने बताया कि वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा।
2: और एक अगर एग्जाम्पल लेना तो हेट्रेट का है,
1: हेट्रेट
2: से वहां तो एक को लग गया, लेकिन हेट्रेट से तो आप हजारों को मार रहे हैं,
0: सबसे पहले अपने आप को,
2: अपने आप को।
1: यहाँ एक अगर हमने टेक्निक ही सीखनी है तो जैसे हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक बाद में ही आता होगा, इट मस्ट बी, तो पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से वो शुरू होती है सीरीज, अगर हम इस चेन देखते हैं 7 तरह के थॉट्स में, कौन सी वो पहली चेन है जो मुझे टॉक्सिक तक लेकर जाएगी, चेन की पहली कड़ी कौन सी होती है?
2: पहली कड़ी तो आएगी वही की नेगेटिव एस्पेक्ट,
1: नेगेटिव थॉट, बेस थॉट या नेगेटिव थॉट,
2: पहले नेगेटिव
1: नेगेटिव
2: थॉट, वेस्ट तो हो सकता है कि उसमें नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं।

0: लेकिन शुरुआत होगी नेगेटिव थॉट से, फिर उसका लेवल बढ़ता जाएगा और टॉक्सिक तक पहुंच जाएगा।
1: कई बार ये भी हो सकता है कि आप किसी और परिस्थितियों में नेगेटिव सोच रहे हैं, वो परिस्थितियां एवरेज लेवल की हैं, जो हम कह रहे हैं ना परिस्थिति स्टिम्युलस है, तो वो परिस्थितियां ऑर्डिनरी हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्स उसमें नेगेटिव है एंड एनर्जी तो मेरी डिप्लीट हो रही है, और फिर सडनली मैं थोड़ी सी बड़ी परिस्थिति में आ जाऊंगी। लेट्स से ऑफिस में काम करते करते मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दैट विल बी नेगेटिव थॉट्स। और फिर घर गई, सडनली मुझे एक बिगर सिचुएशन मिली, तो मैं इमीडिएटली जो थॉट क्रिएट करती हूँ, इट्स समटाइम्स टॉक्सिक, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिव क्रिएट करते करते मन की कितनी सारी ताकत खत्म हो जाती है, एंड देन अ लिटिल बिगर सिचुएशन एंड आई विल रिएक्ट इन अ बिगर वे। तो वो रिजेंटमेंट, हेट्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे, एंड देन नॉट नेसेसरी कि आपके प्रति है तो आपके साथ ही वो हमेशा होगी, आपके साथ मैंने नेगेटिव क्रिएट करते करते करते अपने आप को इतना डिप्लीट कर दिया कि फिर इन्होंने अगर मेरे साथ थोड़ा सा कुछ बड़ा कर दिया, आई कैन जस्ट क्रिएट दोज टॉक्सिक थॉट्स। सो इट इज अ कंटिन्यूस चेकिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट इन एवरी सिचुएशन विद एवरी पर्सन इन एवरी इंटरेक्शन। दैट्स वाई वी सेट कॉन्स्टेंट अवेयरनेस हमें रखनी होगी, क्योंकि बीमारी धीरे धीरे धीरे कब सडनली ज्यादा हो गई पता नहीं चलेगा।
0: और एक बात जब ने पूछा तो मुझे याद आया कि बहुत सारे केसेस में जिनमें इस प्रकार के बहुत टॉक्सिक थॉट्स है, इसका रूट तो जो है वो चाइल्डहुड में होता है, कहीं ना कहीं अब्यूज हुआ और कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आया तो एक ब्लॉक सा क्रिएट हो जाता है और वो ब्लॉक फिर सदा के लिए डिस्टर्ब करता है, जिसको थॉट डिसऑर्डर भी कहेंगे। इवन सिज़ोफ्रेनिया के जो केसेस है, कईयों में मैंने देखा है कि पता भी नहीं चलता है, घर में तो यह समझते हैं कि इसको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति चीड़ रहा है, परंतु वास्तव में उसमें वो सिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, थॉट डिसऑर्डर है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसे टॉक्सिक इमोशंस क्रिएट कर रहा है। वो रिजॉल्व करे तो टोटली डिसऑर्डर हो जाएगा।
1: कईयों के साथ कोई एक बार ऐसे कुछ हो जाए जैसे अब हमें लोग ही नहीं अच्छे लगते, तो फिर क्या हुआ, देखो कितना डैमेज हो गया, अब हमारा लोगों पर ही विश्वास नहीं रहा, तो वो हर रिश्ते में कैसे जाएंगे, हर इंटरेक्शन में कैसे होंगे, एवरी इंटरेक्शन विल बी देन नेगेटिव एंड द साइकिल बिकम्स मोर एंड मोर विशियस।
0: ये तो वन रिलेशनशिप, नो इवन वन रिलेशनशिप, जैसे किसी में मदर से, जैसे डॉटर का मदर से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर और भी, ऑल नो लेडीज आर बैड फॉर हर, या जेंट्स से हुआ तो ऑल जेंट्स आर बैड, ऐसी स्थिति बन सकती है।
2: अच्छा, ये तो बात रही कि टॉक्सिक जो कि काफी दिख जाते हैं, यूजुअली हम देखें तो जो बात समझ में आ रही है कि टॉक्सिक में हमें एहसास भी हो रहा है, हमारे फिजिकल भी वो क्रिएट हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, उसके अगर हम नीचे थोड़ा सा नीचे उतरे तो टॉक्सिक के बाद आपने नेगेटिव बोला ना, तो नेगेटिव में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव में बहुत बार लोग बोलते हैं मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, दूसरे के बारे में बुरा सोचना ही क्या नेगेटिव है?
0: वो तो एक पहलू है कि दूसरे के बारे में बुरा सोचना एक नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव ये है कि भी कुछ हुआ आपको, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, भी ठंडी में गए, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, सर्दी तो नहीं हो जाएगी, तो ये भी नेगेटिव है।
2: मतलब ये एंग्जाइटी थोड़ी सी,
0: एंग्जाइटी भी कह सकते हैं, और आपको विचार आया भी एग्जाम में गए कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव थॉट है, डाउट के एलिमेंट है भले।
2: पर ये तो मतलब अब ये तो हमें रोज रहता है,
0: ये तो यही करना है, तो हम तो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं कि यू आर चूजिंग योर थॉट।
2: बट डॉक्टर पटेल, दीज आर द थॉट्स विच वी नेवर थॉट, दे आर लाइक they are normal thoughts, you know?
0: These are the skills.
2: कि जो मतलब अगर मैं एग्जाम देने जा रही हूँ तो मैं पास भी हो सकती हूँ, फेल भी हो सकती हूँ, मतलब एग्जाम मुश्किल भी आ सकता है, पेपर मुश्किल आ गया तो फेल नहीं तो कम मार्क्स आ सकते हैं। See, these are the doubts which actually are so normal.
1: अब इसीलिए तो ज्यादातर अगर हम देखें तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं आजकल सारे दिन।
2: मतलब ये तो ये एक डाउट भी अगर नेगेटिव थॉट में आता है तो फिर तो हमारे पास नेगेटिव थॉट्स,
0: इसीलिए नेगेटिव बहुत सारे हैं और हमें सोचना चाहिए कि भी एक भी नेगेटिव ना आए, क्योंकि हम थॉट्स को चूज करते हैं, जब हम चूज कर रहे हैं
2: कैसे नहीं आएगा, दिस इज समथिंग विच वी हैव लिव्ड विद इट ऑल आवर लाइफ।
0: नो, इट इज वन थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि भी हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं, तो मुझे सही को चूज करना है, हाथ को ऊपर नीचे करना मेरे कंट्रोल में, तो इससे थॉट्स भी मेरे कंट्रोल में, चलो एक बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत उसे मैं ट्रांसफॉर्म करूं और पांच बार पॉजिटिव करूं,

0: तो एक जो नेगेटिव हुआ उसकी इफेक्ट कम हो जाए।
1: अच्छा, तो नेगेटिव में एक रहा डाउट, और क्या क्या नेगेटिव में शामिल? आई थिंक समवेयर हम अवेयर नहीं है।
0: दिस थिंग्स आर उसके पीछे का जो रीजन कहे। अगर नेगेटिव को हमें सोचना हो तो फेलियर के विचार, बीमारी के विचार, ये सब नेगेटिव है, लॉस के विचार,
2: इवन इरिटेट होना थोड़ा थोड़ा,
0: हाँ,
2: you know, इरिटेट होना, नहीं इरिटेट होना, अगेन ट्रैफिक में खड़े हैं, इरिटेट हो रहे हैं, कोई गलत तरह से चला रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, कोई मेरी तरह काम नहीं कर रहा, इरिटेट हो रहे हैं,
0: डिसलाइक हो रहा है,
2: कोई मेरा कहना नहीं मानता, इरिटेट हो रहे हैं, ये भी तो नेगेटिव थॉट्स है।
1: ये मतलब क्यों क्रिएट करते हैं फिर? बिकॉज दीज आर द थॉट्स, आई थिंक हमें पता भी नहीं है, हम अवेयर ही नहीं है कि ये थॉट्स जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इरिटेशन तो रहती ही है।
2: इतना हमने कहा इरिटेशन रहती है, आपने कहा डाउट रहता है, एंग्जायटी रहती है, तभी तो स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस, एंगर हो गया ना, तभी हम कह रहे हैं हैप्पीनेस चाहिए। क्यों? क्योंकि कई चीजों को हम नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल
1: तो कहते रहे, सबको इग्नोर करते जाएं। मतलब अगर कोई कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, तो हम इरिटेट ना हो, हम अपना डिसएग्रीमेंट ना शो करें, हम मतलब फिर देन वही आ जाती है बात की स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू नो एक्सेप्टिंग एवरीथिंग।
0: फर्स्ट तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये स्किल है, टू एक्सेप्ट नहीं, पॉजिटिव सोचना भी ये स्किल है, और ये स्किल मुझे डेवलप करनी है। जैसे नहीं मसल्स को हम डेवलप करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, आप मसल्स को डेवलप करते हैं, तो ऐसे ये स्किल को भी मुझे डेवलप करना है। और पहले भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि एक नेगेटिव थॉट की कितनी इफेक्ट होती है, वो वातावरण में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, व्यक्ति भी वैसा ही बन जाएगा, वी विल अट्रैक्ट दैट सिचुएशन। तो इसलिए इस स्किल को हमें डेवलप करना है,
1: कोई भी
0: प्रैक्टिस करे तो मुश्किल नहीं है।
2: एक बात देखते हैं, आपने कहा ये नेचुरल है, सपोज कोई मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो डिस्टर्ब होने से फायदा क्या होता है?
1: ठीक, डिस्टर्ब जब हम होना शुरू होते हैं थोड़ी देर बाद उसको भी समझ में आने लगती है और वो कुछ कुछ तो करता है।
2: बिना डिस्टर्ब हुए भी बता सकते हैं
1: तब उसका इफेक्ट इतना नहीं होता। अब जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चे के साथ, बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो बच्चे को दिखा कि मेरे को गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं, बच्चा फटाफट बात मानना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी तो बात मानी ना उसने,
2: बच्चा बात बच्चा बात तो मानता है, लेकिन आपने उसको नेगेटिव एनर्जी भी दी उस प्रोसेस में। सो वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म पीपल विद नेगेटिव एनर्जी, और फिर ये हम कभी कभी नहीं करते, वी आर यूजिंग दिस टेक्निक क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, पेशेंस तो मेरी वैसे ही कम हुई है, तो अब मुझे पता है कि आपसे जब मैं प्यार से काम कुछ भी बोलूं तो आप नहीं करते, लेकिन मैंने ये देख लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मेरा क्या हो गया कि थोड़ा सा ऐसे करके बात करूं ये तो जल्दी काम करते हैं। टाइम नहीं है, काम जल्दी कराना, तो मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया, शोर मचाओ हो गया, शोर मचाओ हो गया, फिर सिर्फ बच्चों के साथ नहीं किया, ऑफिस में भी करना शुरू कर दिया, फिर सिर्फ ऑफिस में भी नहीं किया, सड़क पे स्ट्रेंजर्स के साथ करना शुरू कर दिया कि जब कोई मेरे अनुसार नहीं करता, शोर मचाओ, काम मेरे अनुसार होगा, काम होता गया, इवन लेट्स से काम होता गया, मेरी हालत क्या होती जा रही है। दिस आई नाउ नीड टू स्टॉप एंड चेक कि मेरी हालत क्या होती जा रही है, और अगर अपने बारे में नहीं सोचना चाहते तो कम से कम इतना सोचो उन बच्चों की हालत क्या होती जा रही है। सिर्फ मदर वो टेक्निक नहीं यूज कर रही, फादर भी वही टेक्निक यूज कर रहा है, सिर्फ पेरेंट्स नहीं यूज कर रहे, टीचर भी वही टेक्निक यूज कर रही है, प्रिंसिपल भी वही टेक्निक यूज कर रही है, क्योंकि एवरीवन इज इन द सेम बोट, एवरीवन इज यूजिंग द सेम टेक्निक। कैन वी जस्ट लुक एट अ लिटिल चाइल्ड जो अभी ग्रो हो रहा है, जिसकी सेल्फ एस्टीम अभी डेवलप होनी है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी डेवलप होना है, जो इमोशनली अभी डेवलप हो रहा है, यू नो जैसे फिजिकली डेवलप हो रहा है, और इस एक छोटे से बच्चे को जो डेवलप हो रहा है, ये चार पांच लोग जो उसके पूरे जीवन का फोकस है अभी वर्तमान समय,
1: इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं
2: हम, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं, हम उसको इमोशनली डिप्लीट कर रहे हैं। हम सी ना, एक छोटे बच्चे को बीच में रखो, सर्कल में आप पांच लोगों को खड़ा करो, मदर, फादर, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी, या कोई बड़ा सिबलिंग, सारे उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, काम करवाना, होमवर्क करवाना, खाना खाना, पढ़ना, जो भी है, व्हाट इज द एनर्जी कमिंग, कैन यू सी व्हाट विल हैपन टू दिस चाइल्ड, एंड देन वी आर सेइंग आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में इनको गुस्सा आने लग जाता है, इनकी टॉलरेंस पावर कम होती गई है। स्टॉप, क्यों हो गई ऐसी? व्हाई? क्योंकि इनको सबसे कौन सी एनर्जी मिली, वो पर्सनैलिटी कैसे बड़ी हो रही है। अब जब वो पर्सनालिटी
1: वरिड ही रहेगा,
2: वरिड नहीं, वेरी वेरी लो सेल्फ एस्टीम और उसकी अपनी टॉलरेंस पावर, क्योंकि उसको पांचों लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही थी, पांचों के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं थी, पांचों में पेशेंस नहीं।

0: then we'll take care of each other. It's very important.
1: Ravi, na subtle baat hai bahut. Agar superficial bhi dekho, na she's 100% right. Deep baat ko aap samajh lo. अगर कोई इतनी डीप बात ना भी समझे तो भी ये समझना चाहिए कि फियर वो टेम्पररी मोटिवेटिंग फैक्टर है. डर से बच्चा सदैव नहीं पड़ेगा, जब तक आप उसके सर पे खड़े हैं शायद पड़ेगा, और जैसे ही आप और कुछ करने लगेंगे बच्चा छोड़ देगा उसको. धीरे धीरे तो उल्टा वो सीख जाते हैं, फिर तो डर की भी इफेक्ट नहीं होगी. समझो नहीं, गुस्से से आप समझते बच्चे शांत रहेंगे, नहीं, उल्टा वो समझेंगे कि भी गुस्सा दिला उनको आनंद आएगा अंदर. दे विल लर्न दिस. नहीं, एक बार दो 11-12 साल की लड़की आपस में डिस्कशन कर रही थी, एक ने दूसरी को कहा कि चल हम कुछ शरारत करते हैं ताकि माँ को गुस्सा आए. तो माँ को गुस्सा आएगा तो मुझे बहुत मजा आता है. माँ को गुस्सा आता है तो भले मुझे अपने कमरे में 2 घंटे बंद रहना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि माँ मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, मैं माँ को कंट्रोल कर रही हूँ. नो, लेट अस मेक सम मिस्टेक. वैसे अल्टीमेटली चिल्ड्रन लर्न दिस.
0: एंड जो गिरीश भाई ने कहा था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज चाइल्डहुड में है. जो चाइल्डहुड में हम ये एनर्जी एक बच्चे को देते हैं तो उसको जो सबकॉन्शियस में जो फीलिंग है वो है दे डोंट केयर फॉर मी, एंड वेरी सून ही इज गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू विल फील ही डजंट केयर फॉर मी, बट इट स्टार्टेड एट दैट टाइम
2: कि जो मैंने दिया वो.
1: Even if why I should care for them?
0: They actually, there are children who come and say, "Unhone mujhe kya diya?" And diya not in terms of physical, lekin inse mujhe kya mila? Mujhe bhi unki koi parwah nahi hai. You know, we tell them, "Aapke parents ro rahe hain. Aapke parents itne upset hain." It's very sad, but they get a sadistic pleasure out of it. Ke inhone mujhe bahut dukh diya tha. Aaj main karunga aise kaam jisse inko dukh mile.
2: Kitna main bhi kitna roya tha, kitna darta tha. Oh my God, I'm selected.
0: But it really happens. We're meeting a lot of children who say this, and it's very sad to see that, you know, the cycle is getting more and more vicious. More and more both are blaming each other. No one's ready to take the responsibility.
1: You know, many disturbed children are like this. And I think a school ka ek case mere paas hai. Wahan teachers ne kaha, teacher said ki bhi ye parents ka fault hai pura. पेरेंट्स ने उनको नेगेटिव बातें सिखाई है, नेगेटिव रूप से डेवलप किए, इसके कारण बच्चे ऐसे बने.
2: आई थिंक क्योंकि हमें नेगेटिविटी का ही पता नहीं है शायद. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच. कहीं ना कहीं वो सारी बातें निकल कर आ रही हैं जिन्हें अभी तक हमने ये माना था कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है. आज चेक करने की जरूरत है. हमने 7 तरह के जो थॉट देखे हैं कि इस तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, उसमें टॉक्सिक तो बहुत विजिबल है, लेकिन नेगेटिव को हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया था. लेट्स ट्राई टू रियलाइज, लेट्स ट्राई टू सी, लेट्स बिकम अवेयर कि पूरे दिन में ये जो नेगेटिव, हमने यही सोच लिया कि नेगेटिव मतलब दूसरे का बुरा सोचना, लेकिन उसके अलावा हम क्या क्या कर रहे हैं, कितने कितने ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो डर है, संशय है, भय है, दुख है, या हर्ट है, या रिजेक्शन है, ये सारे जो थॉट्स हैं, या इरिटेशन है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते जाना, अपनी बात मनवाने के लिए कितने कितने तरीके अपनाना, कितने कितने यू नो थॉट्स उन तक पहुंचाना, एनर्जी पहुंचाना, ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ भी, अपनों के साथ भी, फिर हमें रिश्तों में कहां से प्यार मिलेगा. लेकिन जहां हम सीखते जाएंगे, ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो आगे का रास्ता क्लियर कर देती है. कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर करें. आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में वो वाली स्किल्स हम सीख रहे हैं जो आज तक शायद नहीं सीखी थी, लेकिन आज सीखकर ना सिर्फ अपने जीवन को, अपनों के जीवन को, आने वाले जीवन को बेहतर बना पाएंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार था।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8. आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं. यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है. तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए.
4: मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन. आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है लेकिन इसका संबंध हमारे वास्तविक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है. विषय है वास्तविक जीवन में कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का महत्व. हम सभी कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग करते हैं. जब कभी हमारा सिस्टम धीमा हो जाता है, कोई प्रोग्राम अटक जाता है या स्क्रीन पर कुछ भी काम नहीं करता, तब हम एक खास कमांड का उपयोग करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट. यह कमांड हमें नियंत्रण देती है, विकल्प दिखाती है और अनावश्यक चीजों को हटाने में मदद करती है. ठीक इसी तरह यदि हम चाहें तो इस कमांड को अपने जीवन में भी समय समय पर उपयोग कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यानी नियंत्रण. जीवन में कई बार हम परिस्थितियां, लोगों या अपनी ही भावनाओं के हाथों मजबूर हो जाते हैं.

क्रोध भय ईर्ष्या चिंता ये सब हमारे जीवन को स्लो कर देते हैं। ऐसे में कंट्रोल हमें याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। अब आते हैं ऑल्ट पर। ऑल्ट यानी ऑल्टरनेट, विकल्प। जीवन में जब एक रास्ता बंद हो जाए, जब मेहनत के बावजूद सफलता ना मिले, तब निराश होने के बजाय हमें विकल्पों पर विचार करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग विकल्प होते हैं, वैसे ही जीवन में भी हर समस्या का एक से अधिक समाधान होता है। ऑल्ट हमें सिखाता है कि हार मानना समाधान नहीं है, बल्कि नया रास्ता ढूंढना ही बुद्धिमानी है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है डिलीट। डिलीट मतलब हटाना, मिटाना। हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातें ढोते रहते हैं जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक सोच, बीती हुई असफलताओं का बोझ, गलत आदतें और कभी कभी ऐसे रिश्ते भी जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से अनावश्यक फाइलें डिलीट करते हैं और उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन और जीवन से भी इन अवरोधों को हटाने का साहस करना चाहिए। कभी कभी जीवन में समस्याएं इतनी उलझ जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में हमें अपने दिमाग का टास्क मैनेजर खोलने की आवश्यकता होती है, यानी इस स्टेज पर आत्ममंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। यह देखना कि कौन सी बातें हमारी ऊर्जा खा रही हैं, मींस हमारी बैटरी लो कर रही हैं, और कौन सी हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। और अंत में स्वयं को सुरक्षित रखना। जैसे हम कंप्यूटर को लॉक करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वैसे ही हमें अपने निजी जीवन की सीमाएं तय करनी चाहिए। हर बात हर व्यक्ति से साझा करना जरूरी नहीं होता। आत्मसम्मान और गोपनीयता भी मानसिक शांति का हिस्सा है। प्रिय श्रोताओं, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट केवल एक तकनीकी कमांड नहीं है, बल्कि जीवन का मंत्र है। यह हमें सिखाता है नियंत्रण रखें, विकल्प खोजें, अनावश्यक चीजें हटाएं और आवश्यकता पड़ने पर नई शुरुआत करें। यदि हम इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, बल्कि हम मानसिक रूप से अधिक सशक्त और संतुलित भी बने रहेंगे। इसी विचार के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Bliss.
1: Thank you.
0: आज मैं बहुत bliss feel कर रहा
1: हूँ. सीट.
0: 4 बजे सुबह उठा और मैंने कुछ भी negative word use नहीं किया कि मैं ऐसी बुरी बात सोचता हूँ, मैं पुरानी बातें सोचता हूँ, भगवान मुझे मदद कर, मैं कितना बुरा हूँ, ये सब छोड़ दिया. मैंने कहा बस कि मैं आज पूरा दिन शांत रहूंगा, मैं शांत स्वरूप हूँ. मैंने ये कहा being bliss तो छोड़ दीजिए. आई सेड आई एम ब्लिस.
1: दैट इज ओनली being bliss.
0: अच्छा.
1: Being bliss, we can look at it in 2 ways. Being bliss, मतलब be bliss, you know, बनो, ऐसा being bliss. लेकिन actual जो उसका meaning है, being, हम आत्मा को कहते हैं. The spiritual being, जब कहते हैं ना human being, आज क्या हुआ, हम हैं human being. Human being means body, human. Human शब्द humus से आता है, it's a Greek word humus, मिट्टी. तो human and being. शरीर प्लस आत्मा, तो आत्मा को बींग कहते हैं. इसीलिए हम ह्यूमन बींग हैं. आज हम ह्यूमन बींग के बजाय ह्यूमन डूइंग बन चुके हैं. डूइंग दिस, डूइंग दिस, डूइंग दिस. बींग क्या होना है, हाउ इज द बींग गोइंग टू बी, दैट वी डोंट नो. तो बींग ब्लिस मीन्स आत्मा ब्लिसफुल है. द बींग इज ब्लिस, दैट इज इट्स नेचर. आत्मा पीसफुल है, आत्मा ब्लिसफुल है, आत्मा प्योर है, दैट इज दिस बीइंग. तो अगर हम रोज सिर्फ ये एक थॉट भी सुबह क्रिएट करें, बीइंग ब्लिस, बीइंग पीस.
0: तो मैं हुई हूँ अगर.
1: मैं हुई हूँ.
0: तो फिर मैं ऐसा हूँ क्यों नहीं?
1: क्या मैं एक्चुअली दिखता क्यों नहीं? वहाँ बात पर्सनालिटी में क्यों नहीं निकल रहा?
0: मैं अगर हूँ जो आप कह रही हैं कि मैं ब्लिस हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरी क्वालिटीज हैं, तो फिर मैं दूसरा क्यों हूँ?
1: देखिए, जैसे आपने ये जो व्हाइट कुर्ता पहना है, ये है ही व्हाइट ना, ये है ही व्हाइट. लेकिन सुबह जब तैयार होंगे तो ये है ही व्हाइट. लेकिन अगर रात तक मिट्टी में

0: केला, कोयले की खान में गए, कहीं कचरे के कूड़े के पास चले गए, फिर खाना खाते हुए ध्यान नहीं रखा अपने ऊपर, तो ये शाम को इतना व्हाइट नहीं दिखेगा। तब अगर आप कहें ये है ही व्हाइट, तो ये व्हाइट क्यों नहीं दिख रहा है? इसके ऊपर रेड, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये सब कहां से आ गया है? जर्नी, इट वॉज ऑन अ जर्नी फॉर द होल डे। लेकिन ये है ही व्हाइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एम क्लियर होना चाहिए कि इसका कलर व्हाइट है। अब भले इस पे कितने भी दाग लगे हो, जब मुझे ये क्लियर होता है कि ओरिजिनल कलर व्हाइट है, क्योंकि मैंने मालूम है ये व्हाइट है, अब दाग दाग दाग है, तो मैं जब दाग को हटा भी रहा हूं, मेरे अंदर लक्ष्य बहुत क्लियर है कि ओरिजिनल कलर क्या है। अगर मुझे ओरिजिनल कलर नहीं पता होगा, सी व्हाट विल हैपन, अगर हमें ये कुर्ता दिखे जिसपे बहुत दाग है लेकिन हमें इसका ओरिजिनल कलर नहीं पता हो, तो हमें साफ करते समय भी ये नहीं पता होगा कि हमें किसके तरफ जाना है, कौन सा कलर चाहिए हमें इसके नीचे। मुझे क्या मालूम इस ड्रेस का ओरिजिनल कलर येलो था, ग्रीन था, ऑफ व्हाइट था, लाइट ब्राउन था। कैसे पता चलेगा कि मेरा ओरिजिनल कलर क्या है? जो चीजें मैं आज ढूंढ रही हूँ, मांग रही हूँ, मुझे चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग दैट, दोज आर माई ओरिजिनल कलर।
1: मुझे पीस क्यों मांगना अच्छा लगता है? आई वॉन्ट पीस। मैं पीस के लिए मंदिर जाता हूँ, मैं पीस के लिए गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं पीस के लिए गुरुओं के पास जाता हूँ, मैं पीस के लिए योगा सीखता हूँ, तो आई रियली वॉन्ट पीस। मेरे में आजकल
0: व्हाट एल्स डू यू वॉन्ट? पीस एंड
1: शांति चाहिए बस।
0: शांति और और जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए। ब्यूटीफुल, और क्या चाहिए?
1: पीसफुल एंड हैप्पीनेस बस, और
0: एनीथिंग एल्स?
1: उसी के लिए तो सारी जिंदगी ये सब किया मैंने।
0: सपोज आपको दुनिया से दूर एक जंगल में भेज दें, अकेले वहाँ बैठो,
1: वैसा वाला पीस नहीं। घर पे रहते हैं,
0: घर पे और क्या? फिर लोगों से क्या चाहिए?
1: प्यार।
0: सी, दिस इज द थर्ड इंग्रेडिएंट। सो पीस, हैप्पीनेस, लव, और कुछ चाहिए?
1: गुड रिलेशनशिप।
0: हाँ, गुड रिलेशनशिप में क्या चाहिए?
1: बस हम भी आपसे प्यार करें, आप हमसे करें, झगड़ा नहीं चाहिए।
0: नहीं चाहिए। हार्मनी,
1: हार्मनी
0: राइट। कहीं भी कोई सफाई दिखती है, सब साफ स्वच्छ दिखता है, आकर्षित करता है, हमें ये जगह क्यों अच्छी लगती है? क्लीन, ब्यूटीफुल, दिस प्लेस हैज प्योरिटी। प्योरिटी मतलब एक अट्रैक्शन, जैसे एक बच्चे के अंदर होती है वो प्योरिटी। ये हर ये जो चीजें हमने लिस्ट पर बोली हमें चाहिए, ये वो चीजें चाहिए विच वी आर,
1: वापस फिर मैं ये पूछूंगा कि अगर मैं ये हूँ हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं हूँ?
0: जैसे हर एक को पानी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होगा ना जो कहेगा मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए। हर एक को हवा चाहिए, ये क्यों चाहिए? क्योंकि हर एक का शरीर इसी चीज का बना है। एवरी बॉडी इज मेड आउट ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, पांच तत्व। जो पांच तत्व का शरीर बना है, वो तत्व में अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस आएगा तो कहेंगे पानी चाहिए, हवा चाहिए। व्हाई? द बॉडी इज मेड ऑफ दोज फाइव एलिमेंट्स, इट वॉन्ट्स दोज फाइव एलिमेंट्स, क्योंकि उसको वो पांच तत्व चाहिए, इज अ प्रूफ कि वो उस पांच तत्वों का बना है। आत्मा सात गुणों की बनी है, इसीलिए कहते हैं सतो गुणी आत्मा है। तो क्योंकि आत्मा सात गुणों की बनी है, मतलब सात गुण उसके ओरिजिनल नेचर है।
1: सात गुण बताएंगे आप?
0: प्योरिटी, एवरी सोल इज अ प्योर सोल,
1: पवित्रता,
0: पीस,
1: शांति।
0: आपने कहा शांति चाहिए, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं कि शांति चाहिए। पावर, शक्ति।
1: अच्छा, शक्ति।
0: जब हम पावरलेस फील करते हैं, जैसे हम अपने मन पे ही नहीं कंट्रोल कर पाते तो पावरलेस फील करते हैं, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग, इसीलिए हम पावर को भी बाहर ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर पावर ऑफ पोजिशन, पावर ऑफ मनी, पावर ओवर पीपल। सर्च तो पावर की है ना,
1: तो मतलब मैं कमजोर नहीं हूँ,
0: वेरी पावरफुल।
1: मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के ऑपोजिट में बोलता हूँ कि मैं कितना कमजोर हूँ, ये नहीं कर सकता।
0: तो ऐसे ही शांति भी तो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, हम उसके कॉन्ट्रोडिक्टरी तो बोलते हैं, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ, शांति मुझे चाहिए, पावर मुझे चाहिए। टुडे दैट हैज बिकम द वोकैबुलरी। तो प्योरिटी, पावर, पीस, नॉलेज,
1: ज्ञान।
0: जो ज्ञान हम आज सब बाहर ढूंढ रहे हैं, विजडम जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हर आत्मा के अंदर भरी हुई है, भरपूर है। इसीलिए आप देखो चलते चलते अचानक आएगी, ऐसे अचानक से हम कहेंगे ये कहां से बात आई, मुझे ये कहां से आया ये, एंड देन वी से भगवान ने मुझे टच किया, इट वॉज द डिवाइन इनसाइड मी।

0: इसलिए ये हुआ कि परमात्मा मेरे अंदर है और वो अचानक से मुझे ऐसी बात कही. ट्रूथ, यस, दिस सत्य क्या है? द इनेट विजडम ऑफ द सोल.
1: तो ये सत्यता जब ट्रूथ हमको टच करता है तो लगता है कि भगवान ने टच किया है,
0: क्योंकि वो कभी कभी होता है ना आजकल.
1: नहीं तो भगवान भी तो सत्यता है ना, ट्रूथ है. तो
0: आत्मा, आत्मा परमात्मा का ही तो बच्चा है ना.
1: अच्छा.
0: तो आत्मा भी, हर आत्मा ट्रूथ है ना.
1: हाँ.
0: वाइज है, विजडम है. लेकिन विजडम के ऊपर भी बहुत सारी जब लेयर्स आ गई. हाँ. हम आज विजडम को बाहर ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं. जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी और से पूछने जाते हैं अपनी विजडम. यही इंट्यूशन क्या है? अगर हम ऊपर की लेयर को साइलेंट करें, हमारी अपनी विजडम आंसर देगी कि क्या करना है. लेकिन वो क्या करना पड़ेगा? ऊपर के दाग को हटाना पड़ेगा.
1: गांव में बावड़ी में, वेल में.
0: हाँ?
1: जब पानी के ऊपर उल्ली लग जाती, ग्रीन ग्रीन ग्रीन मॉस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो बाल्टी फेंकते, मॉस हटाते नीचे से.
0: दिस इज इट, यही तो करना है.
1: ऊपर से लगता है कि पानी है ही
0: है ही नहीं पानी. हाँ, सो ब्यूटीफुल सी लगेगा. अब ऊपर से दिख नहीं रहा ना. आज हमें फील नहीं हो रहा कि आई एम पीसफुल. मुझे फील नहीं हो रहा कि पावर है. लेकिन चाहिए फिर भी. जब है ही नहीं मेरे पास तो मैं औरों के पास मांगने चली गई. तो प्योरिटी, पीस, पावर, नॉलेज या विजडम जिसको हम कहें, लव, प्यार. हर आत्मा को प्यार चाहिए. हैप्पीनेस, सुख.
1: आपकी भाषा में हर आत्मा है ही प्यार.
0: है ही ना. लवफुल बीइंग है. लेकिन फील नहीं कर पा रहे, लेकिन प्यार अनुभव करना चाहते हैं, तो औरों से मांग रहे हैं. फिर हैप्पीनेस, सुख. फील नहीं कर पा रहे तो साधनों में ढूंढ रहे हैं, अचीवमेंट्स में ढूंढ रहे हैं, कहां मुझे सुख मिले. एंड देन ब्लिस, आनंद, जो हमारी सीरीज का नाम है, बीइंग ब्लिस, आनंद स्वरूप आत्मा, सत्य चित आनंद स्वरूप. सत्य है, चित आनंद स्वरूप है. उसके इट्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस. स्वरूप मीन्स वो उसका स्वरूप है. इट्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस. अभी हमने क्या किया? सिर्फ सुना. सत्य चित आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप. प्रेम स्वरूप मीन्स स्व का जो रूप है.
1: नाम भी रख लेते हैं
0: प्रेम स्वरूप,
1: शांत स्वरूप.
0: तो
1: आनंद स्वरूप, ये नेम्स भी रख लेते हैं.
0: तो व्हाट इज स्वरूप?
1: स्व, जो मैं हूँ.
0: स्व, स्व का रूप प्रेम, स्व का रूप ज्ञान,
1: स्व का रूप आनंद.
0: यस, आनंद स्वरूप. तो आनंद स्व का रूप है. बीइंग, आई द बीइंग इज ब्लिस, आनंद स्वरूप. अब मुझे सिर्फ ये याद रखना है सारा दिन कि मैं आत्मा, जो मेरा रूप है, स्वरूप है, वो ब्लिस है, वो पीस है, वो शांति है, वो खुशी है. ये मेरा ओरिजिनल कलर है. उसके ऊपर फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जो अक्वायर्ड लेयर्स आ गई, वो दाग है. अब मुझे क्या करना है? मैं एक एक दाग को नहीं हटा सकती. अभी उतना टाइम नहीं मेरे पास. गुस्से को हटाओ, ये करो, बहुत सारे दाग है. मैं सिर्फ अपने ओरिजिनल कलर को वापस अपने को याद दिलाना शुरू करती हूँ.
1: वॉशिंग मशीन में कपड़े.
0: दैट्स ऑल. अभी ये गंद, ये जो दाग है, ये सारे कैसे मिटेंगे? अगर आप सुबह उठकर ये चिंतन करेंगे कि गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा प्लीज नहीं आए, आज नहीं गुस्सा करूंगा, हट जाए. नहीं.
1: आपने सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे ही मेरा कुर्ता सफेद है, मैं उसको बोलता जाऊँ तो मैला क्यों है, मैला क्यों है, मैं साबुन लेके साफ करूँ.
0: करो. अब इसमें साफ करने का तरीका क्या होगा? हर रोज अपने को सिर्फ याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ, आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ ब्लिसफुल बींग. ये मेरा स्वरूप है. यू नो, जैसे फिजिकल रूप को भी तो सारा दिन देख रहे हैं कि मेरा रूप कैसा है, कहाँ ठीक करो उसको. ये इनहेरेंट नेचर है हर आत्मा की, ब्यूटी, एक्यूरेसी, परफेक्शन. लेकिन सिर्फ हुआ क्या, हम सिर्फ उसको शरीर के लेवल पर ही देखने लगे. अब यही चलते चलते अगर हम सारा दिन में ज्ञान के दर्पण में देख लें, सब ठीक है ना? कोई गलत थॉट तो नहीं आई ना? साफ ऐसे कैसे करते हैं? चलते चलते, अच्छा ठीक करो, साफ. अरे बाल थोड़ा इधर से उधर हो गया, साफ. थोड़ा सा इधर दाग लग गया, साफ. चलते चलते चेक कर ले तो दाग ही नहीं पड़ना.
1: सारी उम्र हम यही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर,

0: आईना साफ करते रहे।
1: हाउ ब्यूटीफुल,
0: मिट्टी यहाँ लगी और मैं आईने को साफ करता जा रहा हूँ, मिरर को।
1: तो दाग कहाँ था? मेरे संस्कारों में, मेरी नेचर में। हम साफ कहाँ कर रहे थे? आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, परिस्थिति ठीक हो जाए,
0: मेरा नौकर चेंज हो जाए, मेरी बीवी ऐसी है।
1: करना क्या था? सिर्फ मेरा संस्कार एक ऐसे, मेरे ये थॉट एक इधर।
0: बट हम रोज करते हैं सिस्टर, मैं सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ सीधा वाइपर के ऊपर पानी मारता हूँ और अपने आप साफ हो जाता है,
1: हाँ।
0: है? शीशा
1: right?
0: तो मुझे दिखने लग जाता है। yes. इसी तरह मैं अपने अंदर वाइपर, अपनी मिट्टी कैसे साफ करूं?
1: अब ये कितना ब्यूटीफुल है, हम वाइपर से पानी मारते हैं, कांच साफ हो जाता है। एक दिन अपना वो वाइपर नहीं मारे और गाड़ी चलाकर यात्रा पर चलते हैं,
0: धुंधला धुंधला,
1: वो ही गाड़ी, वो ही रास्ता, वो ही बाकी लोग उस रास्ते पर, सिर्फ मेरा कांच साफ नहीं है ना, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दिखेगा ही नहीं सामने कुछ। अब हम सामने वाले को फिर उतर के कहें आप ठीक से नहीं चला रहे थे। ये सब फिजिकल है, इवन फिजिकल ब्यूटी भी तो दिखती है ना। अगर मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ जाए तो वेइंग मशीन दिखाती है ना, अच्छा वेट बढ़ गया है, तो इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएंगे ना।
0: यहाँ भी दिखता है मुझे, जब मैं ज्यादा हाँ। सोचता हूँ तो मेरे ऊपर इतना बोझ आ जाता है जैसे कि सारी धरती का बोझ, सारी दुनिया ये जो धरती घूम रही मैं चला रहा हूँ। कभी कभी थक जाता हूँ क्योंकि ब्रेन इतना यार ये नहीं सुन रहा है मेरी बात, वो काम नहीं कर रहा है, इसको बोला था वहां नहीं जाना चला गया, ये रॉन्ग हो रहा है, ये राइट नहीं हो रहा है,
1: ये वजन बढ़ गया,
0: मेरे को इतना बोझ हो जाता है।
1: तो अब डाइटिंग कैसे करेंगे क्योंकि वेट तो कम करना ही पड़ेगा, लाइट कैसे रहेंगे? देखो फिजिकली बॉडी अगर बहुत वेट पुट ऑन कर ले तो वो ही शरीर है, लेकिन वेट पुट ऑन कर लिया तो उठना बैठना चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो जो नेचुरल चीजें हैं वो डिफिकल्ट हो गई ना। पहले भाग लेते थे, कुछ भी सामान उठा लेते थे, लेकिन अब वजन बढ़ गया, अब वजन बढ़ गया है तो उठना बैठना, फिर घुटनों में दर्द होने लग गया ना क्योंकि वजन बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट हो रहा है, वजन बढ़ गया है। एक वजन बढ़ने से कितनी सारी चीजों पर असर पड़ गया। अब वो सारी चीजों को ठीक करें कि घुटने को भी ठीक करें, ये भी ठीक करें, या वजन ही घटा लें?
0: फिर आपके बाद डाइट पे आ गई वापस।
1: तो वजन, अपने वजन को यहाँ रोज घटाएं, नहीं तो हर चीज पर असर पड़ेगा उसका। अगर मेरी थॉट्स हैवी होती जा रही है, दिस इज हैवी थिंकिंग, किसी के बारे में क्रिटिकल हो गए सोचते जा रहे हैं, फिर नेचर बन गई हर एक के बारे में क्रिटिकल हो गए।
0: रात को मुझे ऐसे कैसे बोला?
1: yes.
0: मुझे सारी रात नींद नहीं आई।
1: yes.
0: उसने मुझे 7 दिन पहले ये बोला, मैं 3 दिन से नहीं सोया।
1: उसने मुझे 10 साल पहले ऐसे बोला, तो हैवी हो गए ना, तब से पकड़ के रखा है यहाँ अक्यूमुलेट, एंड फिर हैवी थिंकिंग है। सो वी हैव टू चेक, इज माई थॉट हैवी और लाइट? कैसा फील हो रहा है वो थॉट क्रिएट करने के बाद?
0: मालूम है हैवी सिस्टर, मैं पूछ रहा हूँ उसको लाइट कैसे करूँ?
1: वजन बढ़ गया है तो कैसे लाइट करेंगे? घटाना पड़ेगा ना।
0: वो तो मुझे मालूम है,
1: घटाना है। ये थॉट मेरा नुकसान कर रही है, दूसरे ने चाहे कुछ भी किया हो, चाहे मैं सही हूँ और दूसरा गलत है, ये थॉट मेरा नुकसान कर रही है।
0: बट ये बात इतनी क्लियरली क्यों नहीं समझ में आती है जितनी क्लियरली मुझे वेइंग मशीन दिखती है?
1: फिजिकल वेट बढ़ता है, उसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस फिजिकल अपियरेंस में दिख जाता है। यू नो आई एम नॉट लुकिंग एज नाइस एज दैट आई यूज्ड टू लुक, मेरा वेट बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो फिजिकल ब्यूटी पे इफेक्ट हो गया, सेकेंड फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट हो गया, पैरामीटर्स पे इफेक्ट होने लग गया, थर्ड जो मैं सारा दिन काम आराम से कर लेते थे उस पे स्लो डाउन होने लग गया, कहीं प्रॉब्लम आने लग गई, तो 3 चीजों पे इफेक्ट हो गया, ब्यूटी, फिर हेल्थ और फिर एक्टिविटी, तीनों पर हो गया। इसी तरह थॉट्स जब हैवी हो जाएंगे तो पहले मेरी इनर ब्यूटी इफेक्ट हो जाएगी, जो आत्मा आनंद स्वरूप है, मीन्स उसका रूप कैसा है, आनंद, ब्यूटिफुल है ना, आनंद स्वरूप है, लेकिन अब वो गुस्से वाला स्वरूप बन जाएगा, अब वो चिड़चिड़ा स्वरूप बन जाएगा। तो सुंदरता अंदर की गई, अंदर की सुंदरता का फेस पर भी दिखाई देने लगा, फिर हेल्थ, मेरी इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होने लग गई, और मेरी हर एक्टिविटी, चाहे वो मेरे रिश्ते हैं, चाहे वो मेरा करियर है, छोटे छोटे काम भी, उस पर उसका इफेक्ट आने लग गया क्योंकि मेरी इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि मैंने वो थॉट पकड़ कर रखी। और जैसे मेरी इमोशनल हेल्थ अब डिक्लाइन होने लगी, मेरा वजन और बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी कि बात आई लेट को, बात आई फिनिश्ड. जितनी इमोशनल हेल्थ कमजोर होगी मैं बातों को ज्यादा पकड़ के रखूंगी.
0: बात आई खा पी लिया, बात आई दवाई खा ली, बात आई अल्कोहल ले लिया, बात आई सिगरेट पी ली, बात आई च्यूइंग टोबैको कर लिया, बात आई खूब खाना मिठाई खा ली.
1: अब यही इमोशनल हेल्थ जब डिक्लाइन होगी उससे फिर फिजिकल हेल्थ भी डिक्लाइन होगी. कितने सारे, अगर वो अवेयरनेस रहेगी, ये अवेयरनेस चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. चाहिए खुशी तो फिर आई कैन नॉट अफोर्ड टू होल्ड दिस थॉट. आई कैन नॉट, आई जस्ट हैव टू टेल माई सेल्फ इवन इफ द होल वर्ल्ड इज रॉन्ग आई एम राइट इन एनीथिंग. आई कैन नॉट अफोर्ड टू होल्ड दिस थॉट बिकॉज इतने कॉन्सिक्वेंसेस है.
0: देन आई हैव नो राइट टू से आई वॉन्ट पीस.
1: I don't have an, it's not about that. I have no right to say.
0: बोल रहा हूँ कर कुछ और रहा हूँ फिर मैं want peace क्यों बोलूँ.
1: I'll just have to tell myself I won't get it. Even if I want it. I won't get it. Because I've held on something else. कुछ और पकड़ के रखा. अगर मैंने इस हाथ में कुछ और पकड़ के रखा है और फिर मैं कहूँ लेकिन मुझे ये पकड़ना है, पहले ये छोड़ना पड़ेगा. एक हाथ में एक ही चीज पकड़ी जाएगी, या तो ये पकड़े या वो पकड़े. पकड़ा हुआ एक, कहेंगे मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए. लेकिन
0: बंदर ने चने की बोतल में हाथ डाल दिया, सारे चने जो अटका हुआ बाहर नहीं निकल रहे,
1: छोड़ना पड़ेगा.
0: चना कुछ कम करे या छोड़े तभी बाहर बाहर.
1: अब उस बंदर को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए ना. फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए. अगर मुझे भी फ्रीडम चाहिए, दुख से, अशांति से, चिंता से फ्रीडम चाहिए. आई वॉन्ट टू फील लाइट, फ्री, इंडिपेंडेंट. छोड़ना पड़ेगा, बातों को छोड़ना पड़ेगा. चाहे वो लेट गो इन द सेंस सोच के पकड़ के मेरा नुकसान.
0: बंदर ने चने छोड़े तब बाहर आया ना, बॉटल में बाहर फंस गया, अभी कैसे निकलेगा.
1: मैं सोचू पकड़ के भी बाहर निकाल लू किसी तरह, वो होना नहीं पड़े तो आई हैव टू डिसाइड क्विकली क्या चाहिए. इसी तरह मैंने किसी के प्रति नफरत पकड़ के रखी और फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे संतों के पास गई, शांति चाहिए. होगा नहीं.
0: ब्यूटीफुल.
1: होगा नहीं. इसको छोड़ दो तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा.
0: ये हम सबका प्रॉब्लम है.
1: सबका है लेकिन जाना नहीं पड़ेगा. एक छोड़ दो थॉट, शांत स्वरूप आत्मा है, ढूंढ रहे हैं वो जो यहाँ पर है. और ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं है. चलो किसी के पास गए, मिले, कुछ अच्छी बात सुनी, लेकिन वो बात भी इम्प्लीमेंट करनी है ना. फिर इम्प्लीमेंट करनी है. लेट्स से कोई अभी ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, कहेंगे हाँ नाउ नाइस आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, बट करेगा कौन? फाइनली करना पड़ेगा. इट विल नॉट गो अवे लाइक दिस, बट एवरी टाइम आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप फास्टर. जितना फुल स्टॉप फास्टर करेंगे धीरे धीरे वो बात कमजोर हो जाएगी. ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस. अगर एक बीज डला भी हुआ है लेकिन बीज को आप पानी ना दें, आप उसको नरिश ना करें, वो बीज मर जाएगा फाइनली.
0: वेयर अटेंशन गोज
1: एनर्जी फ्लोस.
0: जैसे मैं जिम में बाइसेप की एक्सरसाइज करता हूँ, डंबल की, अटेंशन याद देता हूँ. इसीलिए टीचर कहता है मुझे, आप पिक्चर देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, इधर अटेंशन दो.
1: वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. एनर्जी मीन्स आपकी एनर्जी उस चीज को मिलेगी. एंड वेयर यस एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो. आपने एक्सरसाइज किया, अटेंशन दिया, एनर्जी फ्लो की चीजें हो गई जो आप करना चाहते हैं. थ्री थिंग्स, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, थिंग्स ग्रो. ये गार्डन है ऐसे ही नहीं बन गया. अटेंशन गई, एनर्जी मिली, थिंग्स ग्रो. आज यहाँ से अटेंशन हटा लो. अटेंशन हटी, एनर्जी मिलनी बंद हो गई, थोड़े दिन के अंदर ये गार्डन ऐसे हो जाएगा,
0: सूख जाएगा.
1: सूख जाएगा. वैसे ही जो वो पुरानी बातें पड़ी हुई हैं, जस्ट अटेंशन विड्रॉ कर दो उससे. पड़ी है ना, नहीं निकल रही, कोई बात नहीं. ध्यान, जिसको कहते हैं ना ध्यान हटा लो अपना उस बात से, मीन्स विड्रॉ योर अटेंशन. मतलब एनर्जी नहीं मिलने दो उस बात को. और कोई बात किसी की दिखी, अभी भी प्रेजेंट पे कोई बात दिखी, गलत लगी, ध्यान नहीं देना. अटेंशन मतलब सोचना नहीं उस पर. दिखेगी, सुनाई भी देगी, मन और चित उस पर नहीं जाना चाहिए. क्योंकि हमें अपने आसपास आज चारों तरफ सब

0: कुछ दिखने वाला है, न्यूज सुनेंगे वो भी दिखेगा, लोग आसपास दिखेंगे, लेकिन दिखना और सुनना, लेकिन वो हमारे चित्त पर बैठ जाना वो अलग चीज है। जैसे ही वो चीज मेरे चित्त पर बैठ गई, मीन्स अटेंशन मैंने उसको अब अपनी देनी शुरू कर दी, एनर्जी अपनी देनी शुरू कर दी, वो चीज मेरे मन में अब ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। तो दे सारा दिन अटेंशन गोस, एनर्जी फ्लोस, थिंग्स ग्रो। जो चीजें टॉक्सिक है, डैमेजिंग है, अटेंशन हटा लें। अब जो नया संस्कार क्रिएट करना है, लेट अटेंशन गो। आई एम अ पीसफुल सोल, ये कभी अटेंशन ही नहीं दिया था, मैं गुस्से वाला हूँ, ये थॉट क्रिएट करते थे। अटेंशन गई,
1: क्यों आता है?
0: पर थॉट तो एंगर
1: के, बुरा क्यों सोचता,
0: मेरे से नहीं होता,
1: मैं कितना बुरा आदमी हूँ,
0: आदमी हूँ मैं, हूँ बुरा। तो अटेंशन कहाँ गई, एनर्जी कहाँ फ्लो हुई,
1: और कितना प्यारा प्यारा अपने आप को श्राप दिया है ना।
0: एनर्जी फ्लो हुई, वही चीज बनती गई। अब सिर्फ एक थॉट, आई एम अ ब्लिसफुल बींग, बींग ब्लिस, ये हमारा मंत्र बन सकता है। दिस इज मी, सिर्फ ऐसे ओम शांति बोलने से नहीं होता है, शब्द लेना पड़ेगा एक, जो मेरे को बन जाना है। मंत्र मीन्स जो बन जाऊं मैं, मन उसके साथ एकदम लीन हो जाए उस चीज के अंदर, शब्द में ना लीन हो जाए, स्वरूप हमारा वो बन जाए। तो दिस शुड बी माई मंत्र, दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज आई, बन जाएगा। वेयर अटेंशन गोस इट विल हैपन। कौन सी बातों पर कितना अटेंशन देना है, आई हैव टू चूज। जितना हम ये करेंगे, हम अपनी पुरानी बातों को धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। ये जो ओरिजिनल संस्कार है, सी ओरिजिनल संस्कार को फिर से इमर्ज करना है, तो पहले तो ओरिजिनल संस्कारों को याद रखना पड़ेगा। ये ना हो कि जो आपने पिछली बार कहा, पर वो मेरी नेचर है। मेरी नेचर है,
1: मैं सैजिटेरियन हूँ, मेरे बारे में ये ट्रेड्स हैं, मेरी ये नेचर है,
0: जो, मैं ऐसा ही हूं। जो मुझे दिखता भी है अपने अंदर, आज सारा दिन मैं कैसे बोलता हूँ, क्या करता हूँ, कैसा सोचता हूँ, मैं कहता हूँ मैं, ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर नहीं है। अगर सपोज इस कुर्ते पे काला दाग लग जाए, आप ये तो नहीं कहेंगे ये कुर्ता काले रंग का है, आप कहेंगे व्हाइट है, अभी ये थोड़ा सा काला दाग लगा। तो ओरिजिनल कलर वो ओरिजिनल नेचर है। तो मेरी नेचर, मेरी नेचर, मेरी मतलब मैं, मेरी नेचर क्या है, मेरी नेचर ये सात क्वालिटीज है, ये अटेंशन रखना है सारा दिन। ये मेरी नेचर है, बाकी सब दाग है, बाकी सब दाग है जो ऊपर लगा है, ओरिजिनल नेचर। इसीलिए उसकी खोज है। अब खोजना भी नहीं है, ढूंढना भी नहीं है, ये याद रखना है ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। पीस, प्योरिटी, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस, ब्लिस,
1: बीइंग ब्लिस,
0: बीइंग ब्लिस, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और आनंद। मैं आत्मा, इनका स्वरूप हूँ, ये मेरा रूप है। ये शब्द जो सुने हैं, अब इसको सारा दिन स्मृति में रखते हुए, अब ये इन्फॉर्मेशन जब होगी तो थॉट्स कैसे अराइज होंगे, अब इसमें से ऑटोमेटिकली, पहले अगर हम कहते मैं गुस्से वाला हूँ, अब हम कहेंगे आई एम पीसफुल सोल। जब थॉट ही आई एम अ पीसफुल सोल होगी, तो फीलिंग कैसी आएगी? जैसे आपने अभी शुरू में क्या कहा, आई एम फीलिंग ब्लिस टुडे, बार बार सोचेंगे बीइंग ब्लिस, बीइंग ब्लिस, बीइंग ब्लिस, बीइंग पीस, तो फीलिंग चेंज हो गई, बिकॉज थॉट इज टू फीलिंग। फिर फीलिंग्स चेंज हो गई, धीरे धीरे एटीट्यूड अपने प्रति, अभी एटीट्यूड क्या था, नहीं मैं बुरा हूँ, सब मुझसे दुखी हो जाते हैं, मैं हूँ, अब नहीं, आई एम अ प्योर सोल
1: एटीट्यूड। आज सुबह मैं जब शावर ले रहा था, तो ज्यादा गर्म हो गया था पानी, तो मैंने सिर्फ बटन को इस तरफ कर दिया, पानी ठंडा आ गया। तो इतना इजी है कि जो आप ये कह रही हैं, बीइंग दिस,
0: सिर्फ क्या करना है, जो चाहिए वो सोचना है। वी सॉ,
1: मुझे चाहिए था इतना गर्म पानी, नहीं चाहिए,
0: नहीं चाहिए था,
1: कम करना था, ठंडा मैंने इजीली इधर कर लिया उसको,
0: ब्यूटीफुल। अब
1: ये बताइए यहाँ कैसे,
0: अब ये ही चाहिए ठंडा, खड़े हैं गर्म के नीचे और बोले ठंडा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए,
1: पानी को कोस रहे हैं।
0: हाँ, कितना गर्म है, पर मेरे को तो ठंडा पानी चाहिए, चाहिए पीस। तो क्रिएट क्या करना होगा, सोचने कैसी थॉट होगी, बोलने का तरीका कैसा चाहिए, यस, कर्म कैसा होना चाहिए। तो वो बटन को, गुस्सा आया किसी पर, फिर अपने को याद दिलाना, बट पीस,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मुलाकात थी, तूने क्यों अपना वादा भुलाया है। भूलती हो ना गोरी, तूने मेरा दिल चुराया है।

0: रही हूँ।
1: ओ माफ करना, भूल गया था। अच्छा तुम कपड़े बदल लो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ।
0: ए क्या हुआ?
1: हुआ ये मीनू, हमारे दरमियान ये साड़ी एक दीवार बन गई है।
0: अगला कहेगा इसे दीवार कहता है।

0: कोई दीवार नहीं है ना?
1: नहीं, अब कोई दीवार नहीं मीनू।
0: मीनू नहीं, मीना।

0: कहीं दाग न लग जाए।
1: ठीक कहती हो, कहीं आग न लग जाए।

जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो। मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

लता जी लोग कहते हैं तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती है, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ, उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज दी है, इन लोगों को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उनके तरफ।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आज हम लोग बातें करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में। जी हाँ, अध्यापक शिक्षक एक ऐसा पेशा है जो जीवन बनाता है, भविष्य गढ़ता है और समाज को दिशा देता है। प्यारे भाई और बहनों, शिक्षक केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है। कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये पंक्ति शिक्षक के महत्व को सदियों से रेखांकित करती आई है। जब कोई बच्चा पहली बार अक्षर लिखना सीखता है, जीवन के मूल्य समझता है, अपने सपनों को पहचानता है, वहां एक शिक्षक होता है। आज के बदलते युग में जहां तकनीक प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ रहा है, वहां शिक्षक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आप ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें सम्मान हो, आत्मसंतोष हो, समाज सेवा का भाव हो और स्थिर भविष्य हो, तो शिक्षक या अध्यापक बनना एक अत्यंत श्रेष्ठ विकल्प है साथी। तो आइए आज हम लोग इसी विषय को लेकर बातें करेंगे, अध्यापक या शिक्षक कैसे बने और कौन होता है। तो साथियों, शिक्षक कौन होता है, अगर इस बात पे मैं जोर दूं तो यहाँ पर शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता बल्कि सोचने की शक्ति, नैतिक मूल्य, आत्मविश्वास, जीवन कौशल का निर्माण करता है। एक अच्छा शिक्षक वो है जो छात्रों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानता है, उसे सही दिशा देता है और जीवन के हर मोड पर प्रेरणा बनता है। तो ये है शिक्षक। तो आइए विस्तार से जानते हैं थोड़ी देर में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। साथियों, बातें कर रहे हैं हम लोग शिक्षक या अध्यापक के बारे में, कैसे बने। शिक्षण क्षेत्र का महत्व भारत जैसे देश में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव माना गया है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 ने शिक्षक को ज्ञानदाता से आगे बढ़कर मार्गदर्शक मेंटोर की भूमिका दी है। साथियों, आज शिक्षक कक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस YouTube ई लर्निंग का हिस्सा भी बन गए हैं। वैश्विक स्तर पर ज्ञान बांटा जा रहा है। साथियों, शिक्षक बनने के लिए मुख्य प्रकार है। शिक्षक क्षेत्र में अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक। बच्चों की नींव मजबूत करते हैं आप। धैर्य, प्रेम और समझ बहुत जरूरी है इस कार्य में। तो ये हो गया एक प्राथमिक शिक्षक की बातें। दूसरा है माध्यमिक शिक्षक, सेकेंडरी टीचर, कक्षा 6 से 10 तक। विषय विशेषज्ञता आवश्यक है। यहाँ पर छात्रों की सोच विकसित करना जरूरी है। तो ये हो गया सेकेंडरी टीचर, माध्यमिक शिक्षक। और फिर

है तीसरा स्तर जहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक सीनियर सेकेंडरी टीचर जो कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाती है। विषय की गहराई से जानकारी और करियर मार्गदर्शन की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद एक और स्तर आता है जो 14 नंबर का है, कॉलेज विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट शोध स्तर पर काम होता है, एकेडमिक प्रतिष्ठा यहाँ पर बहुत जरूरी है। शोध लेखन और नवाचार की बातें यहाँ पर बच्चों को बताई जाती है। पांचवा स्तर है कोचिंग प्रतियोगी परीक्षा शिक्षक। यहाँ पर आपको आती है बातें जैसे कि हम लोग बच्चे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एनईटी, नीट या फिर जी, इन सभी शिक्षा को या यहाँ पर कोचिंग करने वाले का उपयोग होता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा शिक्षक बोला जाता है या कोचिंग शिक्षक भी कहा जाता है। उच्च आय की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती है और प्रदर्शन आधारित पहचान बनती है। इसके बाद एक और स्तर आता है जहाँ पर ऑनलाइन शिक्षक जो अभी के समय की जरूरत है। ये डिजिटल ट्रेनर के रूप में, एडुटेक ट्रेनर के रूप में पहचान मिलती है। तो ये स्तर में डिजिटल युग का उभरता विकल्प है। ये घर बैठे पढ़ाने का अवसर और वैश्विक पहुंच भी है। देखिए घर बैठे भी अगर ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आपको विश्व भर के बच्चे जुड़ जाते हैं। तो आप देखेंगे आज ये जो ट्रेंड है वो बहुत पॉपुलर भी है और इसमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे खान सर है ना, खान सर है और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लोग ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाकर बच्चों के जीवन को संवारा है। अब खान सर की बात ले लें, आप उनका नाम सिर्फ डालने से कितने सारे वीडियोस, और उनके वीडियो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि आप और हम भी जरूर देखते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान बांटने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही ग्राउंड रूट से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और उन्होंने आज इतना नाम कमाया, एक सेलिब्रिटी के रूप में लोग उन्हें याद करते हैं और वो समाज सेवा के लिए भी अभी कदम बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक सुंदर हॉस्पिटल बनाकर लोगों की सेवा अर्थ वहां पर बनाया है, जिसमें सबसे अच्छी सुविधा उपलब्ध भी की है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने जो पॉपुलर नाम है वो बताया है। तो ये जो ऑनलाइन शिक्षक बनने का, ट्रेनर बनने का एक बहुत ही सुंदर जो है विकल्प आज के इस जमाने में हम सभी को मिलता है। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर बातें करेंगे शिक्षक बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, शिक्षा और स्किल कौन से लगते हैं। आप सुन रहे हैं जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे हैं एक शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। एक शिक्षक सिर्फ एक करियर नहीं है बल्कि एक सम्मान है, एक प्रतिभा है और एक प्रतिष्ठा है साथियों। तो आइए, शिक्षक बनने के लिए किन किन योग्यताओं की जरूरतें होती है तो साथियों नोट कीजिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए 12वीं पास होकर डीए या बीए या बीटीसी करना बहुत जरूरी है। सीटीईटी भी और स्टेट टीईटी कर सकते हैं। दूसरा है माध्यमिक शिक्षक, अगर आपको बनना है तो बीए बीएससी बीकॉम पढ़ाई हो, आपकी डिग्री हो आपके पास, उसके बाद आप बीएड लेकर आप अपनी शिक्षक बनने की तैयारी कर सकते हैं और इसमें भी टीईटी स्टेट एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तीसरा विकल्प है लेक्चरर, पीजीटी जिसको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको जरूरी है इसमें और बीएड से ही आप आगे बढ़ते हैं और इसके साथ में एनईटी एसईटी कॉलेज के लिए आपको जरूर करना होता है। उसके बाद आता है प्रोफेसर, और प्रोफेसर बनने के लिए आपको एक पीएचडी का डिग्री आपके पास हो, शोध अनुभव आपके पास हो, रिसर्च पेपर आपके पब्लिश्ड हो, प्रकाशन आपने किया हो, तो आप इस प्रोफेसर के करियर को क्रैक कर सकते हैं। साथियों इन सारी डिग्रियों के अलावा भी शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बहुत जरूरी है विषय का चयन हो, आवश्यक डिग्री प्राप्त करना। तीसरा है पात्रता परीक्षा, सीटीईटी एनईटी आदि ये जरूरी है। सरकारी निजी संस्था में आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा भी होती है और मुख्य इंटरव्यू भी होता है, तो इन दोनों की प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन होता है। साथ ही इसके अलावा एक शिक्षक को शिक्षक के लिए आवश्यक कौशल्स भी है, जैसे कि स्किल्स की बात। एक सफल शिक्षक बनने के लिए आपको संवाद कौशल कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। दूसरा है धैर्य और सहानुभूति, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा नेतृत्व क्षमता, नवाचार और संरचनात्मकता आपके अंदर हो, डिजिटल साक्षरता हो, निरंतर सीखने की भावना भी आपके अंदर हो। तो ये सारी चीजें आपके शिक्षक बनने की स्किल्स है जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो साथियों थोड़ी देर में बातें करते हैं आपके पास कैसी जिम्मेवारियां होती हैं और शिक्षक बनने के फायदे भी क्या है। आप सुन रहे हैं जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: फिर सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। और बात कर रहे थे हम लोग शिक्षक या अध्यापक बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, पढ़ाई और स्किल्स, दोनों चीजें मैंने बता दी है। और आप किस तरह का टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या फिर कॉलेज के लेक्चरर, या फिर आप ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। अब बात करते हैं जिम्मेवारी की, क्योंकि किसी अहदे पर आप पहुंचते तो आपकी जिम्मेवारी होती है। एक शिक्षक बनते हो तो आपके पास जिम्मेवारी होती है पाठ योजना बनाना, छात्रों को पढ़ाना, मूल्यांकन और परीक्षा, अभिभावकों से संवाद, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, छात्रों का करियर मार्गदर्शन करना। तो ये सारी चीजें जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो आप इन चीजों को अगर करते हैं तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है। साथियों, शिक्षक बनने के फायदे क्या क्या है उस पर बात करते हैं एक नजर। सम्मान और प्रतिष्ठा आपको मिलता है, समाज में शिक्षक को हमेशा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरा, आत्मिक संतोष यहाँ पर मिलता है। जब कोई छात्र सफल होता है तो शिक्षक को गर्व महसूस होता है। तीसरा है नौकरी की स्थिरता, विशेषकर सरकारी शिक्षक के लिए। काम जीवन संतुलन, यानी अन्य प्रोफेशन की तुलना में यह बहुत बेहतर है, जहां पर एक सीमित समय आप बच्चों को देते हैं और उसके बाद आप फ्री भी होते हैं। और आखिरी बात होती है लगातार सीखने का अवसर मिलता है, ज्ञान कभी रुकता नहीं है, ज्ञान सीखा भी जाता है और सिखाया भी जाता है, है ना। ज्ञान सुना जाता है और ज्ञान लिखा जाता है, तो ये लगातार सीखने का अवसर आपके मन में बनी रहे। शिक्षक बनने के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं साथियों, जैसे कि सीमित संसाधन। कई बार आप अगर सरकारी नौकरी में जाते हैं तो वहां पर सीमित संसाधन होते हैं, छात्रों की विविध पृष्ठभूमि होती है, कई छात्र अच्छे होते हैं, कई छात्र गरीब होते हैं, तो ये सारी चीजें भी चैलेंजेस में आते हैं। प्रशासनिक दबाव भी रहता है कि आप बच्चों का एडमिशन कराओ और पढ़ाओ। आरंभिक वेतन कम हो सकता है, बदलती तकनीक के साथ तालमेल रखना होता है। कई बार आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ते हैं जहां पर टेक्निक ही नहीं है, फिर भी आपको उन चीजों को करना है, तो थोड़ी सूझबूझ के साथ चुनौतियों को सामना करते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो जाता है। लेकिन समर्पण और सीखने की इच्छा से चुनौतियां अवसर में तब्दील होती हैं, इसलिए बिना डरे चुनौतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़े। शिक्षकों के लिए वेतन और राय, इस पर बात करते हैं साथियों। सरकारी शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में अगर पढ़ाते हैं 25,000 से 40,000 पे मिलता है, माध्यमिक स्तर पर आप अगर पढ़ाते हैं तो 35,000 से 50,000 है, और आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो 60 से 1.5 लाख तक का आपका पैकेज बनता है। निजी कोचिंग का अगर बात करें तो अनुभव और प्रदर्शन पर निर्भर करता है, और ऑनलाइन शिक्षक से असीम संभावनाएं भी हैं। जैसे मैंने बताया आपको, खान सर जैसे लोग काफी पैसे कमाते भी हैं, लेकिन उनकी खान सर की एक बात बहुत अच्छी है कि वो बच्चों को कम फीस में पढ़ाते हैं, इसके वजह से दूसरे शिक्षकों के लिए वो बड़ी जो है एक मुश्किल का काम बन जाता है। कई बार उनके इसके लिए भी दबाव बना रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रख के इन चीजों को किया है, और जो बहुत दूर दराज के बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते उनके लिए भी वो काम करते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे, शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं क्या है। साथियों, नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा, एआई के साथ हाइब्रिड टीचिंग, शिक्षा का भविष्य उज्जवल और बहुत ही विस्तार है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में इस तरह की चीजें हमको आज भी देखने को मिलता है, और आगे और बढ़िया तरीके से ये चीजें हमारे बीच में आएगी। शिक्षक बनना क्यों चुने, ये भी अगर आपके मन में सवाल है, और ये सवाल का जवाब हो तभी आप टीचर बने, अदरवाइज आप दूसरा करियर चुन सकते हैं। साथियों, शिक्षक बनना क्यों है इसके लिए मैं बताना चाहूंगा। यदि आप समाज को बदलना चाहते हैं,

अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बांटना चाहते हैं, सम्मानजनक और स्थायी करियर चाहते हैं, तो शिक्षण बनना आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प है। साथियों, निष्कर्ष यही है कि शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। ये करियर केवल आज की नौकरी नहीं बल्कि भविष्य की नींव है। एक अच्छा शिक्षक राष्ट्र का सच्चा निर्माता होता है। तो साथियों, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक अच्छे टीचर बने। टीचर में अलग अलग प्रोफेशन है, वो भी मैंने बताया आपको। आप सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ाने के लिए प्रोफेसर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं और फिर रिसर्चर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। तो बिना सोचे लेकिन अपने आप से जरूर बात कीजिए, अपने अंतर आत्मा से पूछिए कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बांटना चाहते हैं, सम्मानजनक और स्थायी करियर चाहते हैं, तो आप शिक्षक जरूर बने। इन सभी सवालों का जवाब हाँ में आता है आपके मन से तो आपके लिए ये करियर है। तो फिर आप पीछे मुड़ के मत देखिए, इनके योग्यताओं को अपने अंदर समाइए और एक अच्छा टीचर बनकर समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए करियर के लिए। तब तक आप बने रहिए, अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए ट्रेड के साथ। आप सुन रहे हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड में से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

महंगाई महंगाई महंगाई महंगाई दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई तू कहाँ से आई तुझे क्यों मौत ना आई हाय महंगाई महंगाई महंगाई।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर में। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। आइए आज के इस खाबो को सफर यादगार बनाते हैं आपके साथ मिलकर। और हमारे साथ खास मेहमान विभा जी भी है जो आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे गीतों का कलेक्शन। तो आइए विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर में आज के इस एपिसोड में।
2: थैंक यू सनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरा साथ देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहूंगी और खाबो का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा, मैं आर अक्षर पे फिर से पुराने गाने और बड़े बड़े खूबसूरत दिल लुभाने वाले गाने लेके आई हूँ। और जो सबसे पहला गाना मेरे पास है वो मस्ती भरा है और थोड़ी पंजाबी टोन वाला है गाना। रेशमी सलवार कुर्ता जाए रूप कहा ना जाए नखरे वाले, तो बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसमें नाच है, मस्ती है और पंजाबी पूरा सेट एटमॉस्फेयर ऐसा पंजाबी सेट बनाया गया है इसको फिल्माते हुए। पंजाबी ड्रेस है और नजाकत और नकलों का जिक्र हो रहा है इस गाने में।
1: जी जी,
2: कुल मिला के आपको बहुत मजा आने वाला है इसको सुनते हैं।
1: वाह क्या बात है, चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया। नया दौर इस एल्बम का जो 1957 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म जो है उस समय बहुत ही कमाल का पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जीवन और अजीत खान पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए, इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल बताई गई है। उस जमाने में किसानों का दौर हुआ करता था और फिर नई टेक्नोलॉजी आई, गाड़ियां बसेस वगैरह शुरू हो गए, तो फिर किसान जो टांगे वगैरह चलाते थे उनकी रोजी रोटी में खतरा होने लगता है बस की आने से। तो यहाँ पर ये जो है चीजें बताई गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है इस फिल्म का ये जो मस्ती भरा, जैसे विभा जी ने बताया है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुना है रेडियो मेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही मस्ती भरा गीत आपने सुना और आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे इस गाने को। अब आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हम लोग ख्वाबों के सफर में, कभी कभी रिश्तों में जो है आंसू भी आते हैं तो मुस्कुराहट भी होती है, और इसके लिए कहते हैं कि जीवन में आंसू और मुस्कुराहटों का

0: बड़ा अच्छा कनेक्शन भी है। कई बार आंसू जो है खुशी के भी निकलते हैं तो दुख के भी निकलते हैं, इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है आपको तो आंखों से जो प्रेम के आंसू झरते हैं वो भी हमें कुछ जो है यादें बना के रखती है, और बहुत दिनों के बाद एक खुशी की जो एहसास है वो हम कर पाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, आंसू जानते हैं कौन अपना है तभी अपनों के आगे निकलते हैं, और मुस्कुराहट का क्या है, गैरों से भी वफा कर लेती है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खाबू के सफर को आप सुनाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
1: जिम जिम के गीत सावन गाए,
0: हाँ हाँ,
1: रातों में, ये मेरा अगला गाना है, रोमांटिक गाना है और बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया, राजेंद्र कुमार और बबीता का ये गाना है। इसमें शौकी है, जैसा कि इसको आप गाते ही आपको आपके अंदर से एक ऐसा भाव उठने लगता है कि जैसे आप आंखें बंद करेंगे और ऐसे रिमझिम की बरसात और आपको ऐसा एटमोसफियर आपके अंदर से ही तो आप एक पिक्चराइज कर लेंगे, बहुत ही खूबसूरत गाना है।
0: जी जी जी, अनजाना इस एल्बम का ये गाना आपने याद करा, 1969 का, बबीता, राजेंद्र कुमार, प्राण, प्रेम चोपड़ा, निरुपमा और रॉय पर पिक्चराइज किया गया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ये, और इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, जो मोहन कुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना है। तो आइए सीधे चलते हैं गाने की तरफ, फिर उसके बाद बात करते हैं, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अनजान इस फिल्म का, जो एक गैरेज मैकेनिक पर पिक्चराइज किया गया था। इसमें जो कलाकार है राजेंद्र कुमार, वो एक गैरेज के मैकेनिक है और वो किसी अमीर लड़की से प्यार करता है, लेकिन अमीर लड़की के माता पिता उससे प्यार करने नहीं देते, उससे शादी करने से इनकार करते। तो वहाँ पर जो है क्लाइमेक्स बताया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को हम लोग पूरी तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने सुनाया आपको। और कई बार स्वच्छता की बात चलती है तो स्वच्छता पर किसी ने एक मैसेज लिख के भेजा है 7219190055 पे, ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों से थैलिया तक उठा लेते हैं। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। अबीबा जी, अगला गाना कौन सा है आपके गिटारे में?
2: अगला गाना जैसे मेरे पास है रिमझिम के तराने लगी आई बरसात, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप बरसात का रियल मजा लेने चाहते हैं तो महलों में घरों के अंदर ना बैठे, अगर आप बाहर आके सड़क पे निकल जाए या अपनी छत पे खड़े हो जाए तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो इसमें टिपटिपाने की आवाज और जो बारिश के बरसती जो बूंदे हैं उसकी आवाज, उसमें आप कितना एंजॉय करते हैं ये आप गाने में महसूस करते हैं, रिमझिम के तराने लेके आए बरसात।
1: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। ये काला बाजार जो 1960 में फिल्म आई थी, इसे देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था और देवानंद के भाई साहब जो विजय आनंद साहब है उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था और देवानंद साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। तो इस फिल्म के कलाकार देवानंद तो थे ही और साथ में बैदा रहमान, मोहम्मद रफी, चेतन आनंद ने भी इसमें कुछ झलकियां इनके देखने को मिलती है। तो आइए, इस फिल्म का ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत गाना है, भी आप सुनने वाले हैं। शैलेंद्र साहब का लिखा, गीता दत्त, मोहम्मद रफी साहब का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत सजा। अगला गाना आपके लिए काला बाजार से। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जिम जिम के तराने लेके आई बरसात, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गाना विभा जी आपने सुनाया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही क्या कहते हैं उत्साह और उमंग के साथ उस गाने को सुनकर जो है एक नई खुशी फील कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अभी तो जो पिछला गाना ही सुन के मेरे को मुंह में पानी आ रहा है कि इसको ये मालपुड़े और पकौड़े खाने का मन होता है जब फिल्म जिम की बरसात होती है और इंसान भावुक हो उठते हैं।
1: सही सही बात,
2: और इसमें उमंग पैदा होती है। तो अगला गाना उमंग से भरा है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। तो ये भी बहुत अच्छा गाना है और प्यार का इजहार किया जा रहा है इस गाने में और नेचर को इसमें महसूस किया जा रहा है और बोलों के साथ खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है। आप बहुत एंजॉय करेंगे इस गाने को।
1: जी जी जी, मेरे इस समय इस एल्बम का ये गीत है, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, ओपी नैयर का संगीत हिस्सा ये गाना है और बहुत ही भावुक गाना है और मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए दिल से इस गाने को सुनिए, फिर मिलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, मेरे सनम इस एल्बम का आपने गाना सुना, आशा पारेख, विश्वजीत, मुमताज, प्राण, राजेंद्र नाथ पर पिक्चराइज किया गया था। मेरे सनम का गाना आपने सुना और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और गाना भी उतना ही खूबसूरत था जिसे आपने अभी सुना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: अगला गाना मेरे पास ये भक्ति गीत है, रोम रोम में बसने वाले राम। जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांग। ये पूरी भक्ति भाव से गाया गया गाना है। इस गाने में पूरी श्रद्धा है, आप इस गाने को इस भक्ति के गीत में आप जैसे पूरे उसमें बह जाते हैं। तेरे चरणों की धूल जो पाए वो कंकर हीरा बन जाए। इसके बोल बहुत मीठे होते हैं, आप
1: जिसको
2: हमारे श्रोता इसको बहुत
1: एंजॉय करें। जी, ये एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म आई थी 1968 में, राम महेश्वरी के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और इसका नाम था नील कमल। और ये जो फिल्म है इसमें एक कहानी जो है थोड़ी सी अलग बताई गई है। सीता नाम की एक लड़की होती है जिसे नींद में चलने की बीमारी होती है और फिर इसका कारण जब पूछा जाता है उन्हें तो बहुत जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है वो उसे पिछले जन्म की याद आती रहती है और पिछले जन्म में उसके जो प्रेमी होते हैं उसकी याद में वो रात में चलने लगती है। तो इस तरह की कहानी इसमें बताया गया है, नील कमल। शायद आपने देखी होगी तो आपको कहानी पूरी याद आ गई होगी। तो चलिए, इस फिल्म का जो आपने गीत याद कराया विभा जी, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं इस गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। वैसे इंसान के जीवन में काफी चीजें जो है, अगर हम लोग कहते हैं कि जितना सोचो जितना समझो उतनी नई बातें इसमें आ जाती हैं। इंसान को पूरी तरह से अगर एक दुकान की तरह देखे तो उसमें जुबान उसका ताला है, और जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। जी हाँ साथियों, जब भी हम लोग बोलते हैं हमारे बोल लोगों को बता देता है कि आपका व्यक्तित्व किस तरह का है। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है बोलो तो तोल के बोलो, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि बोलो तो बस मीठे बोल ही बोलो। आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी कैसे हैं आप?
2: जी मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरह से सुन रही हूँ। जैसा आपने कहा बोलो तो मीठे बोलो, बड़े सोच के बोलो, और ये इसमें बहुत सच्चाई है। ये बोल ही है जो हमारा दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। और बोल ही है जो हमेशा याद रह जाते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, पर्सनालिटी बदल जाती है, जो हमारे बोल है ये कहीं ना कहीं जाके अंदर छू जाते हैं कहीं। तो अगला गाना मैं मस्ती भरा, थोड़ा रोमांटिक गाना है, थोड़ा नहीं खूब रोमांस से भरा हुआ ये गाना, इसी से फिल्माया गया है। रुख तेरा मस्ताना प्यार मेरा ना, भूल कोई हमसे ना
1: हो जाए। चलिए रूप मस्ताना तो कहीं न कहीं मुश्किलें आ जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। ये राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर पिक्चर है इसकी आवाज। बहुत ही पॉपुलर गाना है, आराधना इस एल्बम का है, और इस फिल्म की कहानी बड़ी ट्रेजेडी वाली बताई गई है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की प्रेम कहानी को बताया गया, और राजेश खन्ना हवाई जहाज चलाते हैं, आर्मी ऑफिसर है, लेकिन दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो शर्मिला टैगोर अकेली रह जाती है, और फिर उसके साथ जो कहानी बनती है अपने बेटे को बड़ा करने का और उसे आर्मी ऑफिसर बनाने का जो सपना उन लोगों ने देखा था प्रेम कहानी में, तो उसे सच बनाने में उनकी पूरी तपस्या लग जाती है। कई मुश्किलें आती हैं, सारी मुश्किलें, इवन उन्हें दो बार

यात्रा है। इस गाने को सुनते हैं, बहुत ही मस्ती भरा गीत है। जैसे विभा जी ने कहा, आप सुना है वीडियो फुलेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया विभा जी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और ख्वाबों के सफर में मस्ती भरा गीत आपने सुना। और कहते हैं ये वो चीज है जो हमने मुफ्त में मिलती है, वक्त, दोस्त और रिश्ते, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। आप सुना है रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
2: अगला गाना मेरे पास है, जैसे कि आपने कहा कि जब ये खो जाते हैं ये रिश्ते या दोस्त, तो हम उनको ढूंढते हैं और ये भी अपने रूठे हुए दोस्त को ही मना रहे हैं। राज कपूर कह रहे हैं, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, नजरों में तेरे में बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मगर का। तो ये नशे में चूर है, हाथ में शराब की बोतल है और साथ में मूतन को मना

0: आप सुन रहे हैं रेडियो बूंदी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुना रहे हैं मीबा जी, थैंक यू सो मच। और अब आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे हैं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंचे हैं। और कहते हैं सबको पता है कि मौत आनी है एक दिन, फिर भी बेखबर सब यूं ही जिए जा रहे हैं। औरों को तो नसीहत देते हैं खुश रहने की, और खुद है कि लहू के घूंट पिए जा रहे हैं। जी
2: मेरा ये अगला जो गाना है ये भी जिंदगी की सच्चाइयों पे ही है। रिश्तों के सारे मंजिल चुपचाप देखता, ये जिंदगी की सच्चाई पे ये गीत है। कहीं बहुत प्यार है तो कहीं खंजर भी है, बस इसी सच्चाई का रूप को बयान करते हुए ये गीत गाया गया है। वो रह गुजर जो मंजिल की इब्तिदा थी, उसको मैं अब पलट कर चुपचाप देखता हूँ।
1: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने याद कराया है। और ये गजल जो है कुछ दिन में कहा इस एल्बम से है। और मीबा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर, बहुत ही खूबसूरत गाने आपने आज के इस एपिसोड में सुनाए। और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही एंजॉय किया होगा उन्होंने आज के इस एपिसोड को। और कहते हैं कि रूठे हुए अपनों को मना लूंगा एक दिन, रूठे हुए अपनों को मना लूंगा एक दिन, दिल का घर फिर से बसा लूंगा एक दिन। लगने लगे जहां से हर मंजर मेरा मुझे, ख्वाबों का वो जहां बना लूंगा एक दिन। अभी तो शुरुआत हुई है इस सफर की, बेरंग जिंदगी में रंग सजा लूंगा एक दिन। तो थैंक यू सो मच मीबा जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर बहुत खूबसूरत गाने सुनाने के लिए। और हमारे सभी श्रोताओं को जाते जाते हम लोग रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ मैं, ये गजल आप सबको सुना रहे हैं, आप सबके लिए छोड़े जा रहे हैं। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, ऐसी शुभकामना करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खमागनी, खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने एकताइत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जीवन के रंग अनेक,
1: जिसमें होगी बातें
2: कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर,
1: और कभी कभी बातें होगी
2: छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो से।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: मत दुआ दे कि मैं बददुआ हूँ, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूँ।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल, हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के

0: नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स की इन दिनों हम बात कर रहे हैं। देख रहे थे कि किस तरह से खुशी कभी भी छूमंतर हो जाती थी, लेकिन अब जब अपने पर काम करना शुरू किया और बहुत सारे एस्पेक्ट समझे, अब समझ में आया कि वो खुशी

0: जो मेरे अपने ही अंदर है, ना मुझे उसे कहीं खोजना है, ना कहीं तलाशना है, ना बाहर ढूंढना है, ना अंदर ढूंढना है, बल्कि वो है, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैं हमेशा रह सकती हूँ। हैप्पीनेस, पीस, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में रहना, इस सिचुएशन में, इस स्टेबिलिटी में रहना कैसे संभव है, ये हमने समझा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा राजयोग का, मेडिटेशन का। आज अपनी पहचान के बाद कुछ और बातें जानते हैं कि किस तरह से उस पहचान को लगातार अपने साथ, उस याद को लगातार अपने साथ कायम रख सकते हैं कि मैं कौन हूँ, इस बात को हम हमेशा याद रख पाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहाँ ये बात पता चले कि मैं कौन हूँ, वो चैतन्य शक्ति जो कि मास्टर हूँ इस पूरे शरीर की, अमेजिंग ना। इट एक्चुअली जस्ट गिव्स मी अ वेरी डिफरेंट फील अबाउट माई सेल्फ
1: एंड दिस इज पावर। यू नो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे हमारे यूथ बच्चे बार बार ये कहते सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ये पतेगा सेल्फ कौन है। सेल्फ का आंसर मिल गया तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप बिल्डअप हो जाता। इसलिए जहां भी सेल्फ वर्ड आता तो सबसे पहले मैं कौन हूँ वो पहचानना, और ये जब मैं की पहचान मिली तो मैं से रिश्ता भी जुड़ना लग गया। यू नो टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, दैट्स वाई इट्स मेडिटेशन इज फर्स्ट रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। अपना ध्यान रखना, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ। यू हैव टू क्रिएट दिस थॉट, आई एम अ प्योर बींग, पीसफुल बींग, सी हाउ इट फील्स। और ये एक दिन में, दो दिन में, दस दिन में होने वाली चीज नहीं है, दिस टेक्स टाइम। जब हम सेंटर पर आते तो हमें रोज वो प्रोसेस होता याद दिलाने का,
0: जो आपने कहा था कि याददाश्त कहीं गुमी हुई है।
1: अब बिना यहाँ आए और बिना रोज स्टडी किए मुझे दो चार दिन में वो बात भूल जाती है, क्योंकि फिर वही एनवायरमेंट में जहाँ सब लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं, मेरा अपना संस्कार तो है ही बहुत पक्का, तो अगेन आई गो इनटू दैट। लेकिन रोज आना सेंटर पे वो याद दिलाने का प्रोसेस बनता है, फिर वो याद धीरे धीरे नेचुरल होती जाती है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी एवरी डे। इसीलिए रोज हम जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बातें रोज सेंटर पर स्टडी करते हैं, उसका फोकस ये होता है रोज मैं कौन वो याद रखना और मेरी क्वालिटीज क्या। और फिर जब ये याद आ जाता तो मैं किसका फोकस ही, हुम आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, क्योंकि इट्स लाइक मैं बैटरी हूँ लेकिन मेरी पावर आज थोड़ी कम हो चुकी है, देन आई कनेक्ट टू द पावर हाउस। देखो जो हमने पहले मेडिटेशंस की बात की, या तो वो ब्रीदिंग टेक्निक है, मंत्र जाप है, थॉटलेसनेस है सारा, या जो कुछ चक्र पर भी फोकस करते, सब लोग किस पर फोकस कर रहे हैं, मैं खुद पर फोकस कर रही हूँ। तो इट इज लाइक अ डिस्चार्ज्ड बैटरी ट्राइंग टू चार्ज इट्सेल्फ, जो कि वो अचीव करते हैं लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा और रिजल्ट उतनी नहीं। तो फिर इसलिए कहते हैं हमें एक घंटा रोज करना, दो घंटा रोज करना, क्योंकि डिस्चार्ज स्थिति में खुद को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक डिस्चार्ज बैटरी अगर पावर हाउस से कनेक्ट हो जाए तो बैटरी डजेंट हैव टू डू मच, सिर्फ बैटरी को जोड़ना है। लेकिन ध्यान ये रखना कि कनेक्शन
0: स्ट्रांग हो,
1: ठीक है। लेकिन लगे कि जुड़ा हुआ है लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो सालों साल भी ऐसे रखेंगे तो वो चार्जिंग नहीं होगी। लेकिन कनेक्शन राइट है, चार्जिंग होनी ही होनी है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए अपनी पहचान के बाद हम उनकी पहचान लेते कि परमात्मा कौन है, क्योंकि आज परमात्मा के बारे में भी हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इतने सारे डाउट्स हैं कि कई बार फिर लगता है कि पता नहीं
0: है भी कि नहीं
1: है भी कि नहीं। तो जिनके एग्जिस्टेंस पर ही डाउट है तो उनके साथ कनेक्शन जुड़ना बहुत मुश्किल है। अब जब हमने अपने को बॉडी समझा, फिजिकल मैटर समझा, तब हमने समझा मेरा पिता भी कौन होगा, फिजिकल ही होगा। यू नो ये एक गलती से फिर अगली गलती हुई कि मैं फिजिकल तो मेरा पिता भी कौन होगा, फिजिकल। तब हमने परमात्मा को कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में ढूंढना शुरू किया। लेकिन जब समझ में आया कि आई एम जस्ट एनर्जी, प्योर कॉन्शियंट बींग, तो मेरा पिता कौन, तो देन ही इज ऑल्सो अनदर कॉन्शियंट बींग। और इसलिए हम कहते आई एम अ सोल, चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम सोल एनर्जी, एंड ही इज द सुपर एनर्जी। अब सुपर किस फॉर्म में, कि आई एम अ पीसफुल सोल, तो ही इज द ओशन ऑफ दैट पीस। ना कि मैं छोटी सी आत्मा हूँ और वो बड़ी आत्मा है
0: और मैंने उसमें समा जाना है। यू नो अगेन दिस इज अ मेजर

0: बिलीफ सिस्टम विच वी एक्चुअली नीड टू सी कि मैं अल्टीमेटली उसी में समा जाऊंगी।
1: ये बहुत सारी हैं, पर वो हमें धीरे धीरे और क्लैरिफिकेशन इस पर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन शायद उन पर कभी रिफ्लेक्शन नहीं किया। यू नो, सुन लिया और तुरंत ऐसे स्वीकार किया, और जो भी हमने सुना उसके पीछे एक एसेंस था, उसके पीछे एक मीनिंग था, लेकिन मीनिंग नहीं पकड़ा। जैसे मैं परमात्मा में समा जाऊं, एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि मैं इतना याद करूं उनको, इतने उनके वो प्यार में लीन हो जाऊं कि जैसे कि मैं उनकी याद में समा जाऊं। लेकिन हमने हर चीज फिजिकल देखनी थी ना, तो मैं उनमें समा जाऊं मतलब क्या कि मैं उनमें समा जाऊं,
0: फिजिकली मैं उनमें समर्ज हो जाऊं।
1: यस, बिकॉज एंड दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। जैसे ही आप सोल कॉन्शियस हैं और आप ये महावाक्य सुनेंगे कि आप मैं परमात्मा में समा जाऊं, तो विल बी वेरी क्लियर कि समा जाना मतलब प्यार में समा जाना, याद में समा जाना। लेकिन बॉडी कॉन्शियस है तो मैं समा जाऊं मतलब मेरी एंटिटी है। आप देखो, अगर मैं समा जाऊं, वी आर सेइंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जहां मैं किसी चीज के अंदर समा गई तो मेरी एंटिटी, मेरी एग्जिस्टेंस फिनिश हो गई। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसको जो कुछ भी आज दिन तक पढ़ा है सब में मीनिंग है, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर उसके मीनिंग को समझना है। जैसे हम किसी को बहुत प्यार से याद करते हैं तो कहते हैं ये तो उन्हीं में खोए हुए हैं। नहीं कहते, जैसे इफ आई सी यू कि आप किसी की याद में बैठे, मैंने कहा ये ना उन्हीं के उसमें खोई हुई है, लेकिन आप थोड़ी उसके अंदर समा गए।
0: इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं, हाँ, कि प्रेम की भी पराकाष्ठा यही कही जाती है कि खुद को हम समर्पित कर दें, खुद को भूल जाएं और उसको, हाँ,
1: लेकिन विद व्हाट, विद थॉट्स एंड फीलिंग्स ना, नॉट के एंटिटी ही फिनिश हो जाए। तो इसलिए परमात्मा के बारे में हमने जितना भी आज दिन तक पढ़ा था उसके पीछे एक एसेंस है, लेकिन शायद उसको हमने उतना क्लैरिटी से नहीं स्टडी किया। तो अगली बार जो भी सुने या पढ़े उसको थोड़ा गहराई से मनन भी करें। तो राजयोग में परमात्मा ही डायरेक्ट आकर जब हमें खुद अपना परिचय देते हैं, क्योंकि आज दिन तक हमने सुना कि एक वो समय आएगा व्हेन ही विल हैव टू कम हिमसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। इनफ वी हैड दैट everyone else has introduced him. So when everyone else introduced him, they were right, but yet they were little different. And kyun wo thode thode alag the? Kyunki wo har ek apne perspective se, apne rishte ke anubhav se suna rahe the. Lekin uska direct aur accurate parikshay kaun dega? Jab Parmatma khud aakar wo denge. And har scripture mein, chahe wo Srimad Bhagavad Gita hai, Bible, Quran, every scripture we have read and heard, ki ek aisa samay aayega when he himself will have to come, and wo samay hoga jab unrighteousness, irreligiousness is at its peak. So we need to ask ourselves, kya ye wo samay ho sakta hai?
0: Dharm ki punarsthapna ki jo baat ki hai,
1: kyunki jab itni glani ho chuki hai, dharm ki glani par us srishti par aate hain, तो शायद ये वही समय है। आई नीड टू आस्क माई सेल्फ। तो परमात्मा इस समय आकर अपना परिचय देते कि जैसे मैं आत्मा हूं तो वो भी आत्मा है, लेकिन परम आत्मा है क्योंकि वो उन क्वालिटीज में परम है, सुप्रीम है, वो परम धाम का रहने वाला है। परम धाम अर्थात इस सृष्टि से पार, स्पेस, यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट वी कैन सी एंड रीच, उसके बियॉन्ड जो हम आत्माओं का रहने का स्थान है, जिसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं। आज भी देखो, जब हम दर्द में होते हैं, दुखी होते हैं, भगवान को याद करते हैं तो नजर कहाँ जाती है? ऊपर। क्लैरिटी नहीं है क्या है, लेकिन कुछ तो है, वो स्मृति है, तो उधर ध्यान जाता। तो परमात्मा हम सबको आकर पहले अपना परिचय देते कि मैं कौन आत्मा, फिर अपना परिचय देते कि परमात्मा कौन, घर का परिचय देते, परम धाम का मैं रहवासी हूँ। उससे और भी बहुत सारी फिर क्लैरिटी आती, क्योंकि जब हम परमात्मा को याद करें तो कहाँ याद करें? यू नो, हम तो इतना कंफ्यूजन है, हमने कहा कि परमात्मा तो हर जगह है, हर एक के अंदर है। देखो, इतना जब कंफ्यूजन हो जाएगा तो परमात्मा को याद करना बहुत डिफिकल्ट है। सो परमात्मा निराकार, इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट, जिनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद आकर अपना नाम बताया कि उनका नाम है शिव। और जब शिव कहते, इट मीन्स पॉइंट, एंड शिव मीन्स पीस, एंड ही इज आवर फादर। सो हम उनको प्यार से बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा आकर खुद

0: अपना परिचय देते, वो शांति के सागर हैं, प्योरिटी के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। और हम में और उनमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम सब आत्माएं शरीर लेते हैं और हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में आते तो हमारी बैटरी डिप्लीट हो जाती, लेकिन वो परम आत्मा इस सृष्टि चक्र पर, इस जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते, तो उनकी जो पावर है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इसीलिए वो ही एक हैं जो हमें इस चक्र से फिर
1: बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनफैक्ट जो चक्र में नहीं होगा
0: वो ही
1: उसे ही सोल्यूशन भी पता होगा।
0: एब्सोल्युटली,
1: वी आर प्लेइंग अ गेम ऑल्सो,
0: जो नहीं है उसको
1: सब कुछ पता है कि कैसे है।
0: तो वो हमें चक्र का, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान समझाते और हमें इस साइकिल से फिर कैसे हमने अपना पाठ बजाना है ये भी सिखाते। तो परमात्मा को जब हम पहचान लेते कि वो कौन है और उनका रोल क्या है, आज दिन तक परमात्मा के रोल पर भी बहुत क्वेश्चन मार्क है। जब भी तकलीफ में है तो कहते भगवान मेरी प्रॉब्लम ठीक कर।
1: अच्छा, इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स दे से कि तूने ही दिया था, तूने ही ले लिया। यू नो, कितनी बार हम अपने मतलब इस तरह से करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
0: तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो सिचुएशंस है मेरी, परमात्मा का रोल ये नहीं है कि आकर मेरी सिचुएशन को ठीक कर दे, क्योंकि मेरे सामने जो सिचुएशन आई है वो तो मेरे ही एक्शंस का रिजल्ट है, जिसको हम कहते हैं कार्मिक अकाउंट। लेकिन परमात्मा का रोल क्या है कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करूं, पावर हाउस से वो पावर लो, अपने अंदर वो शक्ति भरो और उस शक्ति से अपनी परिस्थिति को फेस करो। तो जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़े तो इसलिए नहीं कि हे भगवान मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दे, लेकिन परमात्मा से वो शक्ति ले, वो भी मांगना नहीं कि हे भगवान मुझे शांति दे दे। पिता है तो पिता से बच्चे को मांगना थोड़ी पड़ता है, जो पिता का है वो बच्चे का है। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वी विल नॉट से ओ गॉड गिव मी पीस, ओ गॉड गिव मी लव, नो, आई द सोल आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ पीस, ये थॉट क्रिएट करते ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली
1: पावर विल
0: फील। मैं कौन हूँ ये आंसर चाहिए था, तो मैं कौन हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ पीस एंड रेसिडेंट ऑफ लैंड ऑफ पीस। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर का बच्चा, शांति धाम का रहवासी। अब गुस्सा, गुस्सा कहाँ से, क्योंकि हमारी सारा दिन जो पर्सनालिटी है वो किस बेसिस पर है, मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। यू नो, कोई बहुत
1: रोल, बहुत बार हमारा बिहेवियर होता है, यस, यू नो,
0: आप कौन है। यू नो, जब कोई गलती हो जाए,
1: कितनी बार हम बोलते हैं आपको पता है कि मैं किसका बेटा हूँ।
0: और पेरेंट्स भी जैसे बच्चों को कहते ऐसे नहीं करना, आपको पता है आप किस खानदान के हो, आप किसके बेटे हो, तो आप किसके बच्चे हो ये जब स्मृति में आएगा तो पर्सनालिटी अपने आप चेंज हो जाती। तो आज से ये स्मृति में रखना है, मैं कौन हूँ, आई एम अ प्योर सोल एंड चाइल्ड ऑफ दैट ओशन ऑफ प्योरिटी, चाइल्ड ऑफ दैट सुप्रीम बींग। सारी दुनिया उनको याद करती है, क्यों, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। मैं जो अपवित्र बन चुकी हूँ, डिप्लीट हो चुकी है ना, आज दिन तक हम कहते आए कि पतित को पावन बनाने वाला, समझ में नहीं आया लेकिन कि पतित को पावन बनाना मतलब क्या, कि मैं आत्मा जो डिस्चार्ज हो चुकी हूँ, इम्प्योरिटीज जो मेरे अंदर आ चुकी है, उस पावर हाउस से कनेक्ट होने से वो प्योरिटी मेरे अंदर से आ।
1: अच्छा, कितनी बार पता है हम अपने आप को जब समझ भी रहे होते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, यू नो, मतलब कई बार चीजें हमें दिख रही होती हैं कि हमसे अच्छा नहीं हुआ, ये हमसे गलत हो गया है, अब पता तो चल नहीं रहा कि ठीक कैसे करना है, तो वी से कि ओके आई एम लाइक दिस, देर इज नो बडी, यू नो, तो मेरे को कुछ मतलब मैं ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने उसको ठीक
0: करना कैसे है, वो नहीं पता। तो इसलिए राजयोग से जब हम ये बेसिक चीजें भी सीख लेते हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होना मुश्किल नहीं है। अब इस कनेक्शन को, अब एक रिलेशनशिप जुड़ गया है, अब इस रिलेशनशिप को क्या करना है, रोज यूज करना है, यूज करना इन द सेंस, जैसे ही उसको याद किया तो उसकी जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली मेरे, आप अभी भी देखो, आप किसी को याद करो, आप यहाँ बैठे अपने बच्चे को याद करो, तो वो प्यार, उसका एक्सपीरियंस आपको अभी हो जाएगा। आप किसी को याद करो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा ठीक नहीं है, अभी बैठे बैठे दर्द एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो यहाँ नहीं है, लेकिन सिर्फ याद, इसका मतलब याद के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उस अनुभव को अभी क्रिएट करती, और अनुभव क्रिएट हुआ मतलब आपका संस्कार
1: बनना शुरू
0: हुआ। अभी आपने प्यार का अनुभव किया, आपका प्यार का संस्कार क्रिएट हुआ। आपने दर्द का अनुभव किया, आपने दर्द का संस्कार क्रिएट किया। अब आप पवित्रता के सागर को याद करते हैं तो आपका संस्कार कौन सा क्रिएट होगा? प्योरिटी का। आप शांति के सागर को याद करते हैं, संस्कार क्रिएट हुआ शांति का। दिस इज मेडिटेशन, इट्स वेरी सिंपल।
1: बट वी आर नॉट एबल टू सस्टेन इट, यू नो, लाइक ये क्यों नहीं हो पाता? आई जस्ट, यू नो, अब मैंने एकदम से सडनली आपसे बात करते करते ये किया, कोशिश की, तो बच्चे को याद करना है तो वो एकदम से आ जाती है विजन, या जिसने मुझे थोड़ी पेन दी हो उसकी विजन भी एकदम से आके आप कर सकते हैं। जब आपने कहा कि हम शांति के उस सागर को जिसको हम अभी तक ढूंढ रहे थे, हमारा पिता आज पहचान मिली, उसको याद करने की कोशिश करो, इवन इफ परमधाम की भी बात करते, वो सस्टेन नहीं होता,
0: वो ट्रांजिएंट हो जाता है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। अभी सोल कॉन्शियसनेस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनता जाएगा। सी, इट्स टू वे थिंग। एक है कि ये कनेक्शन तब स्ट्रांग बनता जाएगा जब हम सोल कॉन्शियस है, लेकिन दूसरा है कनेक्शन जोड़ते जाएंगे तो सोल कॉन्शियस होना इजी होता जाएगा। सो वी स्टार्ट डूइंग बोथ द थिंग्स, कि सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें सारा दिन में, और समय निकालकर उस पावर हाउस के साथ कनेक्शन,
1: और इसके साथ जो अटैचमेंट है उसे छोड़ते जाएंगे ना।
0: एक्चुअली छोड़ना नहीं पड़ेगा,
1: हाँ, वो अपने आप हो जाएगा ये
0: अपने आप। देखो, मुझे ये नहीं याद करना है आई एम नॉट द बॉडी, ये नहीं याद रखना है। हाँ, ये याद रखना है कि आई एम अ प्योर सोल। तो फिर ऑटोमेटिकली, अब डिटैचमेंट की भी जो हमने बात की, तो डिटैचमेंट क्या था? कुछ छोड़ नहीं देना है, लेकिन ये याद रखना है कि ये मैं नहीं हूं। अटैचमेंट क्या होता है? जब हम किसी चीज के साथ इतना जुड़ जाते कि उसी में मेरा अस्तित्व चला जाता एंड मेरी अपनी आइडेंटिटी खत्म। अब मैं आत्मा हूं, दिस इज डिटैचमेंट। ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर का रोल है, ये रिस्पॉन्स, दिस इज डिटैचमेंट। अब ये स्थिति में रहकर अगर यहां कोई हर्ट भी होता, जब मैं मां हूं, सी, तो अगर बच्चा हर्ट होगा तो माँ हर्ट होगी, लेकिन मैं आत्मा हूँ, दिस इज डिटैचमेंट। अब बच्चा अगर हर्ट होगा तो मैं आत्मा पावरफुल हूँ, मैं हर्ट नहीं होंगी, और क्योंकि मैं नहीं होंगी
1: बच्चे को ऊपर
0: पावर करते हैं। इसलिए डिटैचमेंट फोर्सफुली करने जैसी चीज नहीं है। अगर यू नो कई बार जबरदस्ती,
1: हाँ एक्चुअली, लेकिन विजुलाइज ऑल्सो कि जब ऐसे है तो उसको ऐसे खींचने की जरूरत नहीं,
0: वो डिटैचमेंट नहीं होगा, वो इनसेंसिटिविटी हो जाती है, वो जबरदस्ती का विड्रॉवल हो जाता है, वो नहीं है। डिटैचमेंट मीन्स सोल कॉन्शियसनेस। हम सोल कॉन्शियस होते जाए, हम ईगो जो हमारा है वो खत्म होता जाएगा, क्योंकि ईगो क्या है? अटैचमेंट टू ऑल दीज इमेजेस। अब सोल कॉन्शियस इज ऑपोजिट ऑफ ईगो, यू नो, सेल्फ एस्टीम ऑपोजिट ऑफ ईगो। तो जितना सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करेंगे, ईगो खत्म होगा। ईगो खत्म हुआ तो सारे वाइसेस वो सब अपने आप खत्म होते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: सर शिवानी, एक यहां बात पूछना चाहूंगी कि जब आपने कहा कि अटैचमेंट किसी भी पर्टिकुलर चीज से ना करके, तो अटैचमेंट कॉन्शियसनेस में रहते हुए अगर मैं सुप्रीम के साथ अटैचमेंट करती हूँ, वही वाली अटैचमेंट जिसकी मैं आदि हूँ, सो इज दैट ऑल्सो राइट?
0: या बिकॉज इन दैट देयर विल बी नो पेन। सी, अटैचमेंट वर्ड तब आ रहा था जहां हमने पहले भी देखा कि अटैचमेंट अगर किसी के साथ है तो प्यार है लेकिन हर्ट भी है, यू नो, क्योंकि उस आइडेंटिटी अपनी खो दी। लेकिन जब परमात्मा के साथ जो रिश्ता जुड़ता उसमें प्यार जुड़ता है। अटैचमेंट वर्ड हम उसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि परमात्मा के साथ कोई भी रिश्ते में या कोई भी इंटरेक्शन में आपको हर्ट की अनुभूति नहीं होने
1: वाली। लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी उसमें भी खोता हूँ?
0: मैं खोऊंगी नहीं क्योंकि अटैचमेंट नहीं होने वाली है। सी, अटैचमेंट जब हो जाती है, वेयर यू लूज योर आइडेंटिटी इन टू समथिंग, तब आपको हर्ट होने, सी, एक्सपेक्टेशंस होंगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तब हर्ट होगा। लेकिन परमात्मा के साथ रिश्ते में ना एक्सपेक्टेशंस जो आप रखेंगे, बट प्रोवाइडेड यू कीप द राइट अंडरस्टैंडिंग कि परमात्मा का रोल क्या है। हम ये कहें कि परमात्मा मुझे नौकरी दे दे, परमात्मा मेरा बिजनेस में प्रॉफिट करा दे, नो, विद नॉलेज कि परमात्मा का रोल है मुझे एम्पावर करना, फिर मेरा रोल है उस पावर के साथ अपने कार्मिक अकाउंट्स को हैंडल करना।
1: यस, यू नो, एंड कहीं ना कहीं मुझे विजन, मेरी विजन को क्लियर करते जाना, विजडम लेकर मेरे को आगे बढ़ना,
0: एंड आई विल बिकम वेरी क्लीन हियर, क्योंकि चार्जिंग होती जा रही है। फिर जो हमने बात की कि वैल्यूज पर चलने की ताकत चाहिए, आज वैल्यूज पता है लेकिन चलने की ताकत नहीं है। क्यों? पावर नहीं है, लेकिन परमात्मा से वो कनेक्शन जुड़ा आत्मा शक्तिशाली बनी, आत्मा शक्तिशाली बनी उसको किसी बात का डर नहीं लगता, डर नहीं लगता तो वैल्यूज पे चलना
1: आसान हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, बिकॉज दैट्स द राइट वे वी नीड टू डू, यू नो वी हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट इट, हम हमेशा चाहते थे ऐसे करना लेकिन अब वो संभव हो पा रहा है। तो शिवानी, हमने राजयोग की बात की, हम इस पूरी श्रृंखला में

0: खुशी की बात की है, जो कि हम हर बार कई बार सोचते भी हैं, लोग बोलते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, लेकिन डेफिनेटली
1: जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि हम आनंद के सागर के बच्चे हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट ओशन ऑफ ब्लिस। तो फिर जिसके बच्चे हैं तो जन्म सिद्ध अधिकार तो है, खुशी है,
0: बिल्कुल। और वो अब हमें इस पूरी श्रृंखला में चलते चलते ये भी समझ में आया कि वो है ही हमारे पास, हमारा अपना अपनी वैल्यू है, अपना संस्कार, अपना अनुभव है। सो डेफिनेटली इट्स वेरी इम्पोर्टेंट शिवानी कि हम किस तरह से परमात्मा को याद करके कैसे उनकी याद में बैठे और कैसे वो ताकत लें उनसे, कैसे
1: परमात्मा को याद करना वैसे ही होता जैसे किसी और को भी याद करते, सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये कि जब भी किसी और को याद करते तो फिजिकल फॉर्म में याद करते, अब हम उस परम आत्मा को याद कर रहे हैं। तो पहले मुझे किस स्थिति में बैठना पड़ेगा, आत्मा हूँ, जब तक मैं आत्मा हूँ उस स्थिति में नहीं बैठे तो परमात्मा नहीं याद आएगा। आज दिन तक परमात्मा को याद करना क्यों मुश्किल हो रहा था, याद करने बैठा कौन था,
0: मैं
1: माँ बैठी थी, तो माँ को कौन याद आएगा, बच्चा याद आएगा, परमात्मा नहीं याद आएगा। लेकिन आत्मा जब बैठेगी याद करने कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को परमात्मा याद आएगा।
0: आई थिंक सिर्फ परमात्मा ही फिर याद आएगा,
1: आपसे निकले
0: है ना, अब एक्चुअली ऐसा हो पाएगा कि हम सिर्फ परमात्मा,
1: जैसे ही आप सोल कॉन्शियस हो गए आपको परमात्मा ही याद आएगा। और याद करना मतलब मैं किसका बच्चा हूँ, और उस घर में जाना, यू नो, विद द पावर ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। जैसे अगर आप यहाँ बैठे अपने बच्चों को याद करो तो कहाँ याद करोगे, वो घर में बैठे हैं, तो तुरंत आपके सामने क्या आता जाएगा, वो घर में है, ये कर रहे हैं, आप उनको वहां देखेंगे तो वहीं याद करोगे ना। अगर मॉर्निंग में याद करते तो कहाँ याद करते, वो स्कूल में है, ऑटोमेटिक है। तो अब हम परमात्मा को याद करें तो कहाँ याद करें, वो कहाँ है, उस घर में है। और फिर हम भी बुद्धि से उस घर चलते, जैसे हम यहाँ बैठकर इस घर जा सकते, अब हम यहाँ बैठकर वो घर चल सकते। और जैसे ही हम ये थॉट्स क्रिएट करेंगे, परमात्मा की याद आएगी, तो उनकी पावर प्योरिटी हमारे अंदर आ जाएगी। करके देखें,
0: बिल्कुल करते
1: हैं। जस्ट लेट्स सिट बैक, कंफर्टेबल होकर बैठे, हम कुछ मुश्किल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने पिता को याद करने बैठे हैं, उनसे वो कनेक्शन जोड़ने बैठे हैं जो शायद काफी समय से टूट गया था। अपने आप को देखें इस शरीर में, शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर पीसफुल बींग, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। आई टेक दिस मोमेंट टू गो होम। अपने आप को देखें, ऊपर अपने घर की तरफ चलते हुए देखें उस सितारे को, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्रॉसिंग the sun, moon and the stars. I'm going home, my home, मुझ आत्मा का घर, the land of silence, peace and purity. चारों तरफ golden red light. आज दिन तक इस घर को याद किया था, आज मैं उस घर में आकर पहुंची हूं, अपने पिता के पास आकर पहुंची हूं। मेरे पिता जस्ट लाइक मी, पॉइंट ऑफ लाइट, आज दिन तक ढूंढ रहे थे, वेरी वेरी पावरफुल। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, मन पे कोई भी बोझ, कोई क्वेश्चन है, अपने पिता से करें, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूं। एज आई फिल माई सेल्फ विद द पावर ऑफ प्योरिटी एंड पीस, धीरे धीरे मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंचती हूं।

0: coming back to the center of the forehead. With this consciousness, I am a peaceful soul, child of that ocean of peace. Peace is my nature, it's my personality. Happiness, जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, this is my original nature. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much, Sister Shivani.
0: Om Shanti.
1: अगर आपको याद हो, जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी, हमने आपसे कहा था कि आप खुश हैं, और हमारे एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम सामने आया था, आज के इस वक्त में कौन खुश रह सकता है? ऐसे ही बहुत से संस्कारों और बिलीफ सिस्टम्स पर हमने अपनी जिंदगी की वो खूबसूरत खुशियां और वो शांति, प्रेम, वो जो हमारी अपनी इनेट क्वालिटीज हैं, उन्हें गंवा दिया है. कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ है, वो हमारा पिता, हमारा साथ देने को तैयार है, हमें शक्ति देने को तैयार है, हम फिर उन खुशियों को लौटा सकते हैं. वॉल इज इन आवर कोर्ट. अगर आपके पास कोई सवाल, कोई मन में बात उठ रही है, कोई सजेशन है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क करें.
2: हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org.
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन एक ऐसी शक्ति लेकर आज हम सब अपने साथ हैं. थोड़ी देर मनन करें. आज जो हमने सीखा इस पूरी श्रृंखला में, जो हमें बात समझ में आई है, ये सारी खुशियां, ये सारे एहसास हमारे अपने हैं, खुद क्रिएट किए जा सकते हैं. किसी भी पल, किसी भी सिचुएशन में मैं अपनी स्टेबिलिटी कायम रख सकती हूँ. इस ताकत के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

टू बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। कहते हैं कि मनुष्य आदतें जब बनाता है तो वो अपनी सहूलियत के लिए बनाता है और कभी भी उसे बदलने की हिम्मत या क्षमता रखता है। लेकिन आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसमें ये भी बात नजर आ रही है कि कहीं न कहीं हम अपनी उन्हीं आदतों के अधीन होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं आदतों ने हमें ओवरटेक कर लिया है, ओवरपावर कर लिया है और हम खुद को, स्वयं को उसके आगे हारा हुआ मानते हैं और फिर उसकी स्वाधीनता स्वीकार करके खुद उसके अधीन हो जाते हैं या फिर कहें तो उसके आदि हो जाते हैं। लेकिन हमारी इस श्रृंखला में हमारी ये कोशिश है कि हम उन कारणों को जानें कि क्या ऐसा हो जाता है कि हमारी वो आदतें हम पर हावी हो जाती हैं और क्या हम उन आदतों को छोड़कर नई आदतें यानी पॉजिटिव जो हैबिट्स हैं उन्हें अपना सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ खास मुंबई से हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हर बार की तरह हमारी हमसफर है रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत से हमने ऐसी आदतों के बारे में बात की है इस पूरी श्रृंखला में। अभी तक हमने बहुत मोटी मोटी उन व्यसनों की बात की, उन एडिक्शंस की बात की जिनसे आज हर व्यक्ति जूझता नजर आता है और कई बार हमने ये भी देखा कि एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि यही सच्चाई है। ना सिर्फ अगर हम नहीं जूझ रहे तो हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो इस आदत का शिकार होता है, चाहे वो स्मोकिंग की बात की थी हमने, चाहे वो हमने ड्रिंक्स की बात की थी, इवन ड्रग्स तक की भी बात हम कर चुके हैं। जो बड़ी बात सामने आई थी वो यही थी कि कहीं ना कहीं डिसीजन हमने अपने हाथ से छोड़कर और उसके आदि बनते जा रहे हैं। पीयर प्रेशर भी उसमें बहुत बड़ा कारण था, हमारे जो अपने हैं वो भी सहायता कर सकते हैं इसे छोड़ने के लिए। स्मोकिंग की बात की थी, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे पर्यावरण पे थे। निकोटीन या तंबाकू या स्मोकिंग का जो एक और एस्पेक्ट है वो है गुटखा। 2 रुपए का वो पाउच गुटखा हर पॉकेट में हर व्यक्ति के पास मिल जाता है, किसी भी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स होते हैं। गुटखा को हम क्यों एडिक्शन नहीं मानते हैं?
1: ऐसे तो सबसे बड़ा एडिक्शन है और इनफैक्ट ट्रेजेडी जो है कि भी भारत में पहले भी था, अलग अलग रूप से तो हम स्मोक करते थे लेकिन मेजर जो है वो वेस्टर्न कल्चर हमारे पास आया है कि हम ज्यादा वो जैसे स्मोकिंग करते थे ऐसे करने लगे। लेकिन देखो विदेशों में कोई भी गुटखा नहीं खाता है, चूइंग टोबेको इज ऑलमोस्ट जीरो इन अदर कंट्रीज, तो यही बताता है कि हम कितने ज्यादा ही आदी हुए। और गुटखा है वो उतना ही डेंजरस है
0: यहाँ, क्योंकि ये मिथ्स में बहुत रहते हैं हम लोग कि गुटखा तो जो है वो स्मोक तो नहीं कर रहा या ड्रिंक तो नहीं कर रहा, गुटखा ही तो खा रहा हूँ। लेकिन क्या है, क्या होता है जब ये तंबाकू मुंह में जाता है?
1: वो भी तंबाकू ही है तो उसमें भी निकोटीन है, वो जो सारी है एक्सेप्ट द कोल टार कार्बन मोनोक्साइड, वो जो चीजें हैं वो गुटखे में नहीं है। और दूसरी हार्मफुल इफेक्ट है गुटखे में कि जब उसे चबाते हैं तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है और व्यक्ति मुंह को खोल नहीं पाता है। शुरू में तो उसे खोलने में दिक्कत होती है, फिर शायद 3-4 इंच खोल पाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि जो एक उंगली भी अंदर डाल नहीं सकते, यहां तक कि खाना भी ऐसे खाते कि भी चम्मच में लेंगे मुंह में डालेंगे उल्टा करेंगे फिर सीधा करके फिर निकालनी पड़ती है। आप अगर उनकी कंडीशन देखो तो आपको सचमुच एक सिंपथी होगी।
0: बिल्कुल, मतलब इट्स आई थिंक द मोस्ट हॉरिफाइंग एस्पेक्ट अगर जिंदगी का देखें तो। सिस्टर शिवानी, ऐसा क्या है मतलब हम इसको स्वीकारते ही नहीं? देखिए, हमने स्मोकिंग की बात की थी तो चलिए हम फिर भी मान लेते हैं, घर वाले भी मान लेते हैं, हम खुद भी कहीं कहीं अगर मैं स्मोक करती हूँ मुझे पता होता है कि हाँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इवन ड्रग्स की बात की थी, ड्रिंक्स के मामले में भी हमें मालूम होता है। गुटखा को हमने इतना आसान क्यों मान लिया है? इवन विमेन भी जो स्मोक

0: और ड्रिंक्स के बारे में फिर भी दो बार सोचते हैं, वो भी गुटके के तीन दाने लेने में कोई और उसे फांकने में कोई अपनी परेशानी का सबब नहीं मानती हैं। क्यों इसे हम एक एडिक्शन के रूप में नहीं देखते हैं?
1: एडिक्शन नहीं भी देखें लेकिन हार्मफुल तो है ही ना, तो एक हार्मफुल पदार्थ हम अपने अंदर क्यों डाल रहे हैं? कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट में वो जो परखने की शक्ति है राइट और रॉन्ग वो या तो कम हो चुकी है या रॉन्ग पता होने के बावजूद भी जैसे कि हम बहुत बेपरवाह हो चुके हैं अपने बारे में। हम क्या नहीं जानते, हम सब कुछ तो जानते हैं। हमने नॉनवेज की बात की थी, हमने ये सारी जो बातें की हमको सब पता है कि इसके क्या नुकसान है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने अंदर डाल रहे हैं। वैल्यू फॉर माई ओन लाइफ, आई डू नॉट वैल्यू माई ओन लाइफ, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू न जानने के कारण हम सोचते हैं जितना है उसको कम से कम इस चीजों से इंजॉय करें। ये हमारे स्टिम्युलेंट्स है इंजॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, तो उसका अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा उस नुकसान की तरफ नहीं सोच रहे, क्योंकि जीवन में खुशी चाहिए।
0: और कहीं ना कहीं हम इस कगार पर पहुंच गए कि खुद को ही नकार दिया।
1: हाँ बिल्कुल, वैल्यू नहीं है ना अपने जीवन की, तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है। जब हम कहते हैं अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते, कहते 10 मिनट अपने लिए निकालो, टाइम नहीं है, लैक ऑफ वैल्यू फॉर द सेल्फ, बिल्कुल अपने जीवन की इम्पोर्टेंस नहीं है, तभी तो अपने शरीर की भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके अंदर ये सारा डाल रहे जैसे एक अज्ञान की नींद में सोए हैं और चलते जा रहे हैं।
2: शिवानी बेन, एडिक्शन तो है ही है,
1: एडिक्शन
2: की डेफिनेशन भी हम देखे तो अगर आपने एक मास तक गुटखा खाया फिर देखो 2 दिन नहीं खाओ, इमीडिएट इफेक्ट होते हैं।
1: नहीं लेकिन शुरू भी कर रहे हैं या विमेन भी ले रहे हैं तो क्यों हम शुरू भी करते हैं उस तरह की चीज को?
2: वही हाउ एक्सपेंसिव इट इज, कभी हम ये नहीं सोचते। हम तो सोचते वो पुड़िया 1 रुपये की या 2 रुपये की मिलती होगी, लेकिन अगर किलो का हिसाब किया जाए तो शायद 3-4 हजार रुपये किलो है। आज गरीब लोग भी खाते हैं जो शायद बच्चों को बादाम नहीं खिलाएंगे, है ना, अच्छे से दूध नहीं पिलाएंगे, परंतु गुटखा आराम से खा रहे हैं।
0: तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है जो गुटके का, अगेन आपके पास आते हैं सिस्टर शिवानी, की जब हमने बात की स्पिरिचुअलिटी की, जब हमने बात की अवेयरनेस की फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड इटसेल्फ, यू नो अगर 10-11 साल में जहां ये लतें भी पड़ रही होती हैं, इवन स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी गुटखा जो है वो मुझे लगता है माँ बाप भी शायद उसको परेशान नहीं होते उसको देख के कि गुटखा खा रहे हैं। तो यहाँ ये जो जब अवेयरनेस अगर शुरू में ही क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम बात हर बार प्रिवेंशन की भी करते आ रहे हैं, सो हाउ माई अवेयरनेस विल हेल्प मी नॉट टू गेट इनटू दिस होल हैबिट?
1: टोटली, इट विल नॉट टेक मी टूवर्ड्स इट एट ऑल। अगर बचपन से ही पेरेंट्स ने वो अपब्रिंगिंग में वो बात सिखाई होगी, उसके नुकसान बताए होंगे और खुद उस जीवन शैली को फॉलो कर रहे होंगे, तो बच्चा भले उसकी क्लास में सारे ले रहे हो वो चीज को, उसके बिलीफ सिस्टम में इतना इनग्रेन्ड होगा कि वो उस तरफ जाएगा ही नहीं, दैट इज फॉर श्योर। पीयर प्रेशर इज एन एक्सक्यूज, इट्स अ रियल एक्सक्यूज कि नहीं पीयर प्रेशर में तो आप सब कुछ कर लेते हैं। कितने बच्चे हैं जो बावजूद सारे पीयर प्रेशर के नहीं करते हैं ना, तो वॉट इज इट दैट दे हैव, वॉट इज इट दैट दे हैव विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन? बहुत स्ट्रांग अंदर विल पावर एंड बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन परिवार में, जो पूरा वैल्यू सिस्टम जो परिवार में डला है, दे विल नॉट गो टूवर्ड्स दैट।
2: क्या होता है शिवानी बेन जो कहा ना कि आध्यात्मिकता से हमें अपनी एक अलग से पहचान मिलती है, अपनी आइडेंटिटी होती है कि आई एम यूनिक, नो आई एम स्पिरिचुअल। इसके लिए भले 99% ले रहे हैं तो भी वो बच्चा जो स्पिरिचुअल बातों को अपनाए उसको टच भी नहीं करेगा।
0: डेफिनेटली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपकी अपनी आइडेंटिटी अगर पहले से ही है। यहाँ एक हम कहते हैं हर बार बात ही कर रहे हैं, बार बार हर एडिक्शन के ऊपर जब बच्चों की बात आती है, फैमिली फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है, कितने दिनों से हम जब बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आज है, एक पेरेंट लेता है, खासकर अगर हम देखें फादर या मदर भी हो सकती है, वो स्मोकिंग में है, ड्रिंक्स में है, शाम को एक पैक ड्रिंक का जरूर लेंगे ही लेंगे, आदत है उनकी, कोई बात नहीं, ये गुटखा है वहां पैकेट पड़ा रहता है, ये माँ जो है वो चाहती है कि ना हो किसी तरह से, क्या हो, फादर को नहीं समझाया जा सकता, फादर नहीं समझ पा रहा, क्या एज वन सिंगल पेरेंट कैन ऑल्सो हेल्प द चाइल्ड? दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू आज के इस दौर में, बिकॉज हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, हम पहले भी रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर चुके हैं, कहीं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर चल रहे हैं, और अगेन मेरे लिए वैल्यू अलग है, पूरे परिवार के लिए वैल्यू अलग है। तो आज जब बच्चे को वो गुटखा दिख रहा है ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ, उसको उठा के वो डालने की कोशिश करेगा, क्या एक सिंगल पेरेंट उस बच्चे को मोटिवेट कर सकती है उससे परे रहने के लिए?
1: एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज पॉसिबल।

0: क्योंकि आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो बन सकते हैं, एक रोल मॉडल आप बनकर उल्टा और ही शायद बच्चे के अंदर आप वो प्रेरणा ला सकते हैं कि यू नो सी व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट. जब हम
1: यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि अगर वो समझाएगी कि फादर तुम्हारे गलत कर रहे हैं, सो उनको ये लगेगा कि क्या मैं फादर के अगेंस्ट तो नहीं भड़का रही. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माओं के सामने जो आज की जो जनरेशन में है वो आ रही है कि जब मैं अपने बच्चों को ये बताऊंगी कि देखिए फादर ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या गुटखा लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट है कि कहीं मैं उनके अगेंस्ट तो नहीं कर रही हूँ. सो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस.
2: जनरली तो ये नहीं होता है इन जनरल, घर में भी रहे कुछ होंगे ऐसे 1-2%, परंतु अधिकतर तो माँ तो एक्सट्रीम अगेंस्ट होती है. मैंने कहीं एक डॉक्टर को मैं पहचानता हूँ, थोड़ा ही बहुत थोड़ा पीते और कभी उसने ऊंची आवाज से भी नहीं बोला, उतना एक आध पैक लेके कभी ऊंची आवाज से भी उसने नहीं बोला, बिल्कुल एकदम नॉर्मल होते हैं. लेकिन उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आता है कि उसकी पिटाई कर देते. उस स्टेज में एक पैक भी लिया है तो भी उसकी पिटाई कर देंगे. मतलब महिलाएं तो एकदम अगेंस्ट है.
1: नहीं, लेकिन अगर आज के सर्कमस्टांसेस में ज्यादातर देखें मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, हस्बैंड्स पार्टीज में पी ही रहे हैं, रात को भी शाम को भी कई लोगों ने अपनी दिनचर्या बना रखी है कि लेते ही हैं. ऐसे में ये जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की कि लेडी के सामने ये कॉन्फ्लिक्ट है, माँ के सामने, कि हाउ टू डील विद इट.
0: आई थिंक बट स्टिल पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको, पूरी नॉलेज एक बच्चे को देनी ही पड़ेगी कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एंड प्लस एम्पावर उस बच्चे को, इतना एम्पावर करे ताकि वो उस रास्ते पर या उस चीज को टेस्ट करने की भी जरूरत न समझे, इतना हम उसको सशक्त बनाए. एंड आई थिंक बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ जो डायलॉग है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे बच्चे की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है. तो जहां हम इतना सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो क्या हम ये एक चीज अपने लिए नहीं तो फिर उन्हीं के लिए गिव अप कर दें. बिकॉज इट इज ऑलरेडी डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड. तो बच्चे में दो तरह के हमें दिखाई देते हैं, एक जो अपने घर में बहुत ज्यादा इस चीज को देखते हैं कि उस चीज से नफरत करते हैं, यू नो उन्हें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से नफरत होती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उस चीज को अपने घर में देखा, उसकी वजह से झगड़े देखे, तो वो अपनी लाइफ में कभी नहीं टच करेंगे. और लेकिन दूसरे वो जिन्होंने उसको बहुत हेल्दीली एक्सेप्ट होते हुए देखा अपने घर के अंदर, एंड फिर उनके लिए वो एक बहुत नॉर्मल चीज है.
1: नहीं तो फिर झगड़े होने चाहिए. दिस इज व्हाट आई एम.
0: नहीं नहीं, दैट्स व्हाट आई सेड. दो तरह का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, या तो एकदम अवर्जन या फिर इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल फॉर
2: देम. ये इवेंट इसीलिए कहते हैं कि परिस्थिति आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, अब उस परिस्थिति में आपका रिएक्शन क्या है इम्पोर्टेंट है. इसी किस्से में अगर माँ बच्चे को यह समझाए कि फादर कोई भी कारण से ले रहे हैं, लेकिन बेटा इतनी बुरी चीज है तुम उसको छूना तक नहीं. और अगर बेटा माँ से अटैच है, क्योंकि बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है.
0: एंड आई थिंक द मेन नीड टू अंडरस्टैंड कि पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर या पार्टी सर्कल इस प्रोसेस में अपना वो मेंटेन करने के लिए कि सब फ्रेंड्स ले रहे हैं, उस चीज में वो अपनी फैमिली लाइफ पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं. आप फ्रेंड्स को खुश कर रहे हैं और फैमिली को.
1: और जो कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बच्चा जो जिस एज में है, हम कहीं ना कहीं हम हर बार ये मानते आ रहे हैं कि जिम्मेदारी तो हमारी है,
0: और कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को कहाँ फिर हमें राइट रह जाएगा कुछ भी चीज के लिए रोकने के लिए. अगर वो कोई और राह पर भी चलता है, हमें क्या हक रहेगा उसे रोकने के लिए. जब हम ऐसे कई काम कर रहे हैं जो उनके कहने के बावजूद हम नहीं रोक पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिसिप्लिन करने का एक्ट है वो खत्म हो जाएगा. और हम जिस चीज के लिए रोकेंगे भी तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू हमारे बोल की फिर रहेगी नहीं, क्योंकि हम ही सही राह पर नहीं.
1: तो ये हमें एक्चुअली डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा.
2: तो हर एक फादर को ये सोचना चाहिए कि समझो मैं 1-2 पैक भी ले रहा हूँ, बच्चा 11-12 साल का हो गया कि उसका आप बाजू में बिठा के पिलाएंगे कि बेटे तू भी इतनी अच्छी चीज़.
1: मैं यही तो कह रही हूँ कि फादर ये कहता है कि पहला स्मोक, पहला फैग, पहला कश मेरे साथ लेगा मेरा बेटा, या मैं पहला ड्रिंक मैं साथ बैठकर पिलाऊंगा.
0: क्योंकि इस चीज को हमने इसलिए सिग्निफाई कर लिया क्योंकि ये हमने सोचा ये बॉन्डिंग की निशानी है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. सी जहां इंटरनल बॉन्डिंग नहीं होगी वो हॉलोनेस है, हम ये बाह्य चीजों का आधार ले लेते हैं टू शो पीपल एंड इवन टू सेटिस्फाई माई ओन सेल्फ कि नहीं हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, देखो हम कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, कि हमें छुप के कुछ भी करने की जरूरत नहीं.
1: हमें छुप के मतलब हमें खुद पता है कि हम वो नेगेटिव चीज कर रहे हैं तो हम नेगेटिव भी साथ साथ कर रहे हैं. डेफिनेटली समवेयर वी नो दैट.
0: ये अपने आप को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश है.
2: कन्विक्शन तो ये होना चाहिए कि 2 पैग अल्कोहल भी हार्मफुल.

0: जो आज डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं।
1: डॉक्टर पटेल, इसी बात पे हम आ रहे हैं कि अभी तक हमने जो बातें की हैं, चाहे वो स्मोकिंग की है चाहे वो गुटखे की है, वो ऐसी लगती है कि सिर्फ उससे कुछ अपने होश नहीं खोते हैं हम, उसके लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल बिहेव करते हैं। ड्रग्स हमारे आसपास कोई ज्यादा हमें नहीं दिखते जो ड्रग्स लेते होंगे। एल्कोहलिज्म एक ऐसा इतना बड़ा अभिशाप इस वक्त सोसाइटी का बन चुका है, जहां घर घर में एल्कोहलिज्म का एक प्रकोप कहा जाए वो है, और उसमें होता यह है कि आप अपने होश खो बैठते हैं, कहीं ना अपना अपने ऊपर से आपका जो कंट्रोल है वो खराब हो जाता है। उसका जो इफेक्ट है बॉडी पे, उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रकोप समाज में नजर आता है।
0: सबसे पहले तो ये बात है कि भी जो आज क्यों ज्यादा ही शराब पीने लगे हैं, क्योंकि हमारे में मस्तिष्क में कहीं इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स है कि जिसके कारण हमारे में शाइनेस आती है, हम कॉन्फिडेंटली बोलते नहीं, ओपन अप नहीं होते हैं, ऐसी कई बातें हैं। जब आप शराब पीते हैं तब वो जो इनहिबिशन है वह इनहिबिट हो जाता है, वो जो इनहिबिशन है वह कट ऑफ हो जाता है, और उसके कारण व्यक्ति फ्री फील
1: एग्जिबिट कर देते हैं।
0: हाँ, वो व्यक्ति फ्री हो जाता है ना, फ्रीली बोलने लगता है, आराम से उसको लगता है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, परंतु वो टेम्पररी फेज है। एक तो ये इनहिबिशन है, वो इनहिबिशन दूर होने से आपको अच्छा लगता है। फिर जब है वो लीवर पर बहुत बड़ा डैमेज होता है, यह 100% सिद्ध हुई बात है कि जो व्यक्ति अगर आप 4-5 साल भी थोड़ी थोड़ी भी शराब पीते रहो तो लीवर सिरहोसिस होने लगता है। ऐसे पेंक्रियास कि जिसका डायबिटीज के साथ संबंध है, तो पेंक्रियास पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, पेट पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एसिडिक है और एसिडिटी अल्सर आदि निर्माण करेगा। और सबसे जो इफेक्ट है वह है ब्रेन पर, क्योंकि एक तो ब्रेन पर ये इनहिबिशन हुआ, और आगे चलकर के एक बीमारी है वर्निक्स एनकेफेलोपैथी कि जिसके अंदर मेमोरी लॉस हो जाती है, व्यक्ति धीरे धीरे सचमुच एक अपाहिज की तरह जीवन व्यतीत करता है, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी। और दूसरा एक है कोर्सकॉफ साइकोसिस, एक पागल की तरह व्यक्ति, पर आगे के स्टेजेस है, परंतु क्यों हम उसके बीच बोर है, थोड़ी भी शराब लेकर के आप उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। और एक चीज जो बिल्कुल एक्सेप्टेड है कि एटलीस्ट 50% एक्सीडेंट्स है वो शराब की हुई हालत में होते हैं, कोई भी एक्सीडेंट्स को आप लीजिए, तो इन सबको साथ में अगर होलिस्टिकली तो देखा
1: समाज के लिए भी फिजिकल अब्यूज सबसे ज्यादा, परिवारों का टूटना सबसे बड़ा कारण, चाहे हम झुग्गी झोंपड़ी वर्ग में जाएं, चाहे हम उस निम्न वर्ग में जाएं, या फिर आज उच्च वर्ग में किसी भी वर्ग में चले जाएं, सबसे बड़ा कारण, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं
0: अल्टीमेटली होते
1: हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। सिस्टर शिवानी, बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं डिटॉक्सिकेशन के, और बहुत बार बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो एल्कोहलिज्म को दूर करने में बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर यही देखा गया है कि शायद रिजल्ट्स उतने नहीं आते हैं। हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प एक्चुअली इन द रियल सेंस, क्योंकि एल्कोहलिज्म में कहीं ऐसा लगता है कि हाथ में अपने नहीं रह गई है पावर, हाउ मच स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प।
2: स्पिरिचुअलिटी एक ओवरऑल हीलिंग करती है, आत्मा पर बहुत सारे घाव हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के, प्रेजेंट चैलेंजेस के, कुछ अपनी आदतों के बहुत सारे घाव हैं। तो आध्यात्म जो हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के साथ, वो सिर्फ हमारी ये आदत को नहीं छुड़ाती है, वो तो सिर्फ एक सिंपल चीज है, वो तो जल्दी से छूट जाती है, अल्कोहल स्मोकिंग ये तो कुछ दिनों में छूटती है वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, लेकिन ये हमारे डीप घाव जो लगे हुए हैं उसको हील करती है। फिर जब वो हील होने शुरू हो जाते हैं, आपका वापस रिलैप्स होना वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका रूट सॉल्व हो गया ना। तब अभी नॉर्मल क्या होता है कि अगर आप बिहेवियरल लेवल या इवन बीमारी का समझकर आप छोड़ते भी हैं, तो फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखाई देता, और फिर आप उसकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो खालीपन है वो तो भरा नहीं। भले बाहर से समझ कर छोड़ना चाहते थे, छोड़ पाए, लेकिन जब अगली कोई चैलेंज आई, तो दैट्स वाई इनर एम्पावरमेंट ये जब आप साथ में करेंगे, देर इज नो वे कि देर विल बी अ रिलैप्स, क्योंकि परिस्थितियों को फेस करने की ताकत आ गई है। तनाव, गुस्सा जो एक कॉमन था अभी तक, वो फिनिश होता गया धीरे धीरे, डिप्रेशन ये सब कभी अनुभव नहीं होंगे।

0: तो लाइफ कैसी हो जाएगी? वेरी हेल्दी, बिकॉज मेडिटेशन से आप अपने माइंड के मास्टर बनते जा रहे हैं. तो नाउ यू नो हाउ टू क्रिएट योर हैप्पीनेस. और अगर आप अपनी हैप्पीनेस एक बार खुद क्रिएट करने शुरू कर दी है, यू डोंट नीड एनीथिंग
1: व्हेन वी अंडरस्टैंड द टेक्निक एक्चुअली. क्योंकि उसके बाद के जो सुबह उठ के जो हालात होते हैं, एक्चुअली पीपल डोंट लाइक इट.
0: राइट,
1: जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं अल्कोहलिज्म का, तो खासकर ये देखा गया है कि उसके बाद के जो उनके हालात होते हैं, दे आर एक्चुअली दे देमसेल्फ फील वेरी बैड. उनको खुद को बहुत बुरा लगता है. डॉक्टर पटेल, दो
2: एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी आज अप्रोचेस है, जैसे बहुत ही फेमस अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस भी, वहां आप देखेंगे उनके 12 स्टेप्स माने गए. वो 12 स्टेप्स सारे के सारे स्पिरिचुअल है. कुछ एक स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. जैसे सबसे पहले तो कहते हैं कि हम ये स्वीकार करते हैं कि मेरे में यह बहुत बड़ी समस्या है और मैं शक्तिहीन हूं. मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अल्कोहल पर विजय प्राप्त कर सकता हूं. फिर दूसरी बात बताते हैं कि भी मेरे से कोई बड़ी शक्ति ही मुझे मदद कर सकती है. मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मेरे से कोई ज्यादा पावरफुल शक्ति मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी. तीसरा कि भी परमात्मा को जैसे भी मैं मानता हूं, उस रूप से मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूं कि परमात्मा मुझे इस व्यसन से मुक्ति दिलाएंगे. फिर कि भी मैं अपनी सारी कमियां है परमात्मा के सामने रख रहा हूं. मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे में यह कमियां हैं, यह शक्तियां हैं, और वह मैं परमात्मा के सामने रखता हूं, उससे मुझे शक्ति मिलेगी. इस प्रकार से मैं मदद को मांग रहा हूं, नहीं प्रतिदिन मैं प्रेयर कर रहा हूं. सारे आप 12 स्टेप्स देखेंगे तो उसमें आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिक.
0: अब इसी को हाँ, मेरे को लगता है थोड़ा सा हम जैसे डिफरेंटली लेते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ. यू नो, ये सबसे पहली चीज हमें मिली कि मैं आत्मा का ओरिजिनल गुण ही शक्ति है. तो अभी तक जो मैं अधीन था, अभी तो कर्म इंद्रियों के भी अधीन या कोई पदार्थों के भी अधीन, वो खत्म हो जाएगा जब रोज सवेरे उठकर हम 10 मिनट के लिए भी इस तरह बैठे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा की मैं संतान हूँ, तो मेरे अंदर कमजोरी ये हो नहीं सकती है. तो अपने आप, और जब हम वो कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन में, तो परमात्म शक्तियां सारी मांगनी नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप ही सारी आत्मा के अंदर भरती जाती है, अपने आप एम्पावरिंग हो जाती है. मेन चीज है सोल इतनी अपने आप को चार्ज्ड फील करती है कि उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट की जरूरत नहीं है चार्ज होने के लिए. इनफैक्ट हमें समझ में आने लगता है फिर कि ये सारे जो स्टिमुलेंट्स थे ये हमें डिस्चार्ज करते हैं, ये हमें डी एनर्जाइज करते हैं, तो हम अपना नुकसान कर रहे थे. देन व्हाई वुड वी गो टुवर्ड्स इट? इट
2: विल नॉट. राजयोग एक स्टेप अहेड है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भी वहां पर अल्कोहलिक एनोनिमस में कहते भी मैं पावरलेस हूँ. यहाँ पर पहले ही स्टेप में पावर भरती
1: कि
2: है,
1: मेरा मूल जो है वो पावरफुल है, पावर है. उसके बाद अगर आज मैं हो भी गया हूँ, आई कैन एक्चुअली अगेन रीच दैट लेवल.
2: और परमात्मा से शक्ति लेने की बात तो राजयोग में भी है ही है कि मुझे परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ करके उस पावर को अपने आप में भरना है. और राजयोग की आप अगर पॉजिटिव थॉट्स भी देखेंगे, टेक्निक अगर आप देखो राजयोग की, सारी वही है कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, परमात्मा शक्ति के सागर है, उनसे मुझे शक्ति मिल रही है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है. तो पॉजिटिव प्रोसेस ही सारा हमें मदद करता है व्यसनों से मुक्ति दिलाने.
1: आई थिंक ये तो मैं बिल्कुल पूरे अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि रोज का किया हुआ ये अभ्यास कहीं ना कहीं हमारे अपने आत्मबल को बढ़ा देता है. जो शक्ति को मैं फील करना चाहती हूँ कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है. डॉक्टर पटेल, चलते चलते आज की इस पूरी बातचीत में एक बात हम ये जानना चाहेंगे. हमने जितने भी व्यसनों की फिजिकल एस्पेक्ट की तरह जो बड़े बड़े व्यसन थे, चाहे वो ड्रग एडिक्शन था, चाहे वो स्मोकिंग थी, चाहे वो गुटखे की बात है, ड्रिंकिंग की बात है, एक बार किया गया या रोज रोज किया गया, दोनों में से क्या सभी सही है? दोनों में से कोई भी सही है?
2: बोथ आर इक्वली हार्मफुल, क्योंकि एक बार भी किया तो आगे चल के आदत हो जाएगी. कई बार आपके पास समस्या आई तो वही चीज आपको याद आएगी. तो इसके कारण बेस्ट तो ये है कि एक भी बार नहीं करना. और जो लोग एक्सट्रीम एडिक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, उनमें कई बार फिर हमें यह भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भी उनकी क्वांटिटी अगर बहुत कम हो गई तो भी यह अच्छा है. बेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक तो पहले जो घर में आकर के तोड़फोड़ करते थे, मारते थे, वह सारा खत्म हो गया. तो उसे भी साइकियाट्रिस्ट कुछ हद तक एक्सेप्ट

0: सकते हैं, परंतु गोल तो यही होना चाहिए कि मुझे टोटली उसे छोड़ना।
1: किसी
0: जब तक आप कम्प्लीटली नहीं,
1: विलिंगनेस की जो बात है, कन्वर्जन की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। जैसे शिवानी, कई बार जो हम ड्रिंक्स की बात करते हैं वो पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में शुरू करते हैं, कई बार डिप्रेशन में शुरू करते हैं। दोनों की अलग अलग भावनाएं होती हैं जब करते हैं। छोड़ना दोनों में ही आसान है?
2: बहुत आसान है। एंड आई वुड से एनीवन वाचिंग दिस प्रोग्राम नाउ, अगर कहीं भी थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है, जस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर एंड जस्ट गो देयर फॉर अ फ्यू डेज। बस थोड़े से दिन जाइए, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कीजिए, आपको एक बहुत पॉजिटिव चार्ज्ड मेडिटेशन रूम मिलेगा, बहनें मिलेंगी जो आपसे इसकी विधि को आपके साथ शेयर करेंगी सिर्फ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमने शुरू से देखा एक एक्सपेरिमेंट है। तो थोड़े दिन के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, लाइफ विल चेंज डेफिनेटली।
1: ओके सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, बहुत अच्छा लगा आज की इस पूरी बातचीत के लिए। अभी हमने उन एडिक्शंस की बात की है जो सामने सामने नजर आती हैं, जो हमारे अपने अंदर चल रही हैं एडिक्शंस। अगर मैं कहूं कि एंगर एक एडिक्शन है, जैसे आपने कहा था एक बार कि चॉकलेट भी एडिक्शन हो सकती है, या कहीं ना कहीं टेंशन एडिक्शन है, पेन लेने की एडिक्शन है, रिलेशनशिप्स में एडिक्शन है कि मैं आपके प्रति इतना ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा, किस तरह से ये एडिक्शंस, ये आदतें भी हमारे लिए मजबूरी बन सकती हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो उनके ऊपर बातचीत करना अभी बाकी है, आने वाली कड़ियों में उन्हें जरूर हम शेयर करेंगे आपके साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमने ये मान लिया कि जो आदत हमारी जिंदगी में आ गई है, चाहे वो स्मोकिंग की है, चाहे वो ड्रिंकिंग की है, चाहे वो गुटखे की है, वो आदत है और उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। मेंटली मैं अपने आप को बहुत चेंज कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी। जैसे कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि एक बार भी ये थॉट अगर हमारे पास आ जाता है कि मुझे इन व्यसनों से बाहर निकलना है, इन आदतों को छोड़ना है, तो फिर आप वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही अनुभव होगा। आप किसी भी राजयोग सेंटर जा सकते हैं, खुद को इतना बुलंद कर सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, और इन सभी आदतों को अगर अपने लिए नहीं, किसी अपने के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप एक वादा कीजिए अपने आप से कि ये कदम जरूर उठाकर देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। एक वादा और लेते हैं हम आपसे कि अगर आप किसी भी व्यसन को, किसी भी आदत को छोड़ने का अपने आप में व्रत लेते हैं, किसी राजयोग सेंटर में जाकर या फिर मेडिटेशन के माध्यम से, तो आप अपना वो अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। आपके खतों का हम इंतजार करेंगे, आपकी ईमेल्स का हम इंतजार करेंगे, फोन कॉल्स का भी हम इंतजार करेंगे। आने वाली कड़ियों में उन सभी आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें कभी हमने एडिक्शन माना ही नहीं, जो हमारे अपने ही अंदर है लेकिन कहीं न कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब बनती है। फिर होगी मुलाकात अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बड़ा होके छोटे में रोक डालता है। हाँ नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो जा, मैं भी नहीं जाता। कट्टी बोलिए ना, कट्टी कट्टी कट्टी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: ऐसे ही एक किनारे पर खड़ी थी, वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: अला अला अला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: का भीड़ हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी सुशीला दीदी का जन्म 5 मार्च 1905 को पंजाब के गांव में हुआ था। जालंधर कन्या महाविद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने बहुत सी राष्ट्रीय कविताएं और प्रेरणा गीत लिखे। सभी क्रांतिकारी प्यार से उन्हें दीदी कहकर बुलाते थे, और हो भी क्यों ना, वे हर क्रांतिकारी संघर्ष से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। काकोरी कांड के लिए उन्होंने अपनी शादी के गहने दिए, तो लाहौर षड्यंत्रकांड में फरार भगत सिंह की कलकत्ता में रुकने की व्यवस्था की। दिल्ली में वायसराय की ट्रेन उड़ाने की योजना बनी तो दीदी को कलकत्ता से दिल्ली आना पड़ा। क्रांतिकारियों के मुकदमे लड़ने के लिए वे नाटक खेलकर धन जुटाती। दिल्ली असेंबली बमकांड के क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने की योजना बनी तो वे कलकत्ता से नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गईं। राखी के अवसर पर भगत सिंह को लिखे उनके पत्र को प्रकाशित करने वाले संपादक को जुर्माने के साथ 6 साल की कैद हुई। उनके नाम 2 वारंट निकले और पकड़वाने वाले को 2000 रूपये का इनाम देने की घोषणा की गई। आजाद की शहादत के वक्त भी दीदी इलाहाबाद में थी। क्रांतिकारी घटना दिल्ली की हो, लाहौर की या कोलकाता की, दीदी हर जगह मौजूद दिखाई देती हैं। वे सभी क्रांतिकारियों की बहन जो थी।
3: अरे यार, अभी तक ये चाय नहीं आई। अरे दद्दा, अरे चाय भेजो ना।
4: अरे आ गई आ गई आ गई चाय, ये लो चाय और ये गर्मा गर्म कचौड़िया। अच्छा सुनो, कचौड़ी में चटनी डालूं क्या?
3: हाँ दादा।

0: थोड़ी चटनी मुझे भी डालो। हाँ ये खट्टी वाली।
1: हाँ हाँ लो ना, ये लो, ये तुम भी लो।
0: ये कागज करो उधर और कचौड़ी करो अंदर।
2: ए भैया कागज इधर उधर मत फेंको, लाओ मुझे दो, मैं डाल देता हूँ कचरे के डब्बे में।
1: अरे किशन वो कचौड़ी वाला कागज देने जा। अरे ये क्या, ये तो क्रांति संग्राम किताब का पन्ना है। ये उस्ताद भी कुछ ध्यान नहीं देते, बस रद्दी समझकर फेंक दिया।
3: क्या बात है दादा, क्या बहुत काम का है ये कागज।
2: अरे ये सिर्फ कागज नहीं है,
1: शहीदों की अमर गाथा है, ये तो शहीदों के लहू से लिखा गया गीत है।
3: तो सुनाओ ना दादा हमको भी।
0: हाँ हाँ भैया सुनाओ सुनाओ।
1: हाँ हाँ सुनाता हूँ। मेरे पास कॉलेज के कुछ लड़के अक्सर आते हैं, वो आज भी आने वाले हैं, मैं उन्हें सुनाऊंगा तो आप लोग भी सुन लेना। चलो मैं जरा कुछ काम वाम देख के आता हूँ।
3: तो कहाँ दे रोगी तुझको?
4: अरे मैं तो घर पर रह गया था, तू कहाँ रह गया था?
3: मैं आ रहा था, गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में।
4: अच्छा और...
1: नमस्कार काका। नमस्कार नमस्कार बेटा।
4: हाँ काका आ तो गए हम, मगर आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज ये मत कहना कि काम पर कोई नहीं है, आज तो हम कहानी सुनेंगे ही। क्यों भाई?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं।
4: हाँ हाँ सुनाइए काका।
1: अरे सुनाऊंगा सुनाऊंगा, वो देखो वो भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे आने का और कहानी सुनने का।
3: सुनने वाले राजी हैं, बस देर है तो सुनाने वाले की।
4: जल्दी कीजिए काका।
1: देखो बेटा ये बात है सन 1927 की, दिन 8 अप्रैल, गर्मी की शुरुआत हो गई थी, बीए फाइनल के विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं दे दी गई थी, परीक्षा शुरू होने में 5 मिनट का समय था।
3: भाई सब पर्चा अच्छे से पढ़ लीजिए फिर हल कीजिएगा। हाँ और अपने अपने स्थान पे बैठे। ये अखबार आपका है क्या? जरा मैं देख लूं। हे भगवान ये क्या, लखनऊ के रिंग थिएटर का नाटक समाप्त, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेन लाहड़ी को फांसी।
5: हे भगवान ये क्या हो गया?
6: देखिए माता वो सुशीला गिर गई है और बेहोश हो गई है।
3: अरे भाई शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। चलिए अपनी अपनी सीट पे जाइए सब लोग, अपना प्रश्न पत्र हल कीजिए, मैं देखता हूँ। सुशीला सुशीला क्या हुआ? ये लो पानी पियो। हाँ अब बोलो कैसा लग रहा है?
5: हाँ ठीक लग रहा है, काम के साथ बड़ा नाम है करने वाले, देश पर मर गए किस शान से मरने वाले, सर हथेली पे लिए जान से ये खेल गए, देश आजाद हो इस वास्ते सब झेल गए।
3: हटिए हटिए दूर हटिए भाई, हवा आने दीजिए।
1: सुशीला इतना कहकर सुशीला फिर बेहोश हो गई और फिर उस दिन परीक्षा नहीं दे सकी। सुशीला का जन्म 5 मार्च 1905 को पंजाब के दंतोचहुड़ गांव में हुआ था, परिवार राष्ट्रभक्त और आर्य समाजी था।
7: अरे बधाई हो डॉक्टर साहब, कन्या ने जन्म लिया है आपके घर। अरे घर चलिए और पूरे गांव में मिठाई बंटवाइए।
8: हाँ हाँ चलता हूँ। अरे पहले एक दो मरीज देख लूँ। हाँ भाई ये दवा लो, दो दो घंटे से देते रहना, आपकी बिटिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी।
9: फीस?
8: अरे नहीं नहीं मुझे फीस नहीं चाहिए, इसकी मिठाई बच्चों को खिला देना, समझे?
7: अरे डॉक्टर साहब पूरा दंत चूड़ा गांव मिठाई खाने के लिए तैयार है, अरे सब बहुत खुश हैं।
8: हाँ हाँ खुश क्यों नहीं होंगे, बिटिया ने जन्म लिया है भाई, शुभ संकेत है हमारे गांव के लिए। आइए चलिए।
7: अरे भाई पंडित जी, डॉक्टर करमचंद के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, जरा

0: कर रहा हूँ और ये रही आपकी दक्षिणा।
1: वो सही कहावत है, भूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं।
2: अरे वाह। देखिए डॉक्टर साहब, कन्या के चेहरे पर तेज तो देखिए। डॉक्टर साहब, एकदम झांसी की रानी लगती है। आप अलग देखती है।
3: सच कह रहे हो भैया, मुझे लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली है। इसका कपाल तो देखो कितना उभरा हुआ है। बेटी तुम चलना, खुद चलना, तुम्हारे पैरों की छाप देखकर लोग मंजिल तक पहुंचे। तुम्हारे कदम राजमहल नहीं, गरीबों के झोपड़ों तक जाएं, यही मेरी कामना और आशीर्वाद है। बेटी तुम चलना, खुद चलना, तुम चलना।
4: सन 1926 हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के लिए सुशीला जी चल पड़ी।
5: रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको? एक मिनट एक मिनट, आप लोग आप जरा शांति बनाए रखिए, मुझे बात तो करनी थी। एक मिनट एक मिनट, क्या सबूत है इसने चोरी की है? क्यों भाई, तुमने सचमुच चोरी की है?
6: नहीं बहन, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की। मेरे पिताजी बीमार हैं, देहरादून अस्पताल में भर्ती हैं। मैं दो दिन से भूखा था, मैंने तो रोटी उठाकर खा ली थी बस।
7: अरे झूठ बोलता है ये, रोटी के बहाने चोरी कर रहा था। और चोरी तो चोरी है, रोटी की हो या पैसे की, क्यों भाई?
5: छोड़ दीजिए इसे, छोड़िए, ये लो तुम्हारी रोटी के पैसे। इंसान की परिस्थिति तो देखो, रोटी खिलाओगे तो पुण्य ही मिलेगा, बस हाथ उठाया मारना शुरू कर दिया।
6: दीदी मैं चोर नहीं हूँ।
5: आओ भाई इधर आओ, तुम मेरे साथ आओ। चलो हाँ मान लिया तुमने चोरी नहीं की, देखो मैं भी देहरादून जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो और अपना जीवन देश के लिए न्योछावर कर दो। तुम्हारे पिताजी की देखभाल मैं करूँगी, भारत माँ को आजाद कराने के लिए कुछ करो इस समर में।
6: दीदी मुझे जीने का उद्देश्य मिल गया है, आज तो मेरा अपना कुछ नहीं, सब भारत देश का है, उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है।
8: हम सब एक हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
5: शुरू हुई है जंग हमारी, जागी है भारत की हर नारी। दशा भाइयों की जिसने न जानी, कौन कहेगा उन्हें हिंदुस्तानी।
9: वाह वाह क्या बात है बहन, मेरा नाम भगवती चरण है, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है।
5: सुशीला है नाम आपकी इस बहन का, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक और क्रांतिकारी भाई मिला जिसके विचारों में आग है।
4: भाई बहन देहरादून में बिछड़े और फिर कुछ दिनों बाद जालंधर में मिले।
9: सुशीला बहन, सुशीला बहन,
5: कौन है?
9: मैं हूँ आपका भाई।
5: अरे भगवती चरण भैया, आप यहाँ जालंधर में और वो भी अचानक, और ये कौन है?
9: ये तुम्हारी भाभी दुर्गा।
5: अरे वाह, नमस्ते भाभी, आइए दुर्गा भाभी।
9: हमें हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के पर्चे गोपनीय ढंग से लोगों तक पहुंचाने और किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए।
5: भैया ये भले ही मेरा पहला क्रांति कार्य है, लेकिन आप अपनी बहन पर भरोसा कीजिए।
10: इस पर्चे के वितरण से जालंधर में तहलका मच गया, अपराधी की खोज में पुलिस सक्रिय हो उठी, पर नतीजा ठन ठन गोपाल।

0: कुछ समय के लिए सुशीला को जालंधर छोड़कर कलकत्ता में रहना पड़ा।
1: अरे कहने को तो मेरा नाम सेठ छज्जूमल है, पर अपनी बेटी के लिए इस कलकत्ता शहर में एक अच्छा अध्यापक नहीं ढूंढ सका।
2: जी जी सेठ जी।
1: हाँ बोलो बोलो, तुम कौन हो जी?
2: सेठ जी, मुझे जालंधर कन्या विद्यालय के संचालक लाला देवराज ने भेजा है आपकी बेटी की देखरेख और अध्यापन के लिए।
1: अरे वाह बेटी वाह, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। देवराज जी बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, वो कई बार मुझसे कह चुके थे। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आओ बेटी आओ। हाँ ये रहा तुम्हारा कमरा, बस सामान यहाँ रख दो और मैं भोजन के लिए कह देता हूँ। ठीक है बेटा? और हाँ बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक कह देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
2: अरे वाह, कितना हवादार कमरा है। वो सामने सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, जरूर ये रास्ता राजपथ तक जाता होगा।
0: साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इस नारे की तख्ती उठाकर सुशीला भी जुलूस में शामिल हो गई। यहाँ सुशीला की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस से हुई।
2: प्रणाम सुभाष बाबू।
3: अरे बस बस, क्या नाम है तुम्हारा?
2: सुभाष बाबू, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं।
3: हाँ, हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है।
2: आपकी बहन का नाम सुशीला है, मैं सुभाष चंद्र बोस बनना चाहती हूँ।
3: तुम सुशीला रहकर ही क्रांति संचालन कर सकती हो। मैं तुम्हारे भीतर एक सुलगती आग देख रहा हूँ, आगे बढ़ो और अंग्रेजों के खिलाफ ज्वाला बनकर फूट पड़ो।
2: मुझे काम दीजिए, मैं सिर्फ घर बैठे चूल्हा नहीं फूंकना चाहती।
3: हाँ सुशीला, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। ये लो तिरंगा। सुभद्रा तुम भी साथ जाओ, साइमन वापस जाओ।
4: साइमन कमीशन
5: वापस जाओ।
4: साइमन कमीशन
5: वापस जाओ।
0: ऐसे ही एक दिन अचानक भगवती चरण सुशीला से मिले।
2: भैया आप यहाँ कलकत्ते में?
6: समझो मेरा फरारी जीवन आरंभ हो गया। कलकत्ता आऊँ और तुमसे ना मिलूँ। अभी मैं किसी होटल में ठहरूंगा, फिर उचित अवसर देखकर कलकत्ता छोड़ दूंगा।
2: भैया मेरे होते हुए आप होटल में नहीं रहेंगे?
6: देखो बहन, तुम खुद एक अन्य परिवार के साथ रह रही हो, मैं तुम्हारे साथ रहा तो सेठ छज्जूराम के ऊपर भी संकट आ सकता।
2: भैया ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डर, जो होगा देखा जाएगा। आप चलिए मेरे साथ।
0: मकान के दूसरे हिस्से में भगवती चरण रहने लगे। अचानक एक दिन तार आया।
6: चलो सुशीला तुम मेरे साथ जाओ।
2: लेकिन भैया बोलो तो सही, क्या बात है, तार में क्या लिखा है? घबराने की तो बात नहीं है ना? लाइए मुझे दीजिए तार। चिंता मत करना, मैं भाई के साथ पहुंच रही हूँ। तुम्हारी दुर्गावती? दुर्गावती? भैया क्या मैं ठीक समझ रही हूँ?
6: हाँ सुशीला तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। चलो चलकर देखते हैं कि क्या बात है।
2: भैया ये लो पिस्तौल, साथ में रख लो, क्या पता कब काम पड़ जाए।
6: हाँ हाँ दो, चलो जल्दी स्टेशन चलो, ट्रेन का टाइम हो रहा है।
2: हाँ हाँ चलो चलो चलो।
6: देखो ट्रेन आ चुकी है, मैंने कहा था कि हम लोग लेट होंगे।
2: अब क्या करें भैया?
6: अरे रुको रुको रुको रुको, वो देखो सामने उस यूरोपियन साहब को और साथ में वो मैम, वही है तुम्हारी दुर्गा भाभी।
2: वाह दुर्गा भाभी, भाभी जैसा तुम्हारा नाम है ना वैसा ही काम तुमने कर दिखाया है। धन्य है भारत की नारी।
0: भगवती ने अपनी पत्नी और यूरोपियन वेशधारी भगत सिंह को पहचान लिया। उन्हें विश्वास हो गया सैंडर्स को भगत सिंह ने ही मारा है। तो सुशीला ने उनसे कहा एक दो दिन होटल में रहो

0: फिर घर आ जाना, यही ठीक रहेगा। सही अर्थों में वो सबकी दीदी थी। उनकी ममता सब क्रांतिकारियों के लिए एक जैसी थी। एक दिन ऐसा हुआ,
1: भगवती भैया और सुखदेव भैया, मैं भी आपके कारखाने में बम बनाना सीखना चाहती हूँ।
2: देखो सुशीला बहन, अब तुम एक लड़की हो और यहाँ लड़की आएगी जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हो सकता है पुलिस को भी शक हो जाए।
1: अच्छा, लड़की नहीं आ सकती ना? ठीक है, तो मैं सिर्फ लड़का बनकर बम बनाना सीखूंगी और इस तरह मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मैं बम बनाना भी सीख लूंगी।
2: ठीक है ठीक है, चलो तो कल सिख लड़का बन के आना।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन ज्यादा दिन वो वहाँ रह न सके, उन्हें फिर महिला बनना पड़ा। इस बीच बम बनाते समय भगवती चरण की मृत्यु हो गई। दिन था 28 मई 1930।
1: उधर भगवती भैया शहीद हुए और इधर दो बम मकान में अपने आप फट गए। हमें इसी समय ये घर छोड़कर जाना होगा। चलो दुर्गा भाभी, मेरी सहेली सत्यवती के यहाँ चलते हैं।
0: कुछ दिन तक तो वो अपनी सहेली के यहाँ रही, फिर आजाद ने उन्हें दिल्ली भेज दिया। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें अपने पुराने परिचित वकील श्याम मोहन की याद आई। सुशीला दीदी ने वकील साहब का मकान भी खोज लिया।
1: वकील साहब, एक बार आप ही ने कहा था मेरा घर क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित स्थान है।
3: हाँ, मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ। देशभक्ति के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं।
1: धन्यवाद वकील साहब।
0: श्याम मोहन वकील साहब ने सुशीला दीदी और क्रांतिकारियों का साथ दिया।
4: अरे चंद्रशेखर आजाद जी, क्या वकील साहब के यहाँ हथियार रखना सुरक्षित होगा?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी आप भी मेरे साथ ही चल रहे हैं, चल के देख लीजिएगा।
4: ठीक है,
5: आइए
4: आइए।
5: सुशीला बहन दरवाजा खोलो, मैं चंद्रशेखर आजाद।
1: नमस्ते पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ और ये कौन है?
5: नहीं नहीं, घबराइए मत, मास्टर जी अपने ही आदमी हैं।
1: अच्छा।
5: सुशीला, तुम पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तुम्हें कभी दिल्ली कभी मेरठ तो कभी कानपुर भागना होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भगत सिंह को कैसे छुड़ाया जाए।
4: लेकिन पंडित जी, ये कैसे पता चले कि भगत सिंह क्या चाहते हैं? हम में से कोई भी लाहौर जाकर उनसे मिल तो सकता नहीं है।
5: हाँ, इसी सवाल ने परेशान तो मुझे भी कर रखा है।
4: पंडित जी, यदि ये काम कोई महिला करे तो पुलिस को कोई शक नहीं होगा।
5: कहते तो आप ठीक हैं। बहन सुशीला, क्या तुम लाहौर जाके भगत सिंह से भेंट कर सकती हो?
1: पर आजाद भैया, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस काबिल नहीं?
5: अरे नहीं नहीं, तुम काबिल हो, तुम में हिम्मत है। अच्छा जाओ और लाहौर जाकर पता लगाओ कि भगत सिंह के बचाव के लिए हमें क्या करना है।
3: भगत सिंह, तुमसे मिलने कोई औरत आई है।
6: मुझसे मिलने? औरत?
3: हाँ चलो।
6: कौन आया है ये?
3: कौन?
6: सुशीला बहन, तुम
1: लो भैया, पहले ये रोटियां खाओ, मक्के की रोटी और साग है। भैया हम जल्द ही तुम्हें छुड़ा लेंगे।
6: देखो सुशीला बहन, पुलिस को तुम पे शक हो जाएगा, अब तुम यहाँ मत आना।
1: मैं क्रांतिवीर भाइयों की बहन हूँ, इन गोरे बंदरों से नहीं डरती। अरे भैया, जब मौका मिलेगा जरूर आऊंगी, आप मेरी चिंता मत करना। बस मेरी यही कोशिश है कि किसी तरह आपको इस जेल से छुड़ा लूं।
6: तुम परेशान मत हो बहन, और भाइयों से कहना वो काम जारी रखें। मेरे ना रहने से कुछ नहीं होगा, आजादी के लिए मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। तुम जाओ, अलविदा।
1: नहीं भैया, मैं गांधी जी से बात करूंगी कि वो अंग्रेज सरकार से सीधे वार्ता में तुम्हारी सजा के बारे में बात करें।
6: नहीं बहन नहीं।

0: इस कागज में भी लिखा है कि सुशीला दीदी ने 13 जनवरी 1963 को इस संसार से विदा ली, सबको चलते रहने की प्रेरणा देकर।
1: हाँ, वो कहती थी यह अनमोल जीवन तभी बचेगा जब स्वस्थ रहेगा तन और मन।
2: वाह भैया वाह, सुशीला दीदी तो हम सब के लिए प्रेरणा है।
3: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। गली गली।

अरे अरे अरे हर हा उड़ती चिड़िया तेरे सदके फिर मत जाना चलना बच के मिस्टर समझे क्या मिस्टर समझे क्या खिलाड़ी है कोई अनाड़ी।

0: अरे लड़के एक कदम पीछे।
1: अरे बैठ।
0: झूम के पीछे घूम और नक दे भाली। अरे लोग बजाएंगे खुश होकर थाली।
1: ताली ताली ताली ताली रे।
0: झूम के पीछे घूम और नक दे भाली। अरे लोग बजाएंगे।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद घ्या।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज। वेलकम सिस्टर शिवानी।
3: ओम शांती।
2: वेलकम टू बीइंग दिस।
3: थैंक यू सो मच।
2: आपने पिछली बार कहा था कि कम से कम हम लोग एक छोटी सी प्रैक्टिस करें कि तब जब भी गुस्सा आए या कोई इरिटेशन आए तो हम कुछ बोले ना, एटलीस्ट सुपरफिशियल आउटर लेवल से शुरू करें, ABCD से कम वहां तो रोक लें। आपने यही कहा था ना, उससे मिलता जुलता कुछ मैं पढ़ के सुनाऊं।
3: अच्छा,
2: 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इज ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड 90% इज ड्यू टू रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस। इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट अंडर्स।
3: आप एक एक बात जो पता नहीं कहां से ढूंढ कर लाते हैं, ऐसा लगता है कि सारी जो हम बातें कर रहे हैं वही बातें आपको और मिलती जा रही हैं, ताकि जो बात हम कर रहे हैं एंड इट्स ऑन आवर माइंड ऑल्सो।
2: हाँ, जो जो मैं खोजता रहता हूँ ना
3: वो अपने आप फिर कहीं ना कहीं से मिल जाती है। बट वो आपने होमवर्क ट्राई किया?
2: हाँ किया, लेकिन मैं फेल हो गया।
3: आप फेल हो गए? एवरी टाइम?
2: बिल्कुल फेल हो गया।
3: एवरी टाइम फेल?
2: नहीं, बस देखिए क्या है ना, इरिटेशन हुआ, मैं रोका तो अंदर ही जलता रहा एक दो दो घंटा, उस पॉइंट को नहीं बोला, लेकिन उससे क्या होने लगा, चेहरे से दिखता था। लोग पूछते थे और एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था, लेकिन अंदर दबे हुए हैं। और मैंने कहीं सुना भी था कि डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको दबा के मत रखना। चलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कुछ जरा डिफिकल्ट है।
3: राइट, नाउ एंगर एक बार जो क्रिएट हो गया तो उसको दबा के रखना डिफिकल्ट है, और एक्चुअली उस टाइम हम अवेयर भी नहीं होते। अगर उतनी अवेयरनेस होती कि ये अभी क्रिएट हुआ है लेकिन इसको बाहर नहीं निकालना है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड वे। जब हमें यही अवेयरनेस नहीं थी कि हम अपने थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने कहा वो थॉट्स अपने आप आ रहे हैं। अगर अवेयरनेस होती कि हमने क्रिएट किया फिर हमने बोला, तो देन दे विल हैव टू बी अ लिटिल पॉज कि मैंने क्रिएट किया फिर मैंने बोला। वी आर वर्किंग टूवर्ड्स फिनिशिंग द क्रिएशन ऑफ एंगर, और एक नई क्रिएशन करनी है कि मेरी सोच ही एक अलग तरह की क्रिएट हो, फिर मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि क्या सोचा, वो बोलना है, कैसे करना है। लेकिन ये एकदम से नहीं हो जाएगा, है ना, ये एकदम से नहीं होगा।
2: मैं बीच में डिस्टर्ब करूं? एक चीज हुई, बोलने के बाद याद आया कि यार मुझे ये तो होमवर्क था, मुझे बोलना नहीं था।
3: बट दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। That is also very good. See, अगर पहले क्या था, लेट्स गो फ्यू डेज बैक और सम टाइम बैक, जब हम
2: लिए था, क्यों नहीं बोलूं, अच्छा हुआ ना,
3: दैट इज
2: ऐसे करेगा तो क्यों नहीं करेंगे हम,
3: दैट इज इट
2: एंड आई एम राइट। एंड उसको सिखाएंगे कैसे, करेगा कैसे बंदा, फिर ठीक कैसे होगा।
3: परिवर्तन है, परिवर्तन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आज सोचा, आज समझ में आ गया, कल हो गया। व्हेन वी से अवेयरनेस, हमें परिवर्तन का भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अवेयरनेस की चेंज कैसे आएगा, बिकॉज उसकी भी एक इक्वेशन है। पहले रिएक्ट किया तो उसको जस्टिफाई किया, कोई भी रिएक्शन, नॉट ओनली एंगर, कोई भी रिएक्शन, क्रिटिसाइज किया उसको जस्टिफाई किया हमने, हम हर्ट हुए उसको जस्टिफाई किया।
2: मेरे साथी भी जस्टिफाई करते थे।
3: हाँ, सभी जस्टिफाई करते
2: थे। नहीं बोल सके तो बोल दिया, वेरी गुड,
3: राइट, सो जस्टिफाई।
2: हिम्मत है आप में।
3: आपको किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लग रहा है, आपने कहा नेचुरली बुरा लगेगा, हमारे आसपास भी सारे लोग कहेंगे नेचुरली बुरा लगेगा, तो हम सब ने उसको जस्टिफाई किया। एंड जब हमने उसको जस्टिफाई किया मतलब हमने अपने आप को कहा यू वर राइट, ही वॉज रॉन्ग, एंड ऑलवेज वी वुड फाइंड समथिंग। जो स्टिम्यूलस था हम रिएक्ट कर रहे थे, एंड एवरी टाइम द इक्वेशन वॉज आई एम राइट दे आर रॉन्ग। जब तक ये पहली लाइन नहीं टूटी जस्टिफिकेशन की, तब तक तो जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं होनी। एंड वी हैव स्पेंट major part of our life only justifying our reactions. And हमारे आसपास के लोग उसको endorse भी कर देते हैं, उसको stamp लगा देते हैं, और हम जाते भी ऐसे ही लोगों के पास है.
2: हाँ.
3: You know, हम जब उदास हैं, परेशान हैं, गुस्सा है, हम अपनी बात शेयर करने भी ऐसे ही लोगों के पास जाएंगे जो कहेंगे यस यस यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग लाइक दैट, इट इज नेचुरल टू फील लाइक दिस एट दिस टाइम. तो फिर वो हमारे रिएक्शन और भी ज्यादा री इन्फोर्स हो गया कि आई वॉज राइट. जितना वो री इन्फोर्स होता गया, जस्टिफाई होता गया, उतना वो स्ट्रांग बनता गया एंड उतना वो मेरा जीवन जीने का तरीका बनता गया.
2: सिस्टर एक बात पूछनी थी आपसे. एक बार मैं एयरपोर्ट पे देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी यू नो उससे बहुत आर्ग्यू कर रहा था जो

0: जो चीज हानिकारक है, जो चीज डैमेजिंग है, जो कोई बेनिफिट क्रिएट कर ही नहीं सकती है,
1: मतलब चोरी की, थोड़ी की या बड़ी की चोरी,
0: तो जो चीज है ही डैमेजिंग, ये भी नहीं कि वो न्यूट्रल है, कि बेनिफिट नहीं क्रिएट करती, न्यूट्रल है अगर थोड़ा लिया, एक बूंद भी जिस चीज का लिया वो कुछ ना कुछ नुकसान ही अगर करके जाएगा तो उसके लिए जस्टिफिकेशन अब नहीं। इसी तरह एक भी तामसिक टॉक्सिक थॉट, चाहे मैं 5 मिनट के लिए उदास हुई, आई हैव टू टेल माई सेल्फ आफ्टर दोज 5 मिनट्स, दिस वॉज नॉट राइट फॉर मी, देन आई हैव स्टार्टेड मूविंग। अगर मैंने कहा तो पहले तो 1 घंटा गुस्सा आता था ना, अभी 10 मिनट ही आया, सो दैट वॉज फाइन, नो, इवन दैट आई हैव टू टेल माई सेल्फ, बट दैट वॉज नॉट फाइन। हाँ, कम हुआ, बट दैट इज स्टिल नॉट फाइन। इट्स लाइक सेइंग 10 सिगरेट लेते थे, अभी 5 ही लिया ना, सो दैट्स ओके, नो दैट्स ऑल्सो नॉट ओके।
1: हमारा लक्ष्य, हमारा गोल होना चाहिए,
0: गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, और जब तक गोल पर नहीं पहुंच रहे हैं, अपने किसी भी अनकंफर्टेबल रिएक्शन को कभी भी, लेट्स अंडरलाइन दिस, कभी भी किसी भी अनकंफर्टेबल रिएक्शन को राइट नहीं कहना है। राइट कहते ही वो संस्कार और स्ट्रांग हो जाता है, जो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स इरेजिंग इट, डोंट इंडोर्स इट ever, ever, अपना भी नहीं, किसी और का भी नहीं।
1: अगर समझो किसी को कैंसर हो जाए और बोले ठीक है, इट्स राइट, वहां नहीं बोलते, तो इस बात को हम उतना सीरियसली क्यों नहीं लेते, ये कैंसर है, ये भी एक डिजीज है, ये बीमारी है।
0: ये फाइनली कैंसर भी तो क्रिएट करेगा।
1: हाँ,
0: ये ही फाइनली, आज मेडिकल साइंस हमें बता रही है कि हमारी मेजोरिटी बीमारियां इन इमोशनल ब्लॉकेजेस से ही तो क्रिएट हुई है। किसी के अंदर दबाने की आदत है, किसी के अंदर कंट्रोल करने की आदत है, किसी के अंदर गुस्सा करने का, लॉन्ग टर्म जब वो संस्कार रहा, रिपीटेड फ्रीक्वेंट पैटर्न रहा, तब एक इमोशनल ब्लॉकेज, फाइनली शरीर के अंदर एक एनर्जी ब्लॉकेज, फाइनली एक बीमारी। फिर हम बीमारी को ठीक करते हैं, जैसे आपने कहा कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जॉइंट पेन्स, हार्ट प्रॉब्लम, हम उन बीमारियों को ठीक करने में कितनी मेहनत करते हैं?
1: अगर इस बीमारी को जो आप कह रहे हैं आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, एटलीस्ट सुपरफिशियल बाहर के लेवल पे देख लेते हैं, अगर ये मेरी ठीक नहीं हुई, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, तो क्या ये मुझे दुख नहीं देगा? क्या इससे मुझे कैंसर नहीं होगा? क्या इस पेन से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा? फिर कौन सा पेन बढ़िया है? कौन सा पेन
0: जो आपने
1: मैं गाली देके किसी को डांट डूंट के अपना तो निकाल लूं?
0: सी, अगर नहीं दिया, मतलब गुस्सा सप्रेस किया, तो मुझे पेन नहीं होगा।
1: नहीं, ये जब बीमारी में मुझसे मेरा एंगर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, चाहते हुए भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं गलती कर जाता हूँ, फिर मैं गलती करता हूँ।
0: वन थिंग यू अंडरलाइन, अगर आपने कोशिश करनी शुरू कर दी, वो कम होना शुरू हो गया है। एंड दिस इज फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी।
1: आर यू श्योर?
0: 110%। वेर एवर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, थिंग्स हैपन।
1: वेर एवर अटेंशन गोज, टेंशन गोज।
0: टेंशन गोज अवे, यस, एब्सोल्युटली। यू नो, एनर्जी, योर थॉट प्रोसेस हैज टू फ्लो ऑन दैट थिंग। एंड फ्लो, अब ये पहले हमने कहा गुस्सा जायज है, अब हमने कहा मुझे इसको खत्म करना है।
1: सिस्टर, लोग बोलते हैं मुझे सिगरेट नहीं छूटती, लोग बोलते हैं मेरा नेचर नहीं बदलता, लोग बोलते हैं कि मैं,
0: एक मिनट, जिनसे सिगरेट छूटती नहीं है ना, वो एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहते।
1: और जो गुस्सा नहीं छूटता है, नेचर नहीं बदलता, वो भी नहीं बदलना चाहता है क्या?
0: नहीं, वो जब तक जस्टिफाई करेगा, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज मेरी राइट है। इट्स लाइक सेइंग स्मोकिंग छोड़ना है, एंड जब परिस्थिति आए तो यू से स्मोकिंग इज माई मेडिसिन। इट्स दैट एक्सट्रीम। यू आर सेइंग स्मोकिंग ही मुझे रिलैक्स करती है इस टाइम पे, मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। एक तरफ से लॉजिकली बोलते हैं उसको खत्म करना है, जब डॉक्टर के सामने बैठे हैं तो कहेंगे यस यस आई हैव टू फिनिश इट, और जब सिचुएशन आई तो कहे दिस इज माई रिलैक्सेंट, दिस
1: डीप स्ट्रेस। मैं ड्रिंक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद चाहिए, बहुत दिन से प्रॉपर नींद नहीं मिली,
0: मैं परेशान हूँ, घर में इतनी टेंशन है, झगड़ा हो गया, इफ आई डोंट हैव माई ड्रिंक आई वोंट बी एबल टू स्लीप, दिस इज माई मेडिसिन। तो पॉइजन को फिर परिस्थिति आने पर अगर मेडिसिन कह देंगे तो जस्टिफिकेशन हो गया ना। हाउ विल इट एवर गो? इट विल नेवर गो। कोई भी संस्कार नहीं बदलेगा, कोई भी चेंज लाने में, चाहे वो

0: घर की आदत है या अंदर की कोई आदत है, तीन चीजें पता होनी चाहिए. वाई टू चेंज. अल्कोहल छोड़ना है, वाई. सिगरेट छोड़नी है, वाई. रिएक्शन नेगेटिव अपना छोड़ना है, वाई. पहले तो सारे वाई ढूंढ लो उसके, वाई टू चेंज. सेकेंड, हाउ टू चेंज, क्या करना है. जैसे हम इस सीरीज में देख रहे हैं, धीरे धीरे और गहराई में देखेंगे क्या क्या करना है ताकि हमारे वो संस्कार बदल जाए. लोगों को लगता है कि हाउ टू चेंज का आंसर सबसे डिफिकल्ट है, यू नो, ये नहीं पता, ये तो बहुत इजी है. हाउ टू चेंज बहुत इजी है, वाई टू चेंज भी बहुत इजी है. वाई चेंज, हमारे पास इतना सब नॉलेज है अभी कि वाई आई नीड टू चेंज दिस. हाउ टू चेंज भी बहुत नॉलेज अवेलेबल है, हाउ टू चेंज. थर्ड क्वेश्चन, वॉन्ट टू चेंज.
1: वॉन्ट वाली बड़ी प्रॉब्लम है.
0: वॉन्ट टू चेंज ये सबसे पावरफुल लाइन है. डू आई वॉन्ट टू चेंज? अनलेस आई वॉन्ट टू चेंज, ऑल द वाई टू चेंज एंड हाउ टू चेंज डजंट वर्क.
1: जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी लंदन में एक बार फिर, तो एक मेरे फ्रेंड से मैं बात कर रहा था अबाउट अल्कोहल. यार हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आके दिन में नींद नहीं मिलती है, कभी रात की शूटिंग कभी दिन की, तो मैं ड्रिंक ले लेता हूँ. तो वो मुझसे कहने लगा यार, फिर दो तीन दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग में कहने लगा, यू नो यू स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड सुरेश, तुम्हारा जो प्रोफेशन है उसमें यूथ चाहिए, यंग दिखोगे, आपको तो छोड़ देनी चाहिए. तो मैंने कहा अरे खुशी से जियेंगे हम, बुढ़े का रोल कर लेंगे, बाप का रोल कर लेंगे, दादा का रोल कर लेंगे, मैं दारू क्यों छोड़ू, मैं तो मस्त लाइफ जीऊ. यू नो वॉन्ट वाली जो बात है, एक तरफ तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब उसका सवाल मुझसे पूछा गया तो इमीडिएटली बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अगर मैं बूढ़ा लगूंगा तो बूढ़े का रोल करूंगा.
0: सो ये वॉन्ट टू चेंज. तो जब तक आप वॉन्ट टू चेंज नहीं क्रिएट करते हैं, लेट्स नॉट स्पेंड टाइम एंड एनर्जी ऑन द वाई टू चेंज एंड द हाउ टू चेंज.
1: टाइम वेस्ट
0: वेस्ट बिकॉज वो होगा नहीं, वो होगा नहीं, बिकॉज द वॉन्ट इज नॉट देयर. कोई भी चीज के लिए वॉन्ट चाहिए, आई वॉन्ट टू चेंज दिस. तो वो क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा, जस्टिफिकेशन. रिएक्ट किया, एक्सेप्ट कर ले, नो प्रॉब्लम, आई गॉट हर्ट, आई गॉट अपसेट, आई गॉट एंग्री, आई मेड अ मिस्टेक. जस्ट लेट्स कम अप टू दिस वन स्टेप. एवरी टाइम आज सारा दिन में अगर हम रिएक्ट कर गए, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, आई एक्सेप्ट, सेइंग दिस टू माई सेल्फ ओनली, ये किसी और के लिए नहीं है, अपने आप के लिए, आई एक्सेप्ट दिस वॉज माई मिस्टेक, आई वॉन्ट टू चेंज दिस संस्कार. तो पहले जस्टिफिकेशन खत्म. सेकेंड स्टेप कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ मैंने गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मेरे गुस्से का कारण कौन था. तो मैनी ऑफ अस विल से, हाँ मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने बात बहुत गलत की, उनको बोलना नहीं चाहिए था इस तरह से.
1: नहीं, हाँ कई बार समझाया ऐसे मत करो,
0: फिर भी कर,
1: नहीं लगता, फिर भी किया.
0: तो मेरा रिएक्शन गलत था, आई एक्सेप्ट मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिलाया उन्होंने, मतलब जस्टिफिकेशन खत्म की, फर्स्ट स्टेप पर आए, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि वो गुस्सा मेरी क्रिएशन था, ब्लेम कर दिया. मेरा रिएक्शन, मैं बीमार हुआ, लेकिन मैं बीमार इसलिए हुआ क्योंकि मौसम खराब है, नॉट सेइंग मैं बीमार हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूँ.
1: हाँ, कितने लोग मेरे एनआरआई फ्रेंड्स आते हैं अमेरिका से, लंदन से, ऑल दैट, ये सड़क के ऊपर जो बॉम्बे में चौपाटी पे सारा गंद मिलता है, जंक फूड खूब खा जाते हैं, बोलते यार इंडिया का पानी खराब है, बीमार हो गया मैं.
0: सो वी नीड टू गो स्टेप वाइज. पहले हम जस्टिफाई करते थे कि गुस्सा ही सही है, अब हम वो लाइन पर पहुंच गए कि नहीं ये मेरे लिए नुकसान करता है, तो ये मेरा गलत था. लेकिन सेकेंड स्टेप अब और भी इम्पोर्टेंट, कि ये गुस्सा या जो भी रिएक्शन, ये मेरी क्रिएशन है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स. लेट एनीथिंग हैपन इन द वर्ल्ड, एंड एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, नॉट स्मॉल थिंग्स, एनीथिंग, तो भी मेरा रिएक्शन मेरी क्रिएशन है.
1: डिफिकल्ट है
0: ये रियालिटी है. ये डिफिकल्ट या इजी का, इसमें डिफिकल्ट हम तब कर कह सकते हैं कि चेंज कैसे लाना है, तब हम फिर भी बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है, दैट्स ओके, बिकॉज तब कुछ करना है. बट रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि क्रिएशन तो मेरी है.
1: मेरी इतनी अच्छी कांच की बॉटल तोड़ दी इसने, मेरा इतनी अच्छी नई गाड़ी का एक्सीडेंट ड्राइवर ने मार दिया,
0: नो दैट्स ओके,
1: तो मुझे गुस्सा आया,
0: गुस्सा आया ओके, गुस्सा आया इज ऑल्सो फाइन. इम्पोर्टेंट इज गुस्सा नॉट गुड,

0: यू आर रियली रियली रियली हैप्पी, एंड उस समय ड्राइवर ने वो गाड़ी कहीं ठोक दी, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा।
1: मानता
0: आप बोलेंगे उसको एक बार, फिर बोलेंगे चलना छोड़, मूड बहुत बढ़िया, चलो चलते। आप भी वही, ड्राइवर भी वही, गलती भी वही, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी है इस समय, स्थिति मन बहुत खुश है इस समय, तो वो खुशी में रिएक्शन चेंज हो गया ना, ये भी आपने ही क्रिएट किया। अब ऐसे ही किसी और समय पर फिर ड्राइवर भी वही, आप भी वही, गलती भी हुई,
1: गलती शायद कम भी हो,
0: कम भी हो, मूड अच्छा नहीं हो, बड़ा रिएक्शन हो गया। और एक परिस्थिति, ड्राइवर भी हुई, आप भी हुई, गलती भी हुई, लेकिन आज आप अपने ऊपर अवेयरनेस से हैं, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया ना, नेक्स्ट टाइम गाड़ी ध्यान से चलाना। ये भी आपकी क्रिएशन है, ये नहीं कि ड्राइवर ने कुछ कर दिया, क्योंकि ड्राइवर हुई, गलती भी हुई, लेकिन आज आपका रिस्पॉन्स अलग। तो कैसे हुआ, हर बार जब हम प्यार से बात करते हैं वो भी हमारी क्रिएशन है, हम फॉरगिव कर देते हैं वो भी हमारी क्रिएशन है, हम कंपैशनेट होकर पूरी बात को भूल ही जाते हैं कम्प्लीटली, वो भी हमारी क्रिएशन है, हम इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़कर गलत बात बोल देते हैं, वो भी हमारी क्रिएशन है। सिचुएशंस वही है, लेट्स जस्ट टेक दीज टू स्टेप्स फर्स्ट, जस्टिफिकेशन फॉर द रिएक्शन दैट इज फिनिश्ड, एंड सेकेंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम फिनिश। ये दो चीजें करनी है आज सारा दिन में, बस अभी चेंज नहीं करना, अभी चेंज भी नहीं करना, करो गुस्सा आज सारा दिन में, जितनी बार करना है करो, मतलब जो आ रहा है उसको आने दो, कोई बात नहीं। सिर्फ जैसे आपने कहा ना, आने के बाद भी जो चेकिंग है, ये वन दिस वॉज नॉट राइट इन एनी सिचुएशन, लेट्स फर्स्ट सी दिस, नॉट दैट छोटी छोटी बातों में दिस वॉज नॉट राइट, और कोई थोड़ी बड़ी बात आ गई यहां तो गुस्सा आना ही चाहिए था, नहीं, दिस वॉज नॉट राइट एनी वेयर, एवरी टाइम, नेवर राइट, ये इम्पोर्ट, तभी जस्टिफिकेशन फिनिश होगा, कभी राइट कभी रॉन्ग तो नहीं फिनिश होगा। आज सब ठीक है तो सिगरेट नहीं पीऊ, लेकिन आज तो बहुत टेंशन है तब पी लिया, नॉट वर्किंग, जस्टिफिकेशन नेवर। एंड सेकेंड, ये जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया, बात चाहे कुछ भी थी, ये क्रिएशन कम्प्लीटली मेरी थी, कम्प्लीटली, उसमें भी ऑलवेज एंड 100% पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब जो तीसरा स्टेप है चेंज करने का, बहुत इजी होने वाला है। दिस इज हाउ वी हैव टू गो, एंड दैट्स वाई वो जो आपकी वर्डिंग्स थी वो कितनी सुंदर है, 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, 90% is because of the wrong tone of voice.
1: Raise the words, not your voice.
0: Why? Why? What does it mean, raise the words? Raise the words means shresht sundar bol bolo, powerful shabd bolo. Aapko kuch kaam karwana hai kisi se, shabdon ko uthao. Aur shabdon ko uthao matlab accurate, perfect, powerful word. Aapke do shabd.
1: Positive.
0: शब्दों को उठाओ, रेज द वर्ड, जब रेज द वॉइस होगी,
1: शब्द स्ट्रांग बोल दो लेकिन आवाज मत उठाओ,
0: नहीं, जब रेज वॉइस होती है, आवाज उठती है, तो शब्दों की वैल्यू
1: जीरो,
0: और शब्दों की क्वालिटी, हमारे मुख से कुछ भी निकल जाता है तब, दूसरे को तो बुरा लगता ही लगता है, हमें भी बुरा लगता है तब, क्योंकि जब एनर्जी टर्ब्यूलेंट हो गई, मन गया आउट ऑफ कंट्रोल, वाणी भी गई आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर आवाज उठ गई, हमें लगा हमने ऊंची आवाज में बोलेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आवाज उठी, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड लाइन वाज सो ब्यूटीफुल, कि बारिश से पौधा उगता है, थंडर से नहीं। मतलब आपको कुछ रचना रचनी है, कुछ काम करवाना है, क्रिएट करना है, तो उसको नरिश करना है, प्यार, पावर, शक्ति, पॉजिटिविटी से नरिश करो, चाहे अपने आसपास के लोगों को, परिवार को, काम के स्थान को भी।
1: ये सारा रिसोर्ट है हजारों एकड़ में, मैं देखता हूँ बारी बारी स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं,
0: छोटे नरिशमेंट,
1: इतना नरिशमेंट दे रहे, अगर यही एकदम बड़ा कोई लाके एकदम पानी का एकदम,
0: नॉट ओनली दैट, अगर यहाँ बड़ा तूफान आ जाए अभी,
1: थंडर आ जाए,
0: ये सारी सुंदर रचना उखड़ भी सकते है। तो थंडर क्या करता है और नरिशमेंट क्या करती है, वॉइस की टोन क्या करती है और वर्ड्स की पावर क्या करती है, हमें काम करवाना है ना, सुंदर पावरफुल वर्ड्स यूज करो, ऐसी पावर हो शब्दों में कि शब्द बोले

0: और सामने वाला मना न कर पाए, मना कर ना पाए इसलिए नहीं क्योंकि मजबूरी है, मना करना ना चाहे क्योंकि बोल इतने सुंदर है, वो उस तरह से मना न कर पाए कि इतने सुंदर बोल बोले हैं, इतने प्यार से बोला है कि मैं मना ही नहीं कर सकता इनको अब, दैट इज रेज द वॉइस। सो जस्ट टेक केयर ऑफ द टोन, जितना आवाज वॉल्यूम कम, वॉल्यूम मतलब एंगर, वॉल्यूम डजंट मीन टोन ऑफ द वॉइस, इट इज द एंगर, जितना वो कम होता जाएगा मन कंट्रोल में आएगा तो वर्ड्स भी फिर कंट्रोल में आएंगे, कम बोलकर सुंदर बोलकर एंड मोर इम्पोर्टेंट प्यार की एनर्जी से बोले हुए बोल, तो आपका गार्डन बहुत सुंदर बनेगा। एंड इसीलिए जो हमने लास्ट टाइम देखा था, सामने वाला गार्डन भी सुंदर बनेगा मटेरियलिस्टिक, और जो प्यार और खुशी वाला गार्डन है वो भी बहुत सुंदर बनेगा, दोनों जगह काम अच्छा हो जाएगा। फिर
1: ये होमवर्क लेकर मैं चलता हूँ, फिर अगले एपिसोड में मिलकर बताता हूँ आपसे क्या हुआ रिजल्ट इसका।
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच, नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू सो मच।
2: 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड 90% इज ड्यू टू रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। Raise your words, not your voice. The first step to transformation is not to justify your negative emotion, but to take personal responsibility of having created it. When we justify our emotion, we blame others for it. We then expect them to change and do not find the need to change ourselves. To change any habit, we need to answer 3 questions. Why should I change? How do I change? And most important, do I want to change? Unless the want to change is there, the how to change will not get improved.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
1: करायचं.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर अबॉब फिरकतं. त्याचसोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: Namaskar and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. इतना लंबा हमने सफर तय कर लिया, अब ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं. और कितने सारे वो रहस्य सामने आते जा रहे हैं जो रहस्य लगते थे, लेकिन सच कितना सहज है. अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा की पहचान, और फिर जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय की पहचान. लेकिन अभी भी कुछ और बातें हैं जो कहीं न कहीं छुपी है, जिनका रहस्य जो है उन रहस्य से पर्दा हटना जरूरी है. तो चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और हर बार की तरह इस पूरे सफर में हमें जितने भी रहस्य हैं उनसे दूर ले जाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सुश्री शिवानी, इतनी सारी बातें कर ली, इतना सब कुछ जान लिया हमने. खास जो हमने बात जानी थी, अगर पिछली कुछ कड़ियों को देखें तो जिस समय में हम रह रहे हैं, हम में से हर कोई ये महसूस कर रहा है कि समय बहुत बलवान है, ये भी कहते आ रहे हैं, लेकिन समय बहुत खराब चल रहा है, ये भी सुनते आ रहे हैं. और जिस तरह से क्लैरिटी आई है हमारे सामने कि यस, कितने युगों की बात की है, और अब आई थिंक अल्टीमेट हो चुका है, बिकॉज ब्लैकनेस इज देयर ऑल अराउंड अस. आपने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम सोल लेवल पर या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा. उससे पहले एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं कहां से होते हुए आए हैं.
5: हमने सबसे पहले यही देखा कि टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक मैनर. यू नो, टिल नाउ देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन अबाउट ये सृष्टि कब शुरू हुई, अबाउट द क्रिएशन. और जहां क्रिएशन की बात आती तो फिर अब ये बात आने लग गई कि डिस्ट्रक्शन कब होने वाली है इसकी. यू नो, बिकॉज जो चीज क्रिएट होगी तो फिर वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय भी होगी. एंड राइट नाउ वी

0: seeing the world talking about destruction, you know, everywhere. And uski wajah se ek bhay, you know, ek insecurity ki aakhir aane wala samay kahan hame lekar ja raha hai. Aur ab to paryavaran ki wajah se kahin na kahin aur nuclear weapons jo sare ready hai aur jo bahut sare prophecies ho chuki hai, you know, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई है.
1: नासी फेमस की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो लोग तो इतने डरे हुए हैं कि अब होने वाला है.
0: सो एवरीवन इज लुकिंग एट द ईयर नाउ. नाउ इट्स बिकम ईयर स्पेसिफिक, यू नो. पहले था कि ये हो सकता है या ये होगा शायद, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में. एंड वो वर्ष भी जो आया है वो बहुत नजदीक लग रहा है कि 2008, 2010, 2011. तो नाउ वी हैव रियलाइज दैट इट इज within our lifetime. पहले लग रहा था कि हाँ सृष्टि को कुछ होने वाला है,
1: चलो जब होगा तब देखा जाएगा,
0: जब होगा तब देखा जाएगा. लेकिन अब ये लगता है कि अपने ही इस लाइफ टाइम में होगा. तो समवेयर इवन दो आई डोंट नो हाउ मच वी पे अटेंशन टू इट, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच बीच में वो डाउट आ जाता है. बट फिर हम उसको फिर इग्नोर कर देते हैं. सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और ये लगता है कि जब होगा तो सारी दुनिया पर होगा. अभी तक हम अगर सुन भी रहे थे इन्फॉर्मेशन को तो हम एक नेगेटिव नोट पर सुन रहे थे कि हाँ ये सब होने वाला है, हाय क्या होगा, दुनिया का क्या होगा. बट नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज साइक्लिक, तो फिर रात को डर नहीं लगता. हाँ होता है कि अंधेरा है तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठ जाते कि दिस इज द एंड. हमें क्योंकि ये पता होता है कि रात के बाद सुबह होनी है.
1: इनफैक्ट एक और बात यहाँ जी जोड़ूंगी कि रात में भी रोशनी करने की टेक्निक हमने सीख ली.
0: आपसे देख ली ताकि वो रात भी उतनी तकलीफ नहीं देगी अगर हमें उसमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना आ जाए. एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इम्पोर्टेंट. वन इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज वी नो कि नाउ इट्स ओनली अ साइन दैट द मॉर्निंग इज हियर. बस एक थोड़ा सा पीरियड जैसा बीच में है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट ब्यूटीफुल मॉर्निंग व्हिच इज टू कम. जब हमें ये समझ में आया कि टाइम इज साइक्लिक, वी अंडरस्टूड दैट सोल मैटर एंड गॉड इज एनर्जी. तो एनर्जी पे फिर कुछ लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, तो इसलिए जितनी नंबर ऑफ सोल्स है वो फिक्स्ड है. उसमें ना कोई एडिशन है ना कोई सब्ट्रैक्शन है. एंड द अदर इज एनर्जी मूव्स फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट. वो पहले एक ऑर्डर्ड स्टेट में है, जब वो मूवमेंट या एक्शन में आती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऑर्डर्ड स्टेट से क्लियोटिक स्टेट में आ जाती है. एंड देन अनदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन्स. जो उस क्लोज्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करती है एंड दैट रीचार्जेस और रीकिंडल्स दिस सिस्टम ऑफ एनर्जी एंड इट मूव्स फ्रॉम अ कैओटिक स्टेज अगेन टू एन ऑर्डर्ड स्टेज. तो द सोल एनर्जी अपनी हाईएस्ट स्टेज पे थी, धीरे धीरे धीरे कर्म में आते आते आते इट मूव्स टू इट्स लोएस्ट स्टेज. फिनिश नहीं होती, लेकिन वो लोएस्ट स्टेज वो है जब वो हायर पावर को, जिसको हम परमात्मा निराकार शिव बाबा कहते हैं, ऑल माइटी अथॉरिटी, ही इंटरवीन्स इन टू दिस क्लोज सिस्टम एंड द सोल गेट्स चार्ज्ड अगेन. एंड सो दिस साइकिल विल गो ऑन कि द सोल विल बी इट्स हायर स्टेज, मूव कम टू इट्स लोएस्ट स्टेज, अगेन गो बैक टू इट्स हायर स्टेज. तो हमें समझ में आता कि थिंग्स आर मूविंग इन अ साइकिल. तो जैसे दिन का साइकिल सुबह दोपहर शाम रात, सिमिलरली ऑन अ बिगर लेवल नाउ सत्युग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, या हम कहें गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज एंड देन आयरन एज. तो अब आयरन एज में हम आकर पहुंचे. कलयुग ये शब्द तो बच्चे बच्चे के मुंह पर है, कलयुग है. आजकल हम कहते हैं घोर कलयुग है, जैसे आपने कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और घोर कलयुग है, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, दुख अशांति बढ़ गई है. लेकिन अब जब हमें ये पता चलता है कि ये कलयुग के बाद फिर
1: देयर इज दैट होप, यू नो,
0: इट्स नॉट अ होप, इट्स अ रियलिटी. सो इट्स जस्ट दैट वी प्रिपेयर फॉर दैट रियलिटी. अगर हमें रात के बाद सुबह नहीं है ये ना पता हो तो हमारी रात कैसी बीतेगी. इट विल फील कि ओ माय लाइफ विल बी लाइक दिस, यू नो. बट हमें पता है कि रात के बाद सुबह है, तो हम लोग उस रात को बहुत स्मूथली क्रॉस कर लेते हैं और सुबह की अपनी तैयारी कर लेते हैं. लेकिन सुबह की तैयारी हम करते हैं ना, वो

0: ओबर्ट लेवल सुबह आने वाली है, अब हमें उसकी क्या तैयारी करनी है?
1: वंडरफुल. एक्चुअली यू नो माइंडसेट चेंज करने की बात है. सबसे पहले ये कहने के बजाय कि सब कुछ खत्म होने वाला है या घोर कलयुग है, वी हैव टू से आवरसेल्फ सुबह आने वाली है. इट मेक्स ऑल द डिफरेंस.
0: इट कांट गो ऑन इन एनी वेज इफ यू लुक एट इट एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, इट जस्ट कांट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर. कब तक? कब तक ये चल सकता है? कहीं ना कहीं तो एक जंप आएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो परिवर्तन आएगा. तो जब हम सत्युग में थे या गोल्डन एज में थे तो सोल वॉज एब्सोल्युटली फुल, क्योंकि वो अपने घर से मैं आत्मा आई, तो मैं आत्मा 100% प्योर. तो दैट इज दैट पोटेंशियल स्टेट, बिल्कुल फुल, हाईएस्ट एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस, नेचुरल. जो चीज आज एक क्षण के लिए भी याद नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूं, वो उस समय में 100% नेचुरल थी. जैसे आज मैं शरीर हूं, ये 100% नेचुरल लगता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं ये हूं. उस टाइम मैं आत्मा हूं, इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था. इट वॉज नेचुरल कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं. लेकिन फिर कर्म करते गए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, दैट हाइएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मूव्ड फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट slowly, but it was a slow process. It was a slow process, gradual, and we have enjoyed that journey. We have. जो आज कई बार लोग पूछते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों, you know, इतना दुख है, इतनी अशांति है. लेकिन कितना समय?
1: अशांति तो अब आई है.
0: अब आई है. ऐसे तो हम कोई भी कर्म करने जाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, towards the end of the day हम थक जाते हैं, हम कोई गेम भी खेलते हैं. Towards the end of the game, we get tired, but we accept that. हम समझ लेते हैं कि चार घंटे अगर खेलेंगे तो आखिरी के 15-20 मिनट तो थक जाएंगे. और फिर जब थक जाते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं और फिर हम अगले दिन गेम फिर खेलते हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ उस 15 मिनट को देखें कि ओ ये गेम खेलने से तो थकेंगे, तो विल वी स्टॉप प्लेइंग द गेम?
1: नो, वी विल नॉट.
0: 3 hours 45 minutes वॉज गुड गेम, 15 minutes पेन. Can't give up the game.
1: But the pain is actually those 15 minutes. So that's the pain we're feeling now.
0: That's the pain. And why are we feeling that pain? Because now we are tired. You know, the soul has really reached its stage where हमें ये याद ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ. तो वो energy level बिल्कुल जैसे finished नहीं, लेकिन it's reached its lowest point. लेकिन now we have the opportunity because the highest source of energy, Paramatma, has intervened into the system. So all that I have to do is now
1: connect
0: to him. And I will again move from the chaotic stage to the ordered stage.
1: Before we get into that, how things will transform, how I'll transform, is like I want to ask you a question. ये जो हम पूरे चार युगों की बात करते आ रहे हैं, ये कई बार हो चुके हैं. That's what the question is, you know.
0: Cycle.
1: तो इसका मतलब कई बार हम
0: जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, कई बार हो चुके हैं.
1: कई दिनों में हो चुके, कई बार हो चुके,
0: कई बार हो चुके हैं. आप गिनती कर सकते हैं कितनी बार हुई है. साइकिल है. तो अगेन, अगर वो लीनियर होता तब आप कह सकते थे कब शुरू हुआ था, और अगर कभी शुरू हुआ था तो फिर फिनिश भी होगा. लेकिन साइकिल,
1: तो हम कई बार ये गेम खेलते आ रहे हैं.
0: एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी, क्योंकि कोई चीज अगर आपने कई बार की है, देन
1: आपको पता है कि आगे भी क्या.
0: इट्स वेरी इजी. से जब हमें शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं, तो हम आत्माएं उस समय बिल्कुल कमजोर होती हैं, एकदम थकी हुई, जैसे यू नो टायर्ड एट द एंड ऑफ द गेम. एंड परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि हे आत्माएं, तुम 100% प्योर थे, यू नो, तुम्हें अब फिर से 100% सोल कॉन्शियस बनना है. वेरी डिफिकल्ट इट सीम्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट. इन द प्रेजेंट सिनेरियो हाउ इज इट पॉसिबल कि एकदम 100% बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है. एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जब यू नो पीस एंड प्योरिटी एंड लव इज योर नेचुरल. पहली बार सुनने में इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब हमें समय का ज्ञान मिलता है, उससे सारा परसेप्शन चेंज हो जाता है. क्यों? आप आत्मा ही वैसे थे. आप थे 100% प्योर. आप वो 100% प्योरिटी से अब एकदम इम्प्योर वाले लेवल पर आए, लेकिन थे आप. और फिर आप इस इम्प्योरिटी के लेवल से फिर से प्योरिटी के लेवल पर जाएंगे.

0: जाओगे कि
1: आप ही जाओगे और आपने ये जंप पहले भी किया है क्योंकि ये साइकिल पहले भी घूमा है, तो आप थे, आपने पहले भी ये किया है, जो चीज आपने इतनी बार की है वो अब आप एक बार फिर करने वाले हो, देन इट बिकम्स मच मच इजियर. यू रियलाइज आई वॉज दैट, यू नो somebody हैज टू मोटिवेट, दिल से यू डन इट बिफोर सो नाउ यू कैन डू इट अगेन, बट इफ somebody asks मी टू डू समथिंग विच आईव नेवर डन बिफोर, इट विल बी लिटिल चैलेंजिंग, बट इफ आईव डन इट सो मेनी टाइम्स बिफोर देन इट सिंपल. तो इसलिए समय को पहचानने से सब कुछ बहुत सिंपल होने लगता है, क्योंकि मैं थी क्लीन, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे फिर से क्लीन होना है, बट आई वॉज क्लीन.
0: तभी सिस्टर शिवानी कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने ये देखा हुआ है पहली बार. इनफैक्ट बहुत से हमारे ऑडियंस, हमारे पास इस तरह की अगर हम किताबें भी उठाकर देखें तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं कि ये सिचुएशन मैंने पहले देखी हुई है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये जगह पे मैं आया हुआ हूँ.
1: yes. ये मेजोरिटी मेरे को लगता है हम सबके साथ होता है. कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर सीन में होते हैं, एक दृश्य में होते हैं, और हमें लगता है ऐसे के ऐसे मैंने इस दृश्य को पहले देखा है, यही के यही लोग थे, यही का यही बिल्कुल ऐसा हो रहा था, बट इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन. तो ये व्हाट इज दिस, अगर वो सीन पहले कभी हुआ ही नहीं है तो हाउ कैन आई फील कि मैंने वो देखा है. लेकिन अब हमें समझ में आता है बिकॉज द साइकिल इज अ रेपिटेशन, इट इज मूविंग एंड मूव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो जो सीन आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी
0: हो चुका है.
1: जो हो चुका है वो यहाँ स्टोर्ड है, और इसीलिए जो चीज यहाँ स्टोर्ड है जब वो फिर से होती है, और अगर वो हम क्लैरिटी से अपनी पास्ट मेमोरी को लें तो हमें लगता है हाँ यही का यही सीन हो चुका है. कई बार हम कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि आज ये होने वाला है, यू नो इंट्यूशन. इंट्यूशन भी कैसे होता है, इंट्यूशन के पीछे भी यही लॉजिक है, क्योंकि आज जो होने वाला है वो पहले हो चुका है, बिकॉज इट्स अ साइकिल. तो इंट्यूशन भी इसी पर आधारित है, क्योंकि आज जो मेरा कल जो मेरा फ्यूचर है, इट्स आई एम एट दिस पॉइंट इन द साइकिल एंड दिस पॉइंट इज माय फ्यूचर, इट्स माय टुमारो, बट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द साइकिल देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो माय पास्ट.
0: ओके,
1: सी लुक एट इट ऑन अ साइकिल, हियर आई एम टुडे, दिस इज माय टुमारो, बट देन इफ आई लुक एट इट फ्रॉम हियर दिस इज माय यस्टरडे. So that's why, because it's my yesterday तो याद है,
0: it's somewhere there in my mind.
1: यहाँ है. तो जितना जितना माइंड को साइलेंट करते जाएंगे तो वो yesterday याद आता जाएगा, और जितना yesterday याद आएगा tomorrow पता लगता जाएगा.
0: Now the time is कि we have to become proactive.
1: Absolutely. Because अब हमें बहुत कुछ करना है. Now is not the time कि we can just sit back and say कि जो होना है वो, क्योंकि बाहर का परिवर्तन जितनी तीव्र गति से होगा उससे ज्यादा तीव्र गति से हमें अपना आंतरिक परिवर्तन चाहिए, क्योंकि केओस बाहर बढ़ेगा, यू नो ऑर्डर्ड टू केओटिक स्टेज. तो जो बाह्य चीजें हैं वो अभी तक ऑर्डर्ड से केओटिक स्टेज में जा रही हैं, और अभी भी और केओटिक स्टेज में जाने वाले हैं. जो ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की या न्यूक्लियर व्हाटएवर एवरीथिंग, तो वो जो केओटिक स्टेज है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैट राइट नाउ. द इनर स्टेज, क्योंकि जब इनर स्टेज केओटिक स्टेज से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी तब बाहर वाली स्थिति
0: चेंज हो जाएगी,
1: फिर से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी. लेकिन पहले जिम्मेवारी आत्मा पर,
0: क्योंकि अगर हम अपनी जर्नी भी देखें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या क्योटिक स्टेज में हम इंटरनली आए थे बेसिकली, यू नो
1: वो पर्यावरण हाँ एकदम अच्छा था. तो सारा कुछ पहले आत्मा में होता है, फिर उसका प्रभाव प्रकृति पर होता है. आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर. आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर होती गई, उसके फलस्वरूप धीरे धीरे प्रकृति इम्प्योर हो गई. अब अगर आत्मा वेट करे कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊं, इट विल नॉट हैपन. रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम पर है कि मुझे अब फिर से वो 100% प्योरिटी पे जाना है, प्रकृति फिर अपने आप ठीक हो जाएगी. तो इसीलिए अभी का जो समय है, वी आर एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द वर्ल्ड साइकिल, क्योंकि अभी तक जो था बैटरी डिस्चार्ज होने का समय था, नेचुरल है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। बैटरी चार्ज हुई हुई थी, यूज किया, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई, लेकिन डिस्चार्ज से चार्ज
0: उसमें टाइम लगता है, और जब लास्ट
1: टाइम नहीं उसमें थोड़ा सा एफर्ट
0: भी करना पड़ता है, और जब लास्ट से एंड खत्म होती है तो एकदम से होती है।
1: हाँ, बिकॉज इसीलिए हमें पता चल रहा है कि अभी जो डिक्लाइन है ऑन मॉरल सोशल फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल लेवल, दैट डिक्लाइन इज
0: वेरी वेरी फास्ट।
1: यू नो, मोबाइल भी चार्ज करके चलते हैं तो सारा दिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, लेकिन एंड की दो लाइन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो अभी हम वो ही समय पर पहुंच रहे हैं जो डिक्लाइन बहुत फास्ट होगा, तो इसलिए वो फिनिश तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले अपने आप को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज से डिस्चार्ज हम अपने आप हो गए थे, इसलिए परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन अब डिस्चार्ज से चार्ज, वो जो एक जंप है, ये बहुत हाई जंप है, और ये हम आत्मा अपने आप नहीं कर सकती है। एंड तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है, एंड ये अब का जो समय है जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, कनेक्शन होता है, या हम कहें आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, और इसीलिए इस समय को हम संगम युग कहते हैं। अब हम कलयुग में वैसे तो हैं, जब तक हमें अपना और परमात्मा का परिचय नहीं, लेकिन जब हमें वो परिचय मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, अब हमारी जीवन कलयुग वाली नहीं, अब हम वो संगम के समय पर हैं। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज, संगम। किसका संगम? आत्मा और परमात्मा का संगम,
0: स्ट्रेंथन्ड एक्चुअली।
1: यस, एंड दैट्स व्हाई दिस एज इज कॉल्ड द डायमंड एज, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एज ऑफ द होल साइकिल, क्योंकि आत्मा का अपने पिता के साथ संगम है इस समय। सारे साइकिल में तो हम डिस्चार्ज होते आए, नो बिग डील, नेचुरल, लेकिन जब चार्ज होने का समय है, दैट इज अ बिग जंप फॉर द सोल। तो दिस एज इज द डायमंड एज। तो हम सब आत्माएं अभी एक मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड से गुजर रहे हैं ऑलरेडी। जो आने वाला समय है वो तो सुंदर है ही है, दैट इज द गोल्डन एज, लेकिन अभी जो समय चल रहा है जहां आत्मा अपने पिता से फिर संबंध जोड़ती है, ये संगम युग है।
0: मोस्ट एक्साइटिंग
1: वेयर यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्डन एज एंड नाउ। गोल्डन एज में सब कुछ ही अच्छा है, यू नो, तो आपको अच्छाई का भी एक्सपीरियंस कब होता है? जब आपने अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को साथ साथ देखा हो। सत्युग में आप हमें फील भी नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिकॉज होगा ही अच्छा,
0: नेचुरल,
1: इट विल बी नेचुरल। सुख क्या होता है वो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुख क्या होता है उसकी अनुभूति नहीं है। लेकिन अभी का जो समय है, जहां अभी हमारा जीवन दुखी है, अशांत है, परेशान है, और इसमें परमात्मा से संबंध जोड़ के हम उसी कलयुगी समय में रहते हुए, जहां चारों तरफ त्राही है, अगर हम अपने जीवन को वो सुखी, पवित्र और शांत स्वरूप बना सकते हैं, तब वो जीवन कैसे होगी?
0: एंड
1: दैट्स वाई इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल पीरियड। इट्स दैट्स वाई यू नो वी आर नॉट वेटिंग फॉर सत्युग टू कम, नो वी आर नॉट, बिकॉज this period is more beautiful than that, because my life becomes so beautiful right now. To ye wo sangam yug hai, kalyug se satyug, in dono ka bhi sangam hai abhi, aur atma aur parmatma ka bhi sangam hai. So this is the period of transformation. To ghadi jo ab hai wo bas 12 bajne ko kuch hi minute bhi nahi kahenge ab to, aakar pahunchi hai, and it has just to move, and the cycle has to begin all over again. So this is that period of transformation, jahan from 100%, not 100%, but very impure, we will jump to a stage of 100% pure. Aur usko karne ka tarika kaise hoga?
0: What I can feel as a meditation,
1: yeah,
0: the way I link, because that, see, if we look at, mujhe lagta bhi hai ki sare darshak jo hamara dekh bhi rahe hain program, hamare parivar ka hissa hai ki अब दिन का सबसे खूबसूरत वक्त वो हो गया है जब हम वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं। यू नो, इट हैज मे बी इट्स 10 मिनट्स, मे बी इट्स 15 मिनट्स, मे बी इट्स हाफ एन आवर, बट दैट्स द पीरियड यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू, एंड इफ यू मिस इट यू डोंट लाइक इट, यू वॉन्ट इट टू बी देयर।
1: तो अभी के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में दो चीजें होंगी, मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होगा कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है, दे विल री इमर्ज, वो कॉन्शियसनेस फिर से आती जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस जो अब आएगी वो ही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगी। सत्युग में जाने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए, यू नो, जो हम

0: consciousness, because the soul over there was in 100% soul consciousness. अब परमात्मा आकर हमें वापस उस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो जहां वो कॉन्शियसनेस अभी हमने अपने अंदर जागृत की, तो वही अवेयरनेस कि हम क्या थे वो फिर से जागृत होने लगेगी. पीस, प्योरिटी, लव, पावर, जो कि हमारी ओरिजिनल संस्कार थे, लेकिन इतने सब युगों के बाद वो स्टैक जो था संस्कार का, तो ये सारे संस्कार एकदम नीचे चले गए थे स्टैक में. तो मेडिटेशन क्या करेगा, नीचे से इनको एकदम ऊपर के लेयर में आ जाएगा और हमें वो अवस्था में ले आएगा जो हम थे और जो अब हम बनेंगे घर जाने से पहले. क्योंकि द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी क्वाइट केओटिक आउटसाइड, यू नो द आउटसाइड क्लीनिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एक तरफ पुराना घर टूटता है और दूसरी तरफ नया घर बनता है. तो एक तरफ कलयुग का परिवर्तन होगा, सृष्टि का परिवर्तन होगा, जो हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, स्नो मेल्टिंग, वी से 20 फीट द सी लेवल विल राइज, ऑल दिस विल हैपन.
1: इस प्रलय की बात की जाती है,
0: तो ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ये सारे ही तो विधि है जिससे सृष्टि की सफाई होगी. यू नो पर्यावरण की सफाई होनी है, सत्योगी दुनिया कैसी होगी, एनवायरमेंट विल बी 100% प्योर. तो वो कब होगा, जब ये सफाई होगी. तो वी विल गो थ्रू दैट लिटिल क्रिटिकल पीरियड, लेकिन जो अंदर से स्टेबल होंगे उनके लिए वो पीरियड भी कब आकर निकल जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा.
1: आई थिंक वो ऑलरेडी चार्ज्ड और ऑलरेडी अवेयरनेस में रहने
0: चाहिए. तो इसलिए इंटरनली हम अपने आप को उतना पावरफुल, उतना प्योर बनाएंगे. दो काम हम अभी कर रहे हैं, एक अपने ओरिजिनल संस्कार को फिर से री इमर्ज कर रहे हैं, और ये ओरिजिनल संस्कार मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होंगे जिनको लेकर मैं अपने घर जाऊंगी परमधाम, और फिर से उस साइकिल के बिगिनिंग में फिर आ जाऊंगे. एंड दूसरा, जितने मैंने पीछे कॉर्पोरेट से बहुत सारे जो विक्रम किए हैं जिसका हिसाब किताब हमें अभी चुक तो करना पड़ता है, तो वो भी हम योग से चुक तो करते हैं. जैसे कार्मिक फिलोसफी की जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इज देयर नो वे कि हम इसको सेटल कर सकें. तो जितना अभी डिक्लाइन हो रहा है तो हमें भोगना की फीलिंग ज्यादा आ रही है ना, सफरिंग हैज इंक्रीज्ड. तो ये सफरिंग को कम करने का दो ही तरीका है, कम या फिनिश करना है हमें, या तो भोग के या योग से, और कोई तरीका नहीं है. क्योंकि सब आत्माओं को अपने घर जाना है और सब आत्माओं को सारा ये अकाउंट जो यहाँ क्रिएट किया था वो सेटल करके जाना है, प्योरिफाई होकर जाना है. तो प्योरिफाई होने का दो तरीका है, या तो भोग के, जिसको हम कहते हैं सजा भोग के, जिसका आज दिन तक हम सुनते थे कि ऊपर जाएंगे तो सजा मिलेगी. तो सजा कहीं ऊपर नहीं, वो सारी सजाएं हमें यही मिलती हैं. हर पल जब हम दुखी होते हैं उससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती है, दर्द में होते हैं वो ही हमारी सजा है. तो वो सारा जो अकाउंट हमें सेटल करना है, या तो दुख दर्द यहाँ भोग के या फिर योग से. तो जितना हम योग करेंगे अभी परमात्मा से वो कनेक्शन जोड़ेंगे, पुराना हिसाब किताब चुक तो करते जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करते जाएंगे, उतना दुख और दर्द की फीलिंग कम होती जाएगी. एंड जितना आपकी सफरिंग कम होती गई मतलब उतने आपके अकाउंट्स सेटल होते गए. क्योंकि जितना टाइम क्रिटिकल और आता जाएगा सफरिंग और भी बढ़ती जाएगी. तो जितना हम अपनी तैयारी अभी कर लेते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बिगिन करते हैं, तो बाहर सफाई चल रही होगी लेकिन अंदर की तैयारी
1: जो है वो पूरी
0: उससे पहले हो जाएगी. सो वील बी एबल टू क्रॉस दैट टाइम वेरी ब्यूटिफुली, एंड इवन नाउ लाइफ विल बिकम वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी ब्यूटिफुल. एंड जो आने वाला समय है वो तो आएगा ही, वी कैन नॉट
1: स्टॉप. शिवानी नाउ एंड आई एम नॉट गोना से एनी मोर कि यू गिव अस होप बिकॉज यू शोड अस द रियलिटी, दैट्स व्हाट आई विल स्टिक टू. और ये जो पूरी हमारी आज बातचीत रही ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त की तैयारी, सुबह की तैयारी हमें अभी करनी है, चाहे घोर कालिमा है लेकिन इसी रात में हम तैयारी कर सकते हैं. बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. मानते हैं कि क्योस है, मानते हैं कि त्राही त्राही मची है, लेकिन

फिर हमने अपने अंदर, हमने पहले भी ये बात की थी कि बदलाव अपने ही अंदर आएगा। अब जब हमने इस पूरे चक्र को समझ लिया है, काल चक्र जिसे कहा जाता है, समय का चक्र, समय की सच्चाई, तो फिर आने वाला जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन एरा है, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी जो युग है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का वो मिलन हो रहा है जो किसी और युग में नहीं हुआ है। तो हम इस डायमंड युग को, इस संगम युग को भी एंजॉय कर सकते हैं, आने वाला जो भी क्यों सामने है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और फिर उस स्वर्ण युग या गोल्डन एज की इमेजिनेशन कर सकते हैं। और जैसा कि सत्य शिवाजी ने कहा था कि याद तो कहीं ना कहीं होगी ही, अगर हम उससे गुजरे हैं तो हो सकता है हमारी यादों में हो। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 5, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। हमने स्वयं को भी पहचान लिया, सारी जानकारी हमें मिल गई है, समय चक्र भी पता चल गया, लेकिन परमात्मा जिनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि शिव बाबा आ चुके हैं और स्वयं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, उस युग में हमें लेकर जाएंगे, तो कहाँ है वो, उन्हें तलाशना भी बाकी है। तो अगली कड़ी में हम सीधा संपर्क जोड़ेंगे शिव बाबा से। अब एक निगेत रामा कुमारी इसमें फिर होगी मुलाकात।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हाँ मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंगभरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंज कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम, रमक झुम झुम, चमक झुम झुम।

सनन सनन पवन चले झनन झनन झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नयन झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले छुम छुम छुम चमक चमक झुम झुम झुम चमक झमक छुम छुम छुम चमक चमक।

शोर गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया सर में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उभारे प्यार पुकारे तो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे छुम छक छक झुम झक झक छुम छक छक

नदियाँ पहाड़ कर पार, गोरी नार आई प्रीतम के द्वार, अभी सार करने भैयों में बांध अपने प्रीतम की, साध लगी प्राणों में अमृत का प्यार भरने।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: गुरु गोविंद दोनों खड़े, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, पंकज, वेदांत, विनोद, सैंडी, रवि, आकाश, उन्नति, दृष्टि।

0: हर रोज सर यही कहकर कक्षा समाप्त करते हैं। इस हंसी को मन में अच्छी तरह से बसाते हुए हम आज की योग कक्षा को यही विराम देते हैं। मैंने कितनी अच्छी तरीके से नकल उतारी ना।
1: कुछ भी कहो, सुबह सुबह ये योग की कक्षा से बस आनंद ही आनंद रहता है दिन भर।
2: मुझे तो हर काम को करने की बस डबल हिम्मत सी हो जाती है।
3: चलो भाई चलो, सब उधर क्यारी की तरफ चलते हैं। आज तो हम सब बासु अंकल का जन्मदिन मना रहे हैं।
4: कैसे? केक काटकर?
5: जी नहीं, पार्क में आम का पेड़ लगाकर।
6: कितना अच्छा आइडिया है, अगर सब अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं तो धरती हरी भरी हो जाए।
4: बासु अंकल ने ही तो इस पार्क में पत्तों को जलाने के खिलाफ आवाज उठाई थी।
3: आज उन्हीं की वजह से तो सबने मिलकर उधर कंपोस्ट पिट बनाया है।
0: और ये सुंदर फूलों के पौधे भी तो उन्होंने ही लगाए थे।
1: बड़ी मेहनत करते हैं अंकल, माली के साथ साथ मिलकर काम करते हैं।
3: दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं।
4: मतलब?
3: बासु अंकल उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं और माली उन्हें पौधों का ज्ञान देते हैं। दोनों एक दूसरे के गुरु हैं।
4: फिर तो गुरु पूर्णिमा पे दोनों एक दूसरे के पांव छूते होंगे।
6: फिर से तुम लोगों ने हंसी में एक बहुत गहरी बात कह दी है।
4: क्या?
6: देखा जाए तो पूरी सृष्टि में ही हमारे गुरु फैले हुए हैं।
3: ठीक कहते हो दीदी, बल्कि पूरी सृष्टि ही हमारे गुरु है।
6: हम सबसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। बापू ने तो जेल में रहते हुए कपड़े की मशीन से सिलाई सीखी।
1: क्या मतलब, दर्जी की तरह?
6: जी हाँ, एक मोची से जूते की मरम्मत करनी सीखी और अपने आश्रम हर समय हर तरह की सफाई करने के लिए तत्पर भी रहते थे। एक बार एक बड़े से पतीले को मांझने लगे। इतना बड़ा पतीला मांझते मांझते बहुत दम लग रहा था, तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं थी। तभी बा आई और उनके हाथों से पतीला छीन लिया और थोड़ी डांटते हुए कहने लगी, बहुत लोग हैं इस काम को करने के लिए, आप आराम कीजिए।
0: हाँ हाँ, बापू को बा का कहना मानना ही पड़ा।
1: मुझे तो एक कविता याद आ रही है जो मैंने एक कॉन्टेस्ट के लिए याद की थी।
4: मैंने भी, चलो मैं एक कविता सुनाता हूँ।
2: मैं भी।
6: ओहो, फिर मैं समझी थी तुम लोग बड़े हो गए हो।
3: दीदी आपने भी तो मैं बोला।
6: हाँ हाँ ठीक कहा, ये मैं बड़ी ही बलवान है।
4: क्या मतलब दीदी?
6: मतलब अगर ईश्वर से संबंध की बात की जाए तो कहा जाता है, जब मैं हूँ तो तू नहीं, जब तू है मैं नहीं।
4: आपका मतलब है मैं का मतलब अहंकार से?
0: मैंने तो एक कविता सुनाने की बात की थी और यहाँ शुरू हो गई एक गहरी आध्यात्मिक चर्चा।
6: अच्छा तो सुनाओ अपनी कविता, सब सुनाओ।
0: सब?
6: हाँ हाँ सुनाओ, जिसे जिसे आती है बोलो।
0: फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना।
7: ओ ये वाली, ये तो हम सबने याद है, आओ सब मिलकर बोलते हैं।
8: हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूर तरह पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो झूमे धीरे धरना,

0: जीवन पथ में बढ़ना और हुए से सीखो हर दम ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: चलो चलो, सब इशारा कर रहे हैं जल्दी आने के लिए।

0: चलो चलो बाद में बासु अंकल सबको अपने घर भी तो ले जा रहे हैं नाश्ते पर।
1: कह रहे थे पूरी आलू और हलवा बनाएंगे सबके लिए।
2: मुबारक हो अंकल।
3: हाँ हाँ धन्यवाद। ये देखो ये मैंने उधर उन सब लोगों को भी बुलाया है जो मेरी सेवा करते हैं। हमारे पार्क का माली, हमारी लोकेलिटी का गार्ड, पास के स्टोर वाले अंकल, मुझे रोज फल सब्जी पहुंचाने वाला भैया, ये सब भी मेरे मित्र हैं।
1: मित्र या गुरु?
3: गुरु?
0: अभी अभी दीदी यही कह रही थी, हमारे सृष्टि में सब हमारे गुरु हैं।
3: हाँ वो तो है।
1: एक बात बताऊं, उस दिन मैं पार्क में घूम रही थी तो बड़ा मजा आया। मैंने एक घास काटने वाली महिला को देखा, दूर से हरी हरी घास के बीच बैठकर घास काटती हुई, रंग बिरंगे कपड़ों में वह बहुत अच्छी लग रही थी।
4: मैं कल्पना कर सकता हूँ।
1: हाँ हाँ तो मैं उसके पास तक चल कर गयी। उसने मुझे अपने पास आते देखा और जैसे भाव भी लिया कि मैं दराती से घास काटना चाहती हूँ। उसने बिना कुछ कहे मुझे दराती पकड़ा दी और मजे की बात यह है कि जब मैंने घास काटने की कोशिश की तो मुझसे कटी ही नहीं।
2: क्यों?
1: हाँ हाँ दूर से आसान सा काम दिखने वाली चीज के लिए भी एक खास तरह की तरकीब चाहिए। दराती को एक खास तरह से पकड़ा जाता है, घास को दूसरे हाथ से एक तरह से पकड़ा जाता है, फिर एकदम जड़ों के पास से एक एंगल से उसे काटा जाता है।
5: दीदी आपने तो जैसे घास काटने पर पूरी रिसर्च कर डाली।
1: हाँ हाँ ठीक कहते हो, इतनी आसान दिखने वाली चीज इतनी मुश्किल हो सकती है मैंने तो सोचा ही नहीं था।
5: यानी उन पलों के लिए घास काटने वाली महिला आपकी गुरु हो गई?
1: हाँ उसकी जो भी कला थी जो भी काम था उसने मुझे सिखाया, फिर मैंने उसका धन्यवाद किया और घर वापस आ गई।
6: ऐसे कभी कभी कोई बिल्कुल ही अलग सा काम करने में कितना मजा आता है।
5: एक बार मेरी मम्मी गाड़ी चला रही थी, हमने बाजार से सब्जी ली थी और घर वापस जा रहे थे।
4: अच्छा
5: कुछ अलग करने की बात से ये याद आया।
2: बताओ।
5: उन्होंने दो मजदूर औरतों को एक रिक्शे वाले से कम पैसों में ले चलने को कहा। उन्हें हमारे घर के पास ही जाना था। मम्मी ने तुरंत उनसे कहा चलो हम उधर ही जा रहे हैं, पूरे पैसे बचा लो, और उनको ले ही अपने साथ और सोसाइटी के बाहर छोड़ दिया।
2: वाह
4: वाह ये तो अच्छा किया।
5: हाँ। बड़ा मजा आया।
4: मैं तो खाली पेट आया था। अच्छी बात है यहाँ खाना मिल रहा है।
5: और बड़ी
1: ये लो जी लो, मैं पूरियाँ बांटने का काम कर रही हूँ।
0: क्यों नहीं, चर्चा के साथ साथ पूरियों पर भी तो ध्यान रहना चाहिए।
4: हमारी योग कक्षा के यही तो मजे हैं, हर एक का जन्मदिन मनाते हैं धूमधाम से और गर्मा गर्म चर्चा भी करते रहते हैं।
7: हाँ हाँ बस बस बहुत हो गया, अभी हलवा भी तो खाना है।
1: आज तो कोई जाने ही नहीं है, चलना नहीं है क्या? बासु अंकल को और भी तो काम है।
3: अरे नहीं कोई जल्दी नहीं है, सब मिलकर बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ इस बार का तो मैं अपना जन्मदिन हमेशा याद रखूंगा। क्या मजेदार डिस्कशन हुई है हमारे योगाभ्यास ग्रुप की।
2: हाँ सर मजा आ गया, पूरी आलू और हलवे का भी।

0: हो क्यों? सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह।

सोचो, जरा सोच के देखो, खेत में उगते कॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो कॉफी।

किसी का पेट भरता नहीं। ये हम जो सलाम कर कभी भूखा मरता नहीं।

0: ताले नहीं
1: नहीं नहीं
0: अरे ऊंची जी की बात है किसी का पेट भरता नहीं हम जो सलाम कर कभी भी भरता नहीं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दर्द नहीं थी आंखें प्यास जगाए। मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला, जब से हमने

सपनों में आके सारी रात जगाऊंगा वो जाने जिगर, दिन में तू अगर

घर लेके मैं बरात कभी आऊंगा, दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बरात कभी आऊं तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना।

गई कब कब लौट ले का मिले न में कब कदम कदम पर धोती वाले मोटी कोंधों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश चलेंगे।

0: क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो?
1: हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: समझा ए काली घटा
1: आहा समझा आ ठंडी हवा
0: आहा समझा ए काली घटा
1: कुछ प्यारी

पूछ लो हमारी आहते आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे।

घर में किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास न आता ही तंदाना, जा मार ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना। घर में किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास न आता ही तंदाना, जा मार ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता।

पाका नारंगी की पाका पाता चूता रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

है चंदाना, सूरज से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे करीब है चंदाना। हमें माना गरीब है चंदाना, सूरज से अजीब